बने, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।

बज गए बारह, रूप की गर्मी छोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत टिटकी टिटकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत टिटकी टिटकी जाए। दिला कभी

मेरा लाठा मन ढोल बजाता आया, झंकट तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी ये जान जगाता आया, धरती पहने लिए हर सुनंदा बनक दुनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मगन हुआ।

पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बात।

0: है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है. थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे. एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ. आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक ऐसी आत्मा के साथ जो कि प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, प्योरिटी का सागर है, और उसकी वाइब्रेशंस हमेशा मुझ तक पॉजिटिव पहुंच रही हैं। उसके साथ जब रिश्ता जुड़ा तो मैं खुद एम्पावर होती गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको देखना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पूरी श्रृंखला को मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखूं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम आगे कहां पढ़ें, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में?
1: I would just say that it's lovely to see ke how everyone has this pure desire to work on themselves. You know, aaj din tak jo hum blame auron par dal dete the, to kahin na kahin har ek jo dekh raha hai usko ek bahut deep realization ho gayi hai, and an amazing sense of self confidence ke okay, it's still in my hand. To wo ek feeling jo hai wo bahut badi ek source of empowerment mil jati hai. Irrespective of kitna bhi problem bahar ho, still the solution to a large extent is in my hand. Aur jab ye ek realization hoti ki ye mere haath mein hai, chahe apna dhyan rakhna, chahe apne sambandhon ko parivartan karna aur chahe situations ko theek karna, so this gives amazing realization. और हर एक के जो फोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हर एक को कितना ये एक प्योर डिजायर है टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन टू सी द रिजल्ट्स, क्योंकि इतना हर एक, जैसे जस्ट यस्टरडे आई गॉट एन एसएमएस फ्रॉम अ सिस्टर एंड शी सेड टुडेज एपिसोड एंड वन प्रॉब्लम जो मेरे साथ सालों से थी वो कल सडनली ठीक हो गई।
0: ये बहुत हो रहा है, एक सूत्र, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बार बार एपिसोड्स में, या लोगों के साथ होता है, एक सूत्र मिलता है और हमें लगता है कि अरे हल्के हो गए, यू नो, बेसिकली वी आर ऑल फीलिंग लाइट।
1: तो दिस आई जस्ट रियलाइज फ्रॉम दैट, आई सेड लुक एट द कि परमात्मा के ज्ञान में कितनी पावर है, कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञान यू नो जीवन को कैसे परिवर्तन करता, कि एक पॉइंट से हमारे सालों के से जो हमने कोई बात पकड़ी हो वो ऐसे खत्म हो जाती है। जस्ट शोज द पावर ऑफ द ज्ञान, बट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ द सोल, कि हम आत्माओं में भी कितनी ताकत है।
0: एक सेकेंड में,
1: सेकेंड
0: हम हवा में उड़ा सकते हैं उस चीज को।
1: तो इसका मतलब अगेन इट प्रूव्स टू मी, टू ईच वन, कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड। जहां हमने इतने सालों तक उस बात को पकड़ी होगी कि मेरे ये तो मेरी गलती नहीं है, और चेंज करने में वन थॉट, एंड इट्स ओनली अबाउट When I create that thought.
0: अभी तक का जो मेरा बिलीव सिस्टम जिंदगी हुए मेरा ये रहा था कि वहां से मिल रहा है, मेरा बच्चे के कारण मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे ऑफिस, मेरी अचीवमेंट के कारण मुझे सक्सेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। ये रियलाइज हुआ कि इट इज ऑल इनसाइड, यू नो, यहां से मिलेगा। लेकिन यहां की भी अभी जर्नी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। तो एक तरफ तो बार बार मेरा वो जो बिलीव सिस्टम, मेरे को जो आदत पड़ी हुई है यहां से खुशी लेने की, कि उनके आने से मुझे खुशी मिलेगी, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अभी तक उतना नहीं टूट रहा है, और जो अंदर का रिश्ता मेरा अपने आप से जुड़ता हुआ जो है वो भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है।
1: एक्चुअली जो हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। रियलिटी तो पहले भी वही थी, रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। जो हम कह रहे हैं कि मुझे खुशी औरों से नहीं मिलती, मुझे खुशी कुछ करने से नहीं मिलती, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, ये कोई नई चीज आज होने नहीं वाली है। दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग इवन बिफोर हैंड, इट इज जस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेयर। अब सडनली जैसे कि हमने अवेयरनेस आई तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही आती जा रही है, हर चीज मैंने करनी है, हर चेंज मैंने लाना है, हर खुशी मुझे, यू नो, सो समवेयर आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटिल
0: वेरी ट्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई। कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि अरे मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं लोगों से मिलूंगी उससे मिलूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी।
1: नहीं नहीं नहीं, बट सी अगेन, आप अपने आप को इन चीजों से कट ऑफ नहीं करेंगे, बिल्कुल
0: कट ऑफ नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन मुझे ये कि उनसे खुशी मिलेगी को मैं देखना तो कम से कम शुरू करूंगी, कि अब मैं उसको तो देखती हूँ कि नहीं, मेरे अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, मुझे मेरी खुशी, मुझे खुशी मिल रही थी, वो हैं गुड, वो नहीं भी होंगे तब भी मैं वो खुशी क्रिएट कर सकती।
1: एब्सोल्युटली, तो ये तो पहले भी हो रहा था, सिर्फ ये था कि वो हैं तो मैं खुशी क्रिएट कर रही थी, वो नहीं है तो मैं दर्द क्रिएट कर रही थी, वो तो पहले भी यही रहा था, सिर्फ ये था कि मुझे लगा था कि उनके आने से खुशी

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का एक पूरा एहसास हमें पता चला कि टेक्निक क्या है, खुद की पहचान भी हुई। अगर पिछली कड़ी को देखें तो परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसी आत्मा के साथ, क्योंकि मैं आत्मा

0: आ गई, बट इट वॉज एक्चुअली उनको मिलने से मैंने खुशी क्रिएट कर दी. नाउ द ओनली थिंग विद अवेयरनेस इज रियलाइजिंग कि आई एम क्रिएटिंग दर्द ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग. दूसरे ने मुझे दर्द नहीं दिया, दूसरे ने मुझे खुशी नहीं दी, आई एम क्रिएटिंग. तो वो करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी फिनिश हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को तुरंत फटाफट से राइट स्टेट ऑफ माइंड में फिर से लाना वो इजी हो जाता है. इट डजंट मीन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे या हम पार्टी नहीं करेंगे. हम सब कुछ करेंगे बट विद द राइट इंटेंशन कि ये सब क्यों हो रहा है. इट्स अ चेंज, इट्स नाइस टू मीट पीपल एंड व्हेन आई मीट पीपल नाउ इट इज विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग. वो करो, अब आप पार्टी में जाओ, डिनर पे जाओ, बट गो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग योर वाइब्रेशंस. इट विल बी द सेम पार्टी लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप पार्टी में जाओ हरेक से मिलो लेकिन किसी के भी कमेंट से या किसी की भी कोई बात से आप डिस्टर्ब अगर नहीं हो. पहले भी हम जाते थे, कई बातें अच्छी हुआ करती थी, कई बातें कोई ऐसी हो जाती थी जो मैं अपसेट ही होकर वापस आ जाती थी, तो फिर वो डिनर ने खुशी दी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे. नाउ आई गो, आई मीट एवरी वन विद द अवेयरनेस, ये सब बाहर है, ये अंदर है, मुझे क्या करना है, क्या लेना है और इसका साथ साथ ध्यान रखना है. इस अवेयरनेस के साथ अब इंटरेक्शन में आना है. तो ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं होगा लेकिन लीकेज बंद होने लगेगी. अभी लीकेज बहुत हो रही थी. देखो हम चार्जिंग बहुत कम कर पाते हैं सारा दिन में. सोल कॉन्शियस रहना, दिस इज चार्जिंग, हम कितना कर पाते हैं. फिर सारा दिन वही बॉडी को, एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जिंग इतनी सी होगी और डिप्लीशन इतना हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे
1: वही थका हुआ महसूस
0: कहीं भी नहीं. तो एक है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, चार्ज करते हैं, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दिस कि ओवरनाइट आप एकदम भरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं.
1: अच्छा, और ये कि दोनों शिफ्ट बहुत बड़े हैं एक्चुअली, और दोनों को आप बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाते हैं.
0: हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं, उसको एफर्ट नहीं कहें लेकिन जो हम अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं उसको कभी टेंशन मत बनने देना. यू नो, कई बार परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारा अटेंशन तो यही हो रहा है कि टेंशन को फिनिश करना है. लेकिन कई बार अटेंशन रखने का टेंशन हो जाता है.
1: ओहो मुझसे ऐसा हो गया, उफ ये फिर हो गया ऐसे.
0: ट्रू. सो वो नहीं, डोंट बी, अगेन डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अगेन नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन. हम ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कि मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, विच इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कीप अटेंशन, क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वापस वही ऑर्डिनरी तरह में चलते जाएंगे, ये हुआ गुस्सा किया, ऐसा हुआ गुस्सा किया एंड फिर से कहीं के वहीं पहुंचेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है अपना सिर्फ, यू नो, लाइक जैसे हम कहें कि अगर आप, जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, ठीक है, तो बच्चा जैसे एक पालने में है, क्रेडल में है और माँ पूरे घर का काम कर रही है, ठीक है. नाउ एज अ मदर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि आप घर का भी काम करते हैं
1: एंड यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग,
0: बच्चे का भी ध्यान रखते हैं. तो एक नजर बच्चे पर है, अब आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई यू आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. अगर बच्चा थोड़ा भी रोना शुरू करता है आप एक मिनट निकालते हैं, इधर से हटते हैं, उसके पास जाते हैं, चुप कराते हैं, वापस आ जाते हैं. तो हम दोनों काम करते हैं ना. हम ये तो नहीं कहते बच्चे को संभालना है तो मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती. नहीं, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी देखना है. इसी तरह यहां ये बच्चा है, सारा काम करना है हमें, बाहर सबसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज भी करना है, सब कुछ करना है. एक नजर
1: अपने बच्चे पे, अपने पे रखनी है. हाँ, okay.
0: कि ये कहीं भी थोड़ा सा रोने न लग जाए या अपसेट ना हो जाए या यू नो गुस्सा न करने लगे. सो जस्ट दैट लिटिल अटेंशन, नॉट दैट कि मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, मुझे और तो बाहर यू नो आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज बोथ. नो, आई एम गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, कि टेकिंग केयर ऑफ दिस ओनली बाय कीपिंग अ प्रायोरिटी राइट.
1: अच्छा, लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक पार्टी में गई, ठीक है, एक अपने फ्रेंड सर्कल की पार्टी में गई, मैरिज पे गई, कहीं पे भी गई, रिलेटिव्स के बीच में गई, व्हाटएवर दे आर टॉकिंग आई नाउ

0: understand ki that's not wo uska koi labh nahi hai.
1: See, don't try to do anything artificial. Don't try to do anything externally. Be with them, be a part of the conversation. Apne aap ko kaatna nahi us group se, lekin aap ye dekhenge, you will experience automatically ki aap jo share karenge unhi ke sath usi topic par, lekin aapka perspective different
0: ho chuka hoga,
1: which is okay. Anyways, jab char log baat karte hain kisi ek baat ko lekar bhi, to char logon ka alag alag perspective hi hota hai na. Sirf ye hai ki ab hame lagega ki kahin hamara perspective sabse thoda sa different hai, but you know people are looking for that perspective. Agar aaj aap bol rahe ho ki hum sab ki problem discuss kar rahe hain, so you will find four people talking only about the problem with your different perspective. You might start sharing the solution. And jo log wo char log problem ki baat kar bhi rahe honge, agar wo solution ki taraf bhi dekhte to wo solution bahar dhoond rahe hain. Ab hame gyan se samajh mein aaya ki solution to bahut easy hai, mere paas hai. To mujhe ulta apne friends se aur logon se withdraw nahi karna hai, mujhe sabke sath rehna hai, lekin apni sthiti aur apne perspective ko maintain karke. Kai baar hum beh jate hain ya kai baar fir hum strong nahi hai to hum withdraw kar lete hain. Either of them is not good. Beh jane ka bhi koi fayda nahi, kyunki baad mein lagega are maine kya kiya, mujhe to interest nahi tha ye sab cheezon mein, main kahan kahan in baaton mein chali gayi. Aur withdraw ho gaye, that's also not right.
0: To aapki involvement khatam,
1: involvement nahi aur andar se then, kyunki har ek atma ka purpose of life jo hai wo hai relationships.
0: Yes.
1: Interaction. To isliye hame kachna nahi hai, withdraw nahi hona, sabke beech rehna hai. Sirf responsibility ek, first responsibility apna dhyan rakhna hai ki meri sthiti mere control mein chal rahi hai ki nahi.
0: Agar isi mein karte karte kisi relative ne kuch keh diya jo ki mujhe kahin hurt hua ya mere personal us pe kahin hua, I go into that hurt. तो फिर मेरा वो जो ज्ञान जो ये सोल्यूशन में जहां तक जा पा रही थी वो नहीं हुई. ये जो मैं कह रही हूँ कि अभी आधे आधे जर्नी जो
1: कोई बात नहीं है, दिस इज द प्रोसेस. जैसे कोई बीमार होता है ना फिजिकली, तो हम बीमार से ठीक हो रहे हैं ना, यही तो हो रहा है. तो थोड़े से कमजोर भी हैं लेकिन ठीक भी तो हो रहे हैं. अब इस ये जो बीच का फेज आएगा, इनफैक्ट द होल द जर्नी विल गो ऑन. ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन में ये जर्नी पूरी होने वाली है. Every time you will find yourself at a different stage. Aaj ho sakta hai aapko badi ordinary baat se hurt ho jaye, 2 mahine baad aap unhi logon ko milenge, wo ordinary baatein aapko hurt nahi karengi, lekin us din koi thodi aur badi baat aapko hurt kar jayegi, aur 4 saal ke baad usse kai guna koi bahut badi baat aapko hurt karegi. Lekin the journey is going on and then we are reaching towards a stage where we will be pain free. Lekin डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी में,
0: बार बार नहीं हो रहे, अब छोटी छोटी बात नहीं हर्ट कर रही है.
1: तो उससे क्या होगा, पावर अक्यूमुलेट होती जाएगी. अभी अगर दिन में 5 बार हर्ट हो रहे हैं तो 2 महीने बाद आप 5 दिन में एक बार हर्ट होंगे, फिर साल बाद आप 5 महीने में एक बार हर्ट होंगे. एंड देन इट, सो दिस इज अ साइन ऑफ रिकवरिंग. तो रिकवरिंग इज नॉट विद इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स, इट्स गोइंग ऑन. जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज के नॉट एट ऑल. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जाती है, जिसके लिए दिन में 5 बार हर्ट होना नॉर्मल था, उसके लिए 5 दिन में एक बार हर्ट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. मतलब लीकेज कितनी कम हुई, कहा तो उससे क्या होता है कि अभी तो मैं नॉर्मली हर्ट रहती हूँ, अभी मैं कभी कभी हर्ट होती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ. तो पावर, तो जितनी हर्ट की फ्रीक्वेंसी कम हुई, मतलब पावर अक्यूमुलेट हो रही थी. सो बट इफ आई से नहीं मुझे इसकी ही टेंशन हो रही है, देन तो इट इज लाइक सेइंग कि मुझे अपना इलाज ही नहीं कराना, आई डोंट वांट टू स्टार्ट मूविंग. तो ये फेज बीच में आएगा कि हम अटेंशन रख रहे हैं फिर भी हर्ट हो रहे हैं, फिर भी गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं. बट उससे हम पुराने बिलीफ सिस्टम में ना चले जाएं.
0: हाँ, और हम झूठ लगने लगते हैं, यू नो समवेयर वी स्टार्ट फीलिंग कि उफ, मैंने अब भी तूने सोल्यूशन दिया, यू नो, और अभी मैं हर्ट हो गई.
1: ओह इट्स ओके. एंड अब हमें ये पता है कि अभी अगर मैं हर्ट हुई, मुझे ये पता है कि मैंने फटाफट अपने आप को ठीक करना है, बिकॉज वी नो नाउ कि अगर हर्ट भी हुए तो वो ही ध्यान रखना है. बच्चा रोने लग गया, पहले तो वो रो रहा है, वो
0: रोता ही जाता था,
1: हम अपना बाहर काम ही कर रहे हैं, अब वो रोने लग गया, लेट मी टेक आउट 1 मिनट, अपने आप को फटाफट से ठीक करना, अपने साथ हार्श नहीं होना.

0: ना कि तुमने गुस्सा क्यों किया, समझ तो आ गया था कि गुस्सा नहीं करना. समझ इज नॉट इनफ. एक है नॉलेज, दूसरी है पावर. तो एक है, अब हमें सबको इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या राइट है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आत्मा कमजोर है, तो एक कमजोर आत्मा अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है. लेकिन वो कर पाएगी, लेकिन इस आत्मा को साथ साथ पावर भी चाहिए. तो उसलिए जहां आप सारा दिन इतना अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर करें. यू नो, अपने आप को भरें, चार्ज करें. जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि ये जो वैक्यूम है इसको परमात्मा भरता है. हम उससे वो शक्ति लेते हैं जिससे आई एम्पावर माई सेल्फ. नहीं तो क्या होगा, मेरी पावर तो बहुत कम है और मैं काम बहुत बड़ा कर रही हूं. सडनली यू नो आई एम इन पेन बट आई एम सेइंग आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल नॉट से एनीथिंग. तो कई बार वो पेन अंदर ही अंदर फिर मुझे
1: खाने लगता, वही जो बात ये कि
0: वो मुझे रियलाइज नहीं होता. क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं गुस्सा तो अब नहीं कर रही, मैं किसी को बोल भी नहीं रही, तो नाउ आई शुड बी फीलिंग वेरी नाइस.
1: और उससे क्या होगा, जहां मैंने जो मेरा नेचुरल प्रोसेस था अपने आप को एक्सप्रेस कर देने का, मैंने उसे रोकना शुरू किया, तो फिर वो जब निकलता है, और वो निकलता है फाइनली, क्योंकि जहां मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ तो वो निकलता ही, एंड देन इट लीव्स मी विद नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि मैं आई फील यू नो समवेयर.
0: एंड अंदर कहीं ना कहीं वो जो ब्लिस की फीलिंग या जो हैप्पीनेस की फीलिंग है वो नहीं आएगी, क्योंकि हम बाहर, हमें लगता है कि मैं बाहर से नहीं कर रही तो अंदर आई शुड बी वेरी हैप्पी, बट दैट्स नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम पावर. तो मेडिटेशन से पावर जेनरेट करना और सारा दिन में ध्यान रखना. ये भी नहीं है कि कई बार ये भी होता, मेडिटेशन तो कर ली, चार्ज भी कर लिया, लेकिन सारा दिन ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी. तो जितना भरा
1: उतना,
0: यू नो इट्स लाइक अ बकेट. आपने उसको नल के नीचे रख तो दिया भरने के लिए, लेकिन नीचे छेद है, अब कितने दिन में वो बकेट भरेगी?
1: भरेगी नहीं,
0: भरेगी नहीं. और फिर उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन बैठने लगता है कि रोज सुबह उठो, रोज मेडिटेशन करो, रोज ये सुनो, भी परिवर्तन कहां आ रहा है मेरे अंदर? तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो लीकेज है इसको नहीं बंद किया. तो इट्स अ वेरी वंडरफुल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स. नॉलेज भरे जिससे कि समझ मिलेगी, मेडिटेशन करे जिससे पावर आएगी, एंड सारा दिन में सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. क्योंकि एक बार सब कुछ भर लिया है राइट, इट्स लाइक फिजिकल अगेन. आप राइट डाइट ले ले, एक्सरसाइज कर ले, और सारा दिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखें कि गलत खाना नहीं खाएं. इतना ही तो करना
1: है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन.
0: इतना ही तो करना है ना, कि सारा दिन में आपने कुछ गलत चीज उठाकर नहीं खा ली. जहां खाई गलत चीज तो वहां वो इन्फेक्शन हिट कर देगी. तो इसलिए सेम चीज, ज्ञान, योग और सारा दिन थोड़ा सा अटेंशन, कि मेरा डिप्लीशन ना हो, तो फिर वो भरना शुरू भी हो जाएगा. क्योंकि भर भी रहे हैं और लीकेज को भी स्टॉप कर दिया. और अगर कभी हो जाए थोड़ा, तो इट्स ओके. बिकॉज सबसे पहली बात है कि औरों को प्यार करने से पहले अपने को प्यार करना. अगर अपने आप से बहुत हार्श हो जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो औरों तक भी पहुंचेगी. तो बी नाइस विद योरसेल्फ, बी वेरी लवफुल टू योरसेल्फ, बट डोंट बी केयरलेस विद योरसेल्फ. दैट्स दैट बैलेंस. एक है गुस्सा करते गए, अपसेट होते गए, खुद को कहते गए कोई बात नहीं ना, आई एम ऑन द जर्नी, कोई बात नहीं, आई एम ऑन द जर्नी. नो, देन दैट इज केयरलेसनेस. किया, अपने आप से बैठे, फिर से रिवाइज किया, समझा, ओके नेक्स्ट टाइम केयरफुल, देन मूव ऑन. नो गिल्ट ऑफ द पास्ट.
1: अभी तक क्या होता था, एंग्री जब हम होते थे ना तो हमें गिल्ट याद आता कि हमने दूसरे को हर्ट किया. ये कभी भी नहीं याद रहा कि हमने अपने आप को हर्ट किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: जिसने क्रिएट किया सबसे पहले तो वो हर्ट हुआ, तो और फिर उसके बाद अगर गिल्ट क्रिएट किया फिर और हर्ट हुआ. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, तो पहले जैसे पेरेंट्स बच्चों में बहुत होता है, हस्बैंड में, मतलब पहले मैंने गुस्सा किया तब मैं हर्ट हुई, फिर आप तो चले गए, कोई बच्चा स्कूल चला गया, हस्बैंड, फिर उसके बाद मैं जो गिल्ट क्रिएट किया फिर मैं और हर्ट किया,
1: और वो इतना ज्यादा देर तक रहता है वो.
0: कई बार देखो बच्चे को तो भूल भी जाता है, वो चला जाता है स्कूल अपने फ्रेंड्स में, लेकिन मदर घर पे बैठ बैठ कर इतना गिल्टी हो जाती है. सो रियलाइजेशन एंड गिल्ट में फर्क है. गिल्टी होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पश्चाताप करते गए, हाय मैंने क्यों किया, हाय मैंने.

0: मेरे से नहीं होना चाहिए था, ये चर्न नहीं करते कि मुझे क्या करना है या मुझे आगे से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है.
1: व्हाट वाज इट दैट ट्रिगर्ड, यू नो, दैट हैज हेल्प्ड मी नाउ,
0: यू नो, दैट इज रियलाइजेशन, दिस इज गिल्ट. तो गिल्ट इज डैमेजिंग, लेकिन रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. और रियलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उस पर रिफ्लेक्ट तो करना पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव. रिफ्लेक्ट इन द सेंस, फिर से उस सिचुएशन को ले लो और अपने आप को उधर देखो, वेयर डिड आई गो रॉन्ग इन द रिस्पॉन्स, एंड इसकी जगह और कौन सा रिस्पॉन्स हो सकता था, कहां मैं अपने आप को भी और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती थी. लेकिन गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने गलती ही ऐसे की. इट इज अनदर विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, रिजल्ट नथिंग. कई बार बार बार बार बार सोचते रहते हैं और कहेंगे जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे.
1: पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को तय करता है,
0: रिवाइंड सब करते हैं, सीखा नहीं जाता हमसे उससे कुछ भी. रिवाइंड करके एक बार उस सिचुएशन को देख ले और अपने आप को देखे उसमें. रिफ्लेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट यह है कि किस पे रिफ्लेक्ट करना है. हम रिफ्लेक्ट सब पर भी कर रहे होते हैं जो जो उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है. नॉट एट ऑल, दे वर प्लेइंग देयर ओन रोल. रिफ्लेक्ट करना है, वेयर डिड आई डू समथिंग विच वेंट रॉन्ग, एंड वॉट कैन आई डू टू मेक इट
1: बेटर. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वट कैन आई डू टू मेक इट बेटर, बिकॉज वट हैपन्स एट टाइम्स आई बिकम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही होती है अगर मैं रिवाइंड करके उसको देख रही होती हूँ कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ.
0: लेकिन दिस इज रिलेशनशिप विद द सेल्फ. अगर किसी और से कोई गलती हो जाती है, हम उनको क्या कहेंगे?
1: इट्स ओके,
0: कोई बात नहीं. मूव, डोंट सिट बैक विद दैट. उठो, आप कर सकते हो. बिकॉज जब कोई गलती कर देता है वो पहले दर्द में चला जाता है, तो उसको अब चाहिए प्यार एंड कॉन्फिडेंस वापस खड़े होने के लिए. तो जो हम औरों को देते हैं वो खुद को देना है. इसलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई बात नहीं, चलते चलते ये सब विल कम एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट रुक कर अपने आप को प्यार से कि इट्स ओके, यू हैव डन वेरी वेल, पहले इतनी बार भी तो आपने नहीं किया, एक बार हो गया, नेवर माइंड, मूव, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट, यू नो, दैट वे. दिस इज सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप से प्यार, अपने आप को मोटिवेट. लेकिन अगर गिल्ट में चले गए तो खुद को डीमोटिवेट कर देंगे.
1: इट्स वेरी बैड, यू नो,
0: और फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को ही रोक देंगे कि ये मेरे से नहीं होता, इससे तो गुस्सा करो, खत्म करो.
1: अच्छा, तो मैं पहले ही थी कि मैं गुस्सा को एक्सेप्ट कर लूं कि गुस्सा ठीक है, गुस्सा जेन्युइन है, गुस्सा नेचुरल है, इट्स ओके.
0: ट्रू. सो देन कहीं ना कहीं द ओनली थिंग इज एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, एंड एम आई कन्विंस्ड. चेंज जहां बात आती है, चेंज तो कहते तीन चीजें चाहिए. व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज, and the want to change. ये बहुत important है. What to change? क्या change करना है, कैसे change करना है, लेकिन क्या मुझे change करना है,
1: क्या मैं चाहती
0: हूं? Want to change is the most important. अभी क्या हुआ, what to change मालूम है. Let's say for example गुस्सा नहीं करना, what to change मालूम पड़ गया. How to change वो भी मालूम पड़ गया, ठीक है, responsibility है. लेकिन do I really want to change? बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सबकॉन्शियस में अभी तक भी वो पुराना बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ, गुस्से से ही काम होगा, गुस्से से ही दूसरा सुधरेगा. तो जब तक वो बिलीफ नहीं हटेगा, सो दैट डीप डिजायर टू वॉन्ट टू चेंज डजंट कम. तो वो सेल्फ एनालिसिस हमें करना पड़ता है. और ये सेल्फ एनालिसिस भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सारा दिन में अपने आप को देखते हैं तो एक ऊपर की लेयर पे देखते हैं, यू नो, कॉन्शियस माइंड पर, एंड उसमें बहुत सारी बातें आती हैं. लेकिन जब साइलेंस में बैठकर सुबह देखते हैं तो यू नो ये कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो जाती है, एंड सब कॉन्शियस में हमें आंसर्स मिलते हैं
1: जो रियल में निकल कर आ रहा होता है,
0: कि कहां कहां मेरे अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहां कहां मैं बार बार अभी भी फेल हो रही हूं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने ही प्रोग्रेस में, जो सक्सेस मुझे जीवन में चाहिए, वहां वो अभी भी रुकावट बन रही है. ये चीजें साइलेंस में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी पता चलते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या इंट्यूशन पावर. ये उस समय एक्टिवेट होता है, तो उसमें हमें ये आंसर्स मिलते हैं व्हाट टू चेंज. फिर परमात्मा के ज्ञान से हाउ टू चेंज वो मिलता, एंड वांट टू चेंज तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन डीपली दैट आल्सो आई हैव टू चेक. दिस इज कई बार लगता है हाँ आई वॉन्ट टू चेंज, लेकिन अंदर

0: वो आंसर निकल रहा नहीं लेकिन गलती तो इनकी थी तो देन आई डोंट वांट टू चेंज आई स्टिल वांट यू टू चेंज द नीड फॉर आस्किंग अदर पीपल टू चेंज इज अ वेरी डीप बिलीफ बहुत डीप है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें आसपास अपने दूसरे लोग गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं
1: और
0: इसने गलती की इसने गलती की इसने गलती की तो वो बहुत फोकस सब पर है तो अभी भी वांट टू चेंज औरों का बहुत ज्यादा है कि इनको बदलने की जरूरत है सो दीज आर थ्री क्वेश्चंस जो अपने साथ रखें एंड इसको मेडिटेशन में इस पर वर्क करें आंसर्स निकल कर
1: और आंसर्स वही होंगे जो सही है जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे आज की इस पूरी बातचीत के लिए सर शिवानी थैंक यू सो मच फिलहाल आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है लेकिन उसका हम जो है अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 0999334555 0 9873 666 0 9877 555 हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@bkmail.org

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें करता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफर जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि तनाव जो है, टेंशन है, वो बहुत नेचुरल है, एंगर बहुत नेचुरल है, एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है। लेकिन हमने ये जाना कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, असहज है, और किसी तरह से भी कुछ भी करके हमें इसे नहीं अपनी जिंदगी में शामिल करना है। एक और मुद्दा जिस पर हम सोचते थे, जिसे मानते थे कि भाई हैप्पीनेस जो है वो कहीं हमें बाहर से मिलेगी, ये रियलाइज हुआ, ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नो, हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे ही अंदर है वो सुख, वो शांति, वो खुशी। जान तो लिया, लेकिन ये सफर काफी मुश्किल है, कई पड़ाव और अभी तय करने हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तनाव है जिंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन, क्या ये

0: डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूँ या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। क्यों होता है डिप्रेशन, क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है, यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी न किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है?
2: नहीं, बीमारी तो जरूर है, जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें, या तो कहे वो शुरू कहां से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहां से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे, तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा।
0: बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है, वही हम चाहते थे। तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। सुश्री शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी?
1: अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपने जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी, और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजेंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर हॉलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जेनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन टेंशन, फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट यू नो दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू यू नो अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे, लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को।
0: डेफिनेटली दिस इज आर इंटरनल जर्नी, यू नो, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं। डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की, जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहां बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती है?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से, साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं। No, really, there is a sparkle in life. No, at every day, maybe no, every hour, you feel happy in your life, which is rare. शायद नहीं, एक करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, but that's a real stage. Then second stage is you are happy. आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है, वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे
0: हैं।
2: थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सच सब सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट नो एवरी अवर यू मे नॉट बी हैप्पी। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, काम काज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है।

0: यहां पर वो स्टेज कहेंगे कि शुरुआत हुई डिप्रेशन की कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो। उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था, नहीं भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है
1: लेकिन हाँ,
0: फिर भी होता है कि चलो नहीं हो मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो
1: मुक्ति मिल जाए मुझे
0: तो अच्छा है। तो ये फिर स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं
1: एवरीथिंग फिनिश्ड।
0: हाँ, या तो आप ढूंढ रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं ना, प्लान भी बनाने लगते हैं। और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड,
1: कर ही लेते हैं,
0: या तो भी कामकाज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को, ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है। That is a really you are deep down in depression if that stage comes.
1: Good. So like ये एक पूरे stages को हमारे सामने बहुत clarity से आप लेकर आए हैं, तो वो stage पर आते हैं जहाँ हम पकड़ सकते हैं, you know, like
0: या तो उससे भी पहले मैं कहूंगा सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी stage बने कि जिसमें spark in life है, you are really feeling happiness at every hour, every moment of your life. और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने।
1: बिल्कुल, हम बहुत अच्छे आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली। क्या पा सकते हैं हम?
2: आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छे पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ऐसा तो जीवन मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना, यहां तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहे और बहुत समय खुश रहे तो कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी एक्सपेक्ट यू नो एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी।
1: ज्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा,
2: सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है, अभी जैसे द यू नो दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम। लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहां हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थे। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक टारगेट रख दें कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा, दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे
1: अगेन पॉजिटिव थॉट विल लीड टू माय
2: बिलीफ, लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम।
0: शिवानी बेन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया ना, इट्स अ डीपर पॉइंट कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, एक महीने तक सुख चला तो अभी दुख आना ही चाहिए, इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा और सोचता है तो होगा,
1: सोचता है पता नहीं कौन सा सुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ वो, फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है, इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन?
0: इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, लेकिन इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो और 1 मिनट सोने दो,

0: उठते हैं तो जोर से जैसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो अच्छे से, सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो,
1: लेट इट सी, एक्चुअली अंदर जाने देने
0: से इट्स अ गुड डे टुडे। और सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना, वातावरण भी चेंज होने लगे, एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है वो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी।
1: लेकिन डॉक्टर साहब रसिस्टर शिवानी, बात वहीं आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है ये अवेकनिंग विल हैपन इनफैक्ट, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इनफैक्ट सच अ इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना, तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, यू नो कि आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं वो मेडिटेशन हो जाती है। तो हम जहां तक आ चुके हैं, डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है, उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूं तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूं।
0: कनुप्रिया जी, आपके प्रश्न में उत्तर बहुत अच्छा है, आपने कहा अवेयरनेस है ना, जो अवेयरनेस से पावरफुल शब्द है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है। अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहां पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया, बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूं लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है।
1: कैन वी गो बैक सिस्टर शिवानी, डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं,
2: आई एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग, थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुनाते हैं, जैसे कहते हैं, आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते, दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट इन दैट सेम स्टेट ऑफ माइंड विच आई यूज्ड टू बी अ कपल ऑफ इयर्स बैक, एंड देन ही सेड व्हाई, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह से जो अवेयरनेस अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में
1: नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया, तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती
0: हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है, आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है।
2: मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताए थे, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करें, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं, यू नो वट इज इट दैट ट्रिगर्स दैट, और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं, वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान
1: ये होने लग गया कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं वो भी, और वो भी डर लगता हो ये चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है, क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं?
0: नाउ इट डिपेंड, इसका पूरा आधार कि कौन से स्टेज पर आप है,
1: फर्स्ट हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे,
0: ऐसे हाथ में तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, बल मेहनत ज्यादा लगेगी, परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि बीज आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, भी वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है,
1: नेगेटिव

0: थॉट, या तो भी आपके नेगेटिव ना भी हो लेकिन सही नहीं है, जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं। नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपन्स, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं?
0: वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सच मुझ, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है,
1: हाँ।
0: ना कि भी आप कमजोर व्यक्ति,
1: आप मेंटली बहुत, हाँ, हाँ।
0: क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर। नहीं, कहीं बार मेजर डिप्रेशन,
1: ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रांग।
0: इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहां तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है। और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जीन्स भी पॉसिबल है। भाई, जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। वैसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस
2: है, पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ, फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो
1: कि मेरे
2: जेनेटिकली मेरे को सस्केप्टेबल है उस चीज के लिए।
1: शिवानी, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है, है ना, कहीं ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हमें, हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जा रहे हैं। स्टार्ट टेकिंग इट दैट,
2: उस आदत में रहने, उस स्थिति में रहने की एक आदत से पड़ जाती है।
0: या तो ये होता है, जैसे कईयों को, जैसे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस, सब अरे अरे अरे क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नो बड़ी आस्क। तो आज कल
2: तो लोग अटेंशन, वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहां थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। तो ये चीज भी
0: बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है, भले इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई, ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है।
1: तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण, अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है? क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है? क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं?
0: सबसे पहले तो अपने आप को,
1: फैमिली पे
0: देखो, हाँ फैमिली, ये भी ठीक है कि भाई मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकेंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है कि जिसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहां विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं, और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहां पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी।
1: एंड लाइक आने वाली कड़ियों में हम इन पे जरूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको अब चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है।
2: जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्थ में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसिलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग,
1: खुद से बात कर,
2: सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट येस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प द मेडिकल हेल्थ, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट
1: टू कम है।
0: बहुत अच्छी है, बिल्कुल है ना, सेल्फ काउंसिलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसिलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप, जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं,
1: तुझे खुद भी नहीं पता होता ना शायद।
2: नहीं, कई बार खुद पता होता पता है, दो है। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते।
0: प्रोविडियन साइकोथेरापी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते, साल भर लग जाता है
2: निकलवाने के लिए
0: व्यक्ति उसके बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड।
1: एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज को पकड़ के क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो अपने आप को बचाते, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं, ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है अटैचमेंट की जो बात है, वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है।
0: ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, इसे उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वह एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं।
1: हाँ, वो हम क्लिंग कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना, क्योंकि हम फिर एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है उसको, पर उससे क्लिंग कर जाते हैं उस क्लिंगिंग से।
2: लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है।
1: हाँ,
2: कुछ जो कि थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट जनरली
1: जॉब है, कुछ जॉब
2: समथिंग आउटसाइड, फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए।
1: बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकोथेरेपिस्ट,
2: वी कैन यू नो क्लिंग ऑन टू द काउंसलर।
1: हाँ,
2: क्योंकि वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला तो फिर उनसे स्टिक हो गए।
1: काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए?
0: एक्चुअली पहले से ये ध्यान रखना, या तो देखेंगे काउंसिलर को ही अटेंशन देना, वी नीड टू ट्रेन काउंसिलर्स एंड साइकोथेरापिस्ट दैट यू वॉन्ट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ,
1: बिल्कुल
0: उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इसे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं
1: होगा। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हों हम डिप्रेशन के उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं. ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर हर एपिसोड में हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.

0: सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. थैंक्स.
0: आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है. हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है. कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की. जरूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले. कहा जाता है कि जहां आंख खुले वहीं सवेरा होता है. सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नजर आने लग सकती है और अपने ही माइंड पावर से हम काफी कुछ चीजें बदल सकते हैं. लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए. और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है. ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सबके लिए है. क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं. अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर जिंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.
2: नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपाली मोकाशे. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप हर शनिवार को सुनते हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा अपना ज्ञान भी जो है बढ़ता है और साथ ही साथ हम अपने विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेट करते हैं कि भाई वो अपने करियर को सुंदर बनाएं, सुगम बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इसीलिए हमारा विषय जो है अलग अलग रहता है और हर हफ्ते हम अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और बातचीत कराते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ आप एक क्या कह सकते हैं जीनियस आपका जो है मन है, दिमाग है, दिल है क्योंकि आपने 218 के करीब किताबें लिखी हैं और ये लिखने का क्रम अभी भी जारी है आपका। इसके साथ में आप एक साइकेट्रिक है, मनोविशेषज्ञ है, मन के डॉक्टर है। तो निश्चित तौर पे मन हमारा जो है एक अदृश्य शक्ति है लेकिन बिना मन के हम हो नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले अगर करियर की बात करना चाहें तो हम अपने मन की कुछ चीजों को समझ लें। पूरा मन समझने से हम तो फिर पार हो जाएंगे लेकिन मन का कुछ जो सिंपल टेक्निक है, समझ है, उसको अगर हम ठीक से समझ लें तो हमारी जो आज की समस्या जो पेरेंटिंग की जो मुश्किलें आ रही हैं जहां पर माँ बाप और बच्चों के बीच में जो दूरियां बन गई हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में एक बड़ी समस्या

0: आशा करूंगा हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो भी सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम को, उन सभी को बड़ा अच्छा लगेगा और आपके द्वारा बताए गए बातों को वो बहुत ही अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, सबसे प्रथम तो रमेश भाई आपके मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहां बुलाया। बहुत ही सुंदर विषय आपने चुना हुआ है पेरेंटिंग। इस विषय के ऊपर काफी ज्यादा जोर लोग नहीं देते हैं क्योंकि उनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट आखिर में है क्या? पेरेंटिंग यह सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो अदृश्य विषय है, दिखने वाला विषय नहीं है। और जो चीजें अदृश्य होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा हर एक फैमिली को लगता है कि जब भाई शादी हो गई है, बच्चे आ गए हैं तो अपने आप वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानस शास्त्र के विषय को अगर हमने गहराई से जाना तो पता चलता है पेरेंटिंग यह विषय अपने आप में बहुत विशाल और बहुत नाजुक विषय है। हमें समझना पड़ेगा नई पीढ़ी को, नए बच्चों को जो एक अलग विलक्षण अलग प्रकार के विश्व में रह रहे हैं, उनके साथ में जो अब तक इंसानों के हाथ में नहीं थी वो चीज आ गई है और वो है स्मार्टफोन। पेरेंटिंग इस विषय को हम थोड़ा अधिक विस्तार से जानेंगे और शुरू से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। आजकल बहुत बड़ी समस्या जो पालकों को है वो ये है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन के कारण वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मोबाइल एडिक्शन के कारण माइंड कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, बच्चा परफॉर्मेंस स्कूल में जब भी करता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसके पीछे के कारण क्या है और इसको हमने कैसे हैंडल करना चाहिए? सबसे प्रथमतः ये जान लीजिए कि कुछ माता पिता बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को ये ऊपर जरूरत से ज्यादा चिल्लाते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्शन ली और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन और उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन लेते हो तो वो बहुत ज्यादा रोएगा, मारामारी कर सकता है, घर की चीजों को तोड़ सकता है। इन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करें, स्मूथली उसको कैसे हैंडल करना है, इसकी चर्चा आज हम मुख्यत्वे करने वाले हैं। पेरेंटिंग के अंदर एक विचित्र चीज आ जाती है कि जितने माता पिता होते हैं उनको लगता है कि उनका बचपन जो गुजरा वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के गुजरा। इसके लिए नई पीढ़ी जो है उसके पास विचित्र चीज हाथ में आ गई है और गलत तरीके की चीजें हाथ में आ गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 25-25 साल के पीढ़ियों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि आज के पेरेंट्स को तकलीफ है कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। जो पेरेंट्स अभी अपने 30-35 या 40 साल की उम्र में हैं, वो याद करके देखें उनके बचपन में प्रॉब्लम क्या थी। उनके माता पिता टीवी के मतलब बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है उसको लेकर के परेशान थे और कहा करते थे कि ये टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया। उनसे भी 25 साल पहले की हम बात करेंगे तो उस वक्त तो केवल दूरदर्शन था, फिर भी माता पिता को यह समस्या थी कि बच्चे हमारा ज्यादा टीवी देखते हैं। उससे पहले 25 साल की बात करेंगे तो पता चलता है कि उस वक्त रेडियो था यानी ट्रांजिस्टर और बच्चे बहुत ज्यादा फिल्मी गीत सुनते हैं, ये तकलीफें थी। कुल मिलाकर के हर एक पीढ़ी को ऐसे लगता है कि आने वाले पीढ़ी को नया मिला हुआ तंत्र ये खराब वस्तु है और हमें जो अपने बचपन में दिया गया था दैट वॉज द बेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता को अब टेक्निकली शिक्षित होने की जरूरत है। सबसे प्रथमतः यह ध्यान में लीजिए, स्मार्टफोन बुरी चीज नहीं है, स्मार्टफोन फालतू नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का एक्सटेंडेड ऐसा हिस्सा है। दूसरी भाषा में कहे तो यह एक जिन्न है जो अलादीन के चिराग के अंदर से निकलता है, उस प्रकार से उसको आप जो भी आज्ञा दोगे, जो भी हुक्म देंगे तो उसका वो पालन करेगा। जिन्न प्रकट होकर कहता है हुक्म मेरे आका। बच्चों को यह सिखाना जरूरी हो जाता है कि मोबाइल फोन को अपना फ्रेंड बना दीजिए, अपना टीचर, अपना मेंटर बना दीजिए। उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका प्रशिक्षण स्वयं माता पिता उनको देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, अब होता क्या है, कई बार गलती

0: यहाँ पे हो जाती है। माता पिता ही बच्चों को एडिक्टिव कैसे बना रहे हैं अनजाने में, उसका हम सबसे प्रथमतः विश्लेषण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा छोटा है, कितना 5-6 साल का, खाना नहीं ठीक ढंग से खा रहा है, तो माँ ये नहीं कहेगी कि उसकी रेसिपी खराब है, माँ ये नहीं कहेगी कि वो बेस्वाद का खाना उसने पकाया है, माँ ये कहेगी कि उसके हाथ में मोबाइल दे दो ना। जब बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया कि माँ फिर उसके मुंह में क्या क्या ठूस रही है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, माँ को तो बड़ा आनंद होता है कि देखो देखो मोबाइल चालू कर दिया और बच्चे ने पूरा खाना खा लिया। अब धीरे धीरे करते करते यह आदत बुरी आदत में परिवर्तित हो जाती है। कहीं पर अगर हम मेहमान बन के जाते हैं, पारिवारिक कुछ गैदरिंग वगैरह होंगे, तो हम बच्चों को लोगों के साथ में घुलने मिलने देने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको मोबाइल फोन दे देते हैं, बोलते तो बेटा कोने में बैठ ले और गेम खेल ले। क्यों? क्योंकि मुझको मेरी सहेली से बात करनी है, मुझको मेरे रिश्तेदार से बात करनी है, मुझको मेरे दोस्तों से बात करनी है, और बच्चों को मैं अवॉइड करना चाहता हूं, तो बच्चों को मैंने ही आदत लगा दी कि जा तू अपने मोबाइल के साथ में खेल ले। अब ये मोबाइल फोन बड़ी अद्भुत चीज है। अब इसके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति है, और ये शक्ति है दृक्श्राव्य शक्ति, यानी कि उसके अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, और वो भी कैसे, जब तक मैं चाहूं और जैसे मैं चाहूं, तो ये मेरा गुलाम हुआ। अब ये गुलामी की जो चीज है, ये बच्चों को बेहद पसंद आती है। यार बोलते हैं खाना खाने के लिए जाए तो मम्मी कंट्रोल कर रहे हैं, स्कूल में जाए तो टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं, घर में पिताजी आ जाते तो वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मैं स्वयं कंट्रोल कर सकता हूं, जिसके अंदर अलग अलग प्राणी, अलग अलग चित्र मुझको दिखाई देते हैं, जिनका स्वामी मैं हूं, और जिसके कारण बच्चों के अंदर अहंकार पनपता है, और ये नौकर यानी कि उसका डिवाइस उसको बेहद पसंद आने लगता है। समस्या तब शुरू हो जाती है जब अतिरिक्त समय यानी जिसको हम कहते हैं एडिक्शन लगने के चांसेस जब तैयार हो जाते हैं तब। तो सबसे प्रथम तो जानना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय एडिक्शन, यानी किसी चीज की हमें आदत लग जाती है, ऐसा क्यों?
1: जी डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे जीवन में हम कभी कभी किसी चीज की आदतीय हो जाते हैं, और ये आदत क्यों लगती है, क्या कारण है, और इससे छूटना क्या आसान है, इस विषय को आगे हम लोग सुनेंगे, डॉक्टर ईश्वरलाल जी विस्तार से बताएंगे हमें। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही अच्छा विषय जो है आज डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है पेरेंटिंग के बारे में। और ये टीचर्स, माता पिता और बच्चे, हम सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हम सभी लोगों का, और ये ट्रायंगल मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, सबको सुकून देने वाला है। तो बहुत ही अच्छा विषय है। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी, जिनसे बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि आदत की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब यहां पर क्या होता है, किस तरह से ये आदत के अधीन क्यों हो जाते हैं? मतलब किसी भी चीज को, हम जैसे मोबाइल के हो, या किसी को पीने का होता है, किसी को ड्रग्स का हो जाता है, तो ये एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है?
1: एडिक्शन यानी कि आदत लगना, ये इसके कारण होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक स्त्रव होता है, हार्मोन होते हैं, वो बहने का या स्त्रवने का काम शुरू होता है। अब ये डोपामाइन करता क्या है? डोपामाइन जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्लेजर यानी कि आनंद की भावना, सुख की भावना को निर्माण करता है। यह डोपामाइन हमारे स्लीप को भी कंट्रोल करता है, नींद के विषय को कंट्रोल करता है। डोपामाइन हमें मन की शांति देता है और डोपामाइन हमें गुस्सा भी दिला देता है, यानी कि हाइपर एक्टिव भी हमें बना सकता है। डोपामाइन जैसे जैसे बहने लगता है वैसे वैसे हमें उस चीज के बारे में आकर्षण पैदा हो जाता है, और डोपामाइन के कारण उस चीज के हम धीरे धीरे गुलाम बनने लगते हैं। और यही एग्जैक्टली हमारे मोबाइल फोन के साथ में होता है कि पहले वो मेरा गुलाम था और करते करते करते मेरे डोपामाइन ने मुझको ऐसे संकेत देने का काम शुरू कर दिया कि

0: स्वयं इसका गुलाम कब बन गया मुझको ही मालूम नहीं। कई बार पेरेंट्स ने इसको देखा होगा कि बच्चे को मन चाहा उसका मोबाइल खेलने देते हैं, उसके बाद में वो शांत हो जाता है और सो जाता है। ये क्या होता है? ये इसी के कारण होता है क्योंकि मन को शांत करने वाले ऐसे कुछ तत्व बच्चे के ब्रेन में प्रवाहित होने लगते हैं। इसी के कारण आजकल हम देखते हैं केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी जब तक उनको नींद नहीं आती है तब तक वो अपने मोबाइल को देखते रहेंगे, उसके अंदर सर्फिंग करते रहेंगे। डोपामाइन की समस्या ये है कि ये हमें पूरी दुनिया भुलाने का काम शुरू कर देता है। हमें मालूम होता है कि ये काम हमने नहीं करना चाहिए या दूसरा काम करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमें आदत लग गई तो हमने उसको बार बार छूना है, मोबाइल के स्क्रीन को बार बार देखना है, ये इसी के कारण होता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि केमिकल है जो डोपामिन नाम है और ये हमें सुकून देता है, आनंद देता है, और इसका जो है बढ़ना या फिर ये निकलना दिमाग से है ना, कोई भी केमिकल है जो है वो दिमाग से निकलता है, ब्रेन से ही रिलीज होता है, तो निश्चित तौर पे हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हम किसी चीज से सुख पाते हैं। तो निश्चित तौर पे मोबाइल हमें जो है कुछ चीजें दिखाता है, कलर्स दिखाता है, कोई मल्टी स्क्रीन वाला चीज है, और हाथ में आते ही हमें खुशी होती है और हम उसको यूज करना शुरू कर देते, तो हमारा ब्रेन जो है ये चीज को देखकर एक्टिवेट कर देता है डोपामिन को, और फिर हम इसके डोपामिन वहां हमें मन को सुख देता है और यहां हमारी शरीर जो है मोबाइल से सुख लेना शुरू कर देता है, तो इसलिए हम इसके गुलाम होते, मालिक होते हुए भी। तो अब ये चीजों को कैसे कंट्रोल करें, इसके आगे की फार्मूला क्या है कि हम जैसे हमारे विद्यार्थी मित्र है जो पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ने का छोड़कर इसी मोबाइल में लगे तो उनकी तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर लाइफ खराब हो जाएगा, तो ऐसा न हो कि वो कंट्रोल में आ जाए, उनका डोपामिन भी पढ़ाई में लगे और इन आदतों से भी छूटे, इसके लिए क्या फार्मूला है, क्या हो सकता है?
0: धन्यवाद रमेश भाई, थैंक यू। तो हम ये इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये डोपामाइन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे या मोबाइल की आदत को कैसे छुड़वाया जाता है। तो सबसे प्रथमतः पेरेंट्स ने ये जानना है कि अचानक, मतलब जब आपका बच्चा मोबाइल के अंदर डूब गया है, अंदर वो खेल रहा है, तो उसको अचानक उसके हाथ से मत ले लीजिए, बच्चा पागल हो जाएगा, चिल्लाएगा और ओवर रिएक्ट करेगा, शायद किसी चीज को, किसी वस्तु को फेंक कर मारेगा। यह ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे किसी शराबी को हम अचानक उसके अंदर से जागरूक करना चाहते हैं और वो अचानक से वायलेंट हो जाएगा। अब इस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, ये मन को शांत करने का डोपामाइन काम कैसे करता है। आपने कभी टीवी पर, सिनेमा में या किसी आश्रम में देखा होगा कि लोग ध्यान के लिए बैठते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में आपने देखा होगा सेंटर पे लोग आते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, एकाग्रता वहां पे कर रहे हैं। ये मन जब एकाग्र होता है तो ध्यान करने वाले लोगों का आप निरीक्षण कीजिए, कैसे है वो, वो अपने शरीर की कम से कम न्यूनतम वो मूवमेंट कर रहे हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, निश्चल हो गए हैं, जरा भी मूवमेंट नहीं है। दूसरा, उनके सांसों की गति को देख लीजिए, इनकी सांसों की गति जो है ये बहुत धीमी हो गई है, उनके खून की रफ्तार बहुत स्लो हो गई है, शांत हो गई है। अब मोबाइल खेलने वाले बच्चे का आप निरीक्षण कीजिए एज अ थर्ड पर्सन, क्या कर रहा है, उसके उंगलियों की या हाथों की उसकी हल्की सी मूवमेंट हो रही है, फिर क्या कर रहा है, दोनों आंखें जो वो गड़ाए हुए हैं ये स्क्रीन के ऊपर, उसकी सांसें धीमी चल रही है, उसकी खून की रफ्तार धीमी गति से चल रही है और संपूर्णतः वो कॉन्सेंट्रेट हो गया है, शून्य के जैसे एकाग्र हो गया है मोबाइल के विषय के अंदर, यानी अगर वो कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, संपूर्ण एकाग्रता वहां पे गई है। अब इस एकाग्रता को हमने अचानक से भंग कर दिया तो एकाग्रता भंग होने के कारण गुस्सा आ जाता है। उसी प्रकार से गुस्सा कि अगर कोई व्यक्ति, पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग भी अगर है और ध्यान की शून्य की अवस्था में गए हैं, बैठे हैं शांतिपूर्वक, और किसी व्यक्ति ने आकर के उनको जगा दिया, अचानक नींद से जगा दिया, या दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, यही ठीक हमारा होता है रात को 1:30 बजे या 2 बजे।

बाद में जब हम स्वयं सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो हमारा निरीक्षण करें, मतलब थर्ड पर्सन का हम निरीक्षण कर सकते हैं, क्या स्थिति है। उसका शरीर संपूर्णता फ्लैट है, उसके शरीर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसकी सांसें जो है बहुत धीमी गति से चल रही है, उसका रक्त बहुत धीमी गति से चल रहा है, संपूर्णतः एकाग्र है, फोकस्ड है, शायद कोई सपना देख रहा है, शायद गहरी निद्रा में है। अब उसको अचानक रात को 2 बजे आप अचानक उसको जागृत कर देते हैं, उठ जाओ, क्या रिएक्शन हो जाएगी उस व्यक्ति के? पहले 2 सेकंड उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, और बाद में आपने उसको नींद से जगा दिया इसी के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। तो ये गहरी निद्रा आखिर में क्या है? वहां पे भी वही होता है जो ध्यान की अवस्था में हो रहा है, शांति। जब हम ध्यान के लिए एक्चुअल बैठते हैं, जैसे लोग सेंटर्स में आकर के बैठते हैं ब्रह्मा कुमारी के, तो ये हो जाता है मन की शांति, शांत बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल खेलने वाला बंदा जो है, हमारा बच्चा जो है, ये एकाग्र हो गया है। अब उसकी एकाग्रता को अचानक भंग नहीं करे, अचानक अगर आपने मोबाइल को छीन लिया तो क्या हो जाएगा? मारामारी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा तेज गुस्सा करे। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में कोई है या गहरे ध्यान की अवस्था में कोई बैठा हुआ है, तो उसको आप कभी पुकार करके देखिए, उसको आवाज लगा करके देखिए, उसके गात्र यानी पंच इंद्रिय जो है वो एकाग्र हो चुके हैं, वो आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। ठीक वही प्रक्रिया मोबाइल खेलने वाले बच्चे के साथ में हो रही है, और उसकी माँ उसको पुकारती है, किचन के अंदर से उसको आवाज देती है कि बेटा खाना तैयार है या कुछ भी एक साइड काम, तो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, तो माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो 2 बार 3 बार बच्चे से बात करेगी, उसको तेज गुस्सा आ जाता है, नजदीक आ जाएगी, मोबाइल छीनेगी, शायद उसको एक आध झपड़ भी लगाएगी। सो दैट इज रॉन्ग बिहेवियर। ये बहुत गलत तरीके से हम अपने बच्चों के साथ में पेश आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार आपकी बात को सुनेंगे, उसके बाद में घर के संस्कार अगर अच्छे हैं तो बच्चा म्यूट मोड पे चला जाएगा, यानी किसी से भी बातचीत करना बंद करेगा। ये पहली रिएक्शन आएगी, या दूसरी रिएक्शन ये आ जाएगी, उसका एक्सट्रीम रिएक्शन, कि उसको अपने दोस्त प्यारे लगने लगेंगे। फिर वो क्या करेगा, किसी चौराहे पे बैठा, किसी दोस्त के घर पे जाकर के बैठा, तो वहां पे जाकर के ये लोग मोबाइल खेलने लगेंगे, और इसी के कारण पबजी के जैसे जो हिंसक ऐसे गेम होते हैं, उसके अंदर जाकर के लोगों के बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं, पक्के दोस्त बन जाते हैं, और घर के लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर माता पिता को दुश्मन नहीं बनना है, बच्चे को अगर हैंडल करना है, या बच्चे के हाथ से मोबाइल अगर लेना है, तो लेते कैसे हैं? एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज्यादा कारगर साबित करेगा। और ये क्या करना है, खास करके माँ ने, अगर पिताजी घर पे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पिता भी अगर करे तो भी चलेगा। सबसे प्रथम था मोबाइल के अंदर जो बच्चा डूब गया है, बहुत गहराई से उसको अगर खेल रहा है, तो बच्चे के पास जाकर के लेफ्ट हैंड को उसके सहस्त्रार चक्र यानी सर के ऊपर रखना है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमारा राइट हैंड उसके सहस्त्रार यानी के उसके सर से लेकर के पीठ से होते हुए उसके पीठ के अंत तक लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार। ये क्या हो जाता है कि कुंडलिनी शक्ति अंदर से जब जागृत हो जाती है और बच्चा जब एकाग्र हो गया है, तो पहले इसके चक्र जो खुल गए हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा। और उसका ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है कि जब हम हाथ घुमाते हैं तो बच्चे को अपने हाथ के द्वारा प्यार का एहसास हो जाता है, उसके ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन तैयार हो गया है, जिसको खाद मिल रही है किसके द्वारा, मोबाइल के स्क्रीन के द्वारा, अब ये उसका अंतर्मन उसको कहता है कि नहीं, इससे बेहतरीन चीज मुझको कुछ मिल रही है, क्योंकि स्पर्श के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा उसको प्रेम की भावना मिल रही है। और 3 बार केवल हम उसके पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो बच्चा जो है वो अपने ध्यान की निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाएगा और पूछेगा, हाँ बोलो मम्मी। और फिर तभी हम क्या करेंगे, हम उसके हाथ से मोबाइल अचानक खींच करके नहीं लेंगे। बच्चे ने अगर उस वक्त मोबाइल बाजू में रख दिया, बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज हम दूसरे तीसरे किसी विषय पे बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे से प्रेम पूर्वक उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। और मान लीजिए बच्चा अगर किसी गेम में है, हो सकता है उसका टारगेट कम्प्लीट ही होने वाला है और उसको हमने जगा दिया, तो बोलेगा मामा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं जरा टारगेट कम्प्लीट करूं। उसको टारगेट कम्प्लीट करने दीजिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उसके लिए रुक जाइए 1 मिनट 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय के

0: नहीं, एक मिनट दो मिनट रुक जाइए, उसको उस अवस्था से बाहर लेकर के आइए। अब उसका मोबाइल हम लेंगे अपने हाथ में, बाजू में रख देंगे और उसको हम एहसास दिला देंगे कि भाई कितने समय के लिए आप खेल रहे हैं। ध्यान रखिए, हमेशा बच्चों को डोज नहीं पिलाना है, बच्चों को हमेशा लेक्चर नहीं देना। मैं किसी किसी पेरेंट को देखता हूँ, अरे बाप रे, हर एक घंटे में, आधे घंटे में लेक्चर देना शुरू, लेक्चर देना शुरू, या तो फिर क्या करेंगे, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दैट इज अगेन रॉन्ग पेरेंटिंग, क्योंकि उसका अंतर्मन अब जागृत हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि उसके चक्र जागृत हुए हैं, तो चक्र जागृत होने के बाद में जितनी पॉजिटिव बात आप करोगे उतना वो एब्सॉर्ब करने वाला है, और निगेटिव भी बात करोगे तो भी उसको वो एब्सॉर्ब करेगा और उसके बाद में उसको छोड़ेगा नहीं और आपसे वो दुश्मनी ले लेगा। तो सकारात्मक बात ये हम करते हैं कि बेटा देखिए, आप अभी एक घंटे से या आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया खेल रहे हैं, पढ़ाई करनी है कि नहीं है, या आपके स्कूल में कुछ होमवर्क तो दिया होगा। अच्छा आज बताइए तो स्कूल में क्या हुआ था, अच्छा इस टीचर ने क्या होमवर्क दिया। उस प्रकार से हम अलग प्रकार से उनको पेरेंट ये पढ़ाई के सब्जेक्ट के ऊपर धीरे से ट्रैक को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना शुरू कर देंगे। आगे हम जानेंगे कि मोबाइल के द्वारा बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो आने वाली तांत्रिक बदलाव, आने वाले तांत्रिक बदलावों को एक्सेप्ट कर सके और हमारी सनातन धर्म की वैल्यू जो है, हमारे प्राचीन परंपराएं जो है, ये विषय हम इसके अंदर टिंट के द्वारा हल्का हल्का कैसे डालते हुए जाएंगे।
1: डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमें जो है टर्निंग प्वाइंट की तरफ बच्चे को ले जाना है और डोपामाइन भी उनका जो है अच्छा काम करता रहे और उनकी आदतों में जो है एक बहुत बड़ा ड्राफिक चेंज स्लो एंड स्टडी के साथ हम लोग कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है परमानेंटली बुराइयों से बचे रहे और अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होता रहे। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कुंडलिनी जागृत वाला, और कैसे बच्चों को डील करना है बच्चों के साथ में, ये भी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया। जैसे आप आशीर्वाद की तरह जो है सर पे हाथ फेरेंगे तो एक प्यार जो है बच्चे को मिलेगा और बच्चा जो है आपकी बात मानने के लिए तैयार होगा। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे तो आपने करके भी देखा होगा कोई बच्चा नहीं सुनता। तो आइए आगे इसी विषय को लेकर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चंदा रे कभी तो जमीन पर बैठेंगे, बातें करेंगे।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा विषय लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग की बात बहुत ज्यादा जो है विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आज हम जो बातें करेंगे वो बच्चे और माता पिता के बीच में एक समन्वय हो और बच्चों की या बड़ों की जो आदतें हैं वो एडिक्शन से कैसे फ्री हो सके, वो चीजें हमने प्राथमिकता के साथ आज के इस एपिसोड में बातें की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब बात हो रही थी योग की, बच्चे के लिए एक जो है पेरेंटिंग कैसे हो, बच्चे को कैसे हम अपने साथ में रखे, उसे प्यार दुलार दे और उसके पॉजिटिव इमोशन के साथ में उसकी पॉजिटिव शक्तियों को कैसे बढ़ाएं और उनके करियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं उनके आदतों में बदलाव करके, तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे।
3: धन्यवाद रमेश जी। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं, बहुत रोचक और रोमांचक ऐसी चर्चा हो रही है, बहुत मजा आ रहा है कुछ चीजें हमें बताने के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग या सब्जेक्ट केवल मन का नहीं है, केवल तन का नहीं है, ये अंतर्मन का और आत्मा के लेवल का भी विषय है। इसी के लिए और ज्यादा गहन और बेहतरीन ढंग से चर्चा होना जरूरी है। मोबाइल फोन के अंदर क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसकी थोड़ी सी रिसर्च अपने माता पिता ने करना बेहद जरूरी है। साइंस को रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम में चैनल्स होते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, बच्चे का जो नंबर होगा उसके अंदर भी उसको सब्सक्राइब करके रखना। और वाकई में जैसा कि इंस्टाग्राम को अगर आपने देखा तो ये जिंदगी जैसा काम करता है।

वो अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम आउट कर सकता है और माता पिता का नाम बड़ा कर सकता है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी। आज के इस एपिसोड में पेरेंटिंग का एक छोटा सा भाग आपने अपने साथ हमारे साथ शेयर किया और बड़ा मजा आया मुझे आपके साथ इस नॉलेज को सुनते हुए। आपने जो शेयरिंग किया बेहद खुशी हुई हमें और हमारे श्रोताओं को और खास बच्चों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो कहीं।

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार।
2: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
0: की है बोल भी।
2: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
0: हाय ठीक है ठीक है, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू, मैं जाता हूँ। आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ई कल मुही को छोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात। लाइए वो जेवरात।
0: ले ले,
1: बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारी सारी उम्र के कमाई गई डॉलर है। हाय भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है लेकिन इसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है वास्तविक जीवन में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का महत्व। हम सभी कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं। जब कभी हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है, कोई प्रोग्राम अटक जाता है या स्क्रीन पर कुछ भी काम नहीं करता, तब हम एक खास कमांड का उपयोग करते हैं, कंट्रोल।

0: रास्ता बंद हो जाए, जब मेहनत के बावजूद सफलता ना मिले, तब निराश होने के बजाय हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग विकल्प होते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। ऑल्ट हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि नया रास्ता ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मतलब हटाना, मिटाना। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें ढोते रहते हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक सोच, बीती हुई असफलताओं का बोझ, गलत आदतें और कभी कभी ऐसे रिश्ते भी जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलें डिलीट करते हैं और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और जीवन से भी इन अवरोधों को हटाने का साहस करना चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी उलझ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में हमें अपने दिमाग का टास्क मैनेजर खोलने की आवश्यकता होती है, यानी इस स्टेज पर आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। यह देखना कि कौन सी बातें हमारी ऊर्जा खा रही हैं, मींस हमारी बैटरी लो कर रही हैं, और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। और अंत में स्वयं को सुरक्षित रखना। जैसे हम कंप्यूटर को लॉक करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वैसे ही हमें अपने निजी जीवन की सीमाएं तय करनी चाहिए। हर बात हर व्यक्ति से साझा करना जरूरी नहीं होता। आत्मसम्मान और गोपनीयता भी मानसिक शांति का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट केवल एक तकनीकी कमांड नहीं है, बल्कि जीवन का मंत्र है। यह हमें सिखाता है नियंत्रण रखें, विकल्प खोजें, अनावश्यक चीजें हटाएं और आवश्यकता पड़ने पर नई शुरुआत करें। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और संतुलित भी बने रहेंगे। इसी विचार के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: हम लोग बात कर रहे थे लोनलीनेस की और अकेलेपन की और दुनिया को अवॉइड कर देंगे और भागेंगे. तो मेरे गुरु ने भी मुझे एक बार कहा था कि हमें जागना है, भागना नहीं है.
2: सी? तो जागना है मतलब अपने अंदर के ओरिजिनल संस्कार को जगाना है.
1: लेकिन मैं अभी भी भागना पसंद करता हूँ.
2: भागना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना. मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग. इनसे काम नहीं हो पा रहा, मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग. इनके साथ रहकर कंफर्टेबल नहीं, मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग. ये तो बहुत ईजी है, लेकिन वहां रहना, उस संस्कार के साथ अडेप्ट करना, ये सब करने में ही आत्मा के वो ओरिजिनल संस्कार जागेंगे. ओरिजिनल संस्कार क्या है आत्मा का? ओरिजिनल संस्कार है प्योरिटी, पीस, लव. ये ओरिजिनल संस्कार है. ये संस्कार अनुभव कब होगा? जब उनके साथ रहेंगे, उनके अक्वायर्ड संस्कारों को देखेंगे, फिर भी अपने ओरिजिनल संस्कार को यूज करेंगे, तब वो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होगा.
1: अकेले रह के चेंज क्यों नहीं हो सकते?
2: अकेले रह के कैसे चेंज होंगे?
1: मेडिटेट करके.
2: और मेडिटेशन का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? संस्कार कैसे बनेगा? जब हम कर्म में आएंगे. कर्म में कैसे आएंगे अगर किसी के साथ रह नहीं रहे? तो इससे अच्छा रोज मेडिटेट करते जाएं, संस्कार को कर्म में लाते जाएं, पावर को बढ़ाते जाएं, फिर और मेडिटेट करते जाएं, फिर कर्म में लाते जाएं. अकेले रहकर करके कैसे होगा? हम इस प्रोसेस में हैं कि हमें अपने वो ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना है. अभी वो मर्ज्ड है. ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? प्योरिटी. अभी कौन सा संस्कार है? अहंकार. अब अगर मुझे आपसे काम करना है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं मेरा अहंकार हर्ट हो रहा है, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है. मुझे वर्क करना है अपने ऊपर, इस अहंकार को नीचे लेके जाना है, प्योरिटी को ऊपर लेकर आना है. अगर मैं इस अहंकार को ऊपर रखकर मैं कहती हूँ मैं इनके साथ काम ही नहीं करती और घर बैठ गए, तो ये अहंकार का संस्कार तो ऊपर ही रह जाएगा ना, और प्योरिटी का नीचे ही रह जाएगा. कैसे आएगा ये ऊपर? हाउ विल इट हैपन? सो विथड्रॉइंग इज नॉट द सोल्यूशन. विथड्रॉ नहीं करना है. This is very important. It's very important. परमात्मा सिखाते हैं दुनिया से संन्यास नहीं करना है, अपने विकारों से संन्यास करना है. संन्यास करना मतलब दूर होकर चले जाना, दुनिया से किनारा नहीं होना, अपनी कमजोरियों से किनारा होना है. उसके लिए दुनिया के बीच में रहकर ही अपने कम

0: दूसरों से किनारा होंगे ना।
1: लेकिन सिस्टर, एक आदमी पछताता भी है ना, उस वक्त मैं चुप क्यों रहा, जवाब दे देता तो आज, मतलब उसका एक पेन भी होता है।
0: वो अहंकार है जो बोलता है, तो उस अहंकार को भी प्यार से समझाना है कि उस टाइम मैं चुप क्यों रहा, उसमें मेरे कितने सारे फायदे हुए।
1: उसमें आदमी हल्का तो हो जाता है ना जवाब देके, फायदा यहाँ भी तो है।
0: हल्का नहीं हो जाता जवाब देके ऐसे।
1: क्यों?
0: जैसे
1: क्यों नहीं हल्का होता है? कितना कितना वो रहता है वजन सर पे।
0: किस चीज का वजन सर पे?
1: मैंने क्या क्यों नहीं जवाब दिया, क्या मैं कमजोर हूँ?
0: अगर वो वाली थॉट्स क्रिएट हो रही है तो हम भारी हो रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा नेचुरल बात करने का तरीका हुआ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए,
1: नेचुरल नहीं, आपके ज्ञान सुनने के बाद अगर ये वाला तरीका ले रहे हैं तो उसके बाद पेन भी तो होता है। कि
0: पेन तब हो रहा है कि अंदर थॉट्स वो क्रिएट हो रहे हैं। अब सिर्फ बाहर चुप नहीं, अंदर भी चुप, अंदर भी चुप। ये जो हम कह रहे हैं कि हम बोल देते और हल्के हो जाते, कैसे हल्के हो जाते? जैसे हम
1: बोला मैं दस बोला बात खत्म,
0: मैं दस बोला बात खत्म।
1: हाँ।
0: मैं दस बोला तो दस बार उस ग्रूव को री इन्फोर्स कर दिया। कौन से ग्रूव को? अहंकार को। अहंकार से तो आत्मा भारी होती है, सोल कॉन्शियसनेस लाइटनेस है, वो ग्रूव पक्का कर
1: दिया। ऐसे भी भारी होनी है, ऐसे भी भारी होनी
0: है। वैसे भारी नहीं होगी अगर आपने प्यार
1: कुछ बोल दिया और मैं चुप रहा
0: तो मैंने उस संस्कार को डीपन नहीं किया। लेकिन अब मुझे ध्यान ये रखना है कि मैं अंदर भी चुप हो जाऊं।
1: अंदर कैसे होंगे?
0: सपोज आपने मुझे अभी कुछ कहा, मैं बाहर से चुप रही क्योंकि अटेंशन है, नहीं उल्टा जवाब देना, चुप रहना है, तो आधा बच गया कि एक्शन में नहीं आया, आधा बच गया। अगर कर्म में भी आ जाता, एक्शन में भी आ जाता तो वो ग्रूव और भी पक्का हो जाता, बैटरी और भी डिप्लीट होती अंदर। अब अंदर फिर भी सोच चल रही है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो तो फिर ज्ञान से अंदर की थॉट्स को भी तो साइलेंस करना है ना। मुख को तो साइलेंस कर लिया,
1: वो कैसे करेंगे?
0: अंदर की थॉट्स को हम कैसे साइलेंस कर रहे हैं? उस आत्मा ने अपने अहंकार वश किया
1: तो
0: वो उनका अक्वायर्ड संस्कार था, उन्होंने कह दिया, वो उनकी पर्सनालिटी के थ्रू उन्होंने बोला, उनको जो सही लगा उन्होंने कहा।
1: उनको बार बार सही लगे, बार बार बोलेंगे फिर?
0: वो तो बोलेंगे ही अगर उनको बोलना है तो। अगर मुझे उनको कहना भी है कुछ कि दिस इज नॉट द राइट वे फॉर अस टू बी इन दिस रिलेशनशिप, बट आई कैन डू इट इन अ सॉफ्ट स्वीट असर्टिव वे, ताकि मेरे यहाँ कौन सा ग्रूव बन रहा है, रिएक्ट करने का बार बार बना ग्रूव, तो आत्मा की पावर घट रही है। लेकिन स्टेबिलिटी से, प्यार से वही बात कह सकते हैं, काम भी हो जाएगा।
1: और अगर वही बात आप प्यार से कहें और उसने फिर उल्टा जवाब दे दिया और बढ़ा दिया अपने संस्कार उसके वैसे, तो फिर आपने तो वो बोला दिस इज नॉट द वे, तो ठीक है, इफ दिस इज नॉट द वे इट्स ओके, देन आपने किया, मैंने किया, तो बात वहां भी बढ़ सकती है, बढ़नी है
0: तो अगर नहीं कहना है तो नहीं कहें। That's what I said. अगर
1: आप लिख के भी दे तो डबल जवाब हो सकता है,
0: तो फिर साइलेंस हो जाए।
1: अरे यहाँ साइलेंस होने में दुख होता है,
0: साइलेंस मन से हो जाए।
1: आपने जो कहा कि बड़े प्यार से बोलो, देखो हमारा रिश्ता अच्छा है, हम लोग ऐसे करना ठीक नहीं है, तो बोले लेकिन आप ऐसे पहले आप सुधरी फिर बात लेक्चर दीजिए, और आप खुद पहले ज्ञानी बने फिर हमको ज्ञान दीजिए। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, सिचुएशन ही ऐसी थी, आप लोगों ने क्रिएट किया, वो लंबा चला गया।
0: एक तो दूसरे के आंसर्स को इतना अंदर प्रिपेयर मत कीजिए,
1: एक्सपीरियंस भी है ना लाइफ का।
0: सी दिस इज व्हाट इज टेकिंग द पास्ट बैक इनटू द प्रेजेंट, एक्सपीरियंस है ना। पिछली बार उन्होंने ऐसा कहा, इस बार भी वो
1: इन्होंने कहा, तो नॉर्मल दुनिया में जो इगोइस्टिक लोग होते हैं बोलते हैं ना,
0: हर आत्मा अलग, हर सिचुएशन अलग, हर क्षण हर एक का व्यवहार अलग, इतना कंडीशनिंग नहीं करनी है। ये कंडीशनिंग हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती है। ये इस बार कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हमें नहीं पता, हमें ये देखना है कि मेरे लिए सही क्या है। अगर मैं अपने मन में उस बात को साइलेंस करके खत्म कर सकती हूँ, खत्म कर दो। अगर मुझे ये लगता है ठीक है मैं आज तो इसको साइलेंस कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये बार बार होता रहा तो क्या ये एनर्जी इस रिश्ते के लिए ठीक है? नहीं ठीक है, सो आई विल क्रिएट प्योर इंटेंशन, नॉट क्रिटिसिजम इंटेंशन, प्योर इंटेंशन,
1: नॉट इवन अ वार्निंग,
0: नॉट अ वार्निंग।

0: डेयरिंग, वार्निंग तो ये हुई अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एनर्जी और इंटेंशन ही तो सारा खेल खेलेगी ना। हम क्या करते हैं, अंदर पहले इतना डर क्रिएट करते हैं, दर्द क्रिएट करते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब रिजेंटमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उनसे जाके बात करते हैं हमें नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन एनर्जी पहले कौन सी भेजती, सारी इतनी सारी एनर्जी कौन सी भेजती, अहंकार के थ्रू भेजी। उनका भी अहंकार वहां रेडी बैठा होगा जवाब देने के लिए। आत्मा आत्मा से बात करे, अहंकार अहंकार से बात न करे। अहंकार अहंकार से बात करता है तो कॉन्फ्लिक्ट है, आत्मा आत्मा से बात करती है तो हार्मनी है। ये तो कभी भी करके देख सकते हैं। अहंकार से बात करेंगे तो उनका भी अहंकार जवाब देगा वहां से। तो बात हो गई मन से उसको अंडरस्टैंड करके, फिर प्योरिटी का इंटेंशन कि हमें लगता है कि हमें आगे से ऐसा करें, ये आपसे हो गया मेरे से हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए व्हाट डू वी वांट टू डू, इफ वी फाइंड द नीड टू से इट, इफ वी डोंट इट्स परफेक्टली फाइन। हर बार बाहर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे रिश्ते तो यहीं सॉल्व हो जाएंगे। और कोई रिश्ते में बाहर अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, अंदर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हर थॉट जो हम क्रिएट करके भेज रहे हैं, उस दिन आपने कहा कि आप एक ग्रुप ऑफ बहनें जो आपके घर आ रही थी उनके बारे में आप कई दिनों से कुछ क्रिएट कर रहे थे,
1: काफी दिनों से।
0: अब यू हैव टू सी दैट अगेन, काफी दिनों से क्रिएट करने के कारण, जैसे नेगेटिव क्रिएट करने के कारण, जैसे ही स्टिम्यूलस आया उन्होंने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया। मतलब अहंकार के थ्रू वाइब्रेशन गए थे, उनका व्यवहार भी अहंकार के थ्रू ही आया। दिस वी हैव टू ऑलवेज होल्ड दिस एक्सपीरियंस कि अगर मैं आत्मा ऐसी थॉट्स क्रिएट करके भेजूंगी तब सामने से वैसा व्यवहार आएगा। अब मैं ऑपोजिट भी करके भेज सकती हूँ, ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि इनसे बात करने से पहले हम कुछ दिनों के लिए क्यों ना इनको प्यारी एंड प्योर थॉट्स भेजें, क्यों ना भेजें, रोज इमर्ज करें उस आत्मा को मेडिटेशन में, रोज उसको वो थॉट्स भेजें कि हमारे बीच जो हुआ खत्म, दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, हमारे बीच इस बार जो इंटरेक्शन होगी बहुत अच्छी है। आई अंडरस्टैंड उस दिन आपने ऐसा क्यों कह दिया, कोई दर्द था, कोई हर्ट थी, उस वजह से आपने ऐसा कह दिया। डू वी एवर वर्क ऑन आर रिलेशनशिप्स लाइक दैट, हम सोल्यूशन और हार्मनी की तरफ वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाते जा रहे हैं। लेट्स वर्क टूवर्ड्स अ सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज गोइंग टू बिगिन हियर। अगर इतने दिन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने का असर दिखा
1: तो फिर पॉजिटिव थॉट्स का भी असर दिखेगा।
0: लेकिन पॉजिटिव थॉट्स वो नहीं जो सिर्फ 2-5 मिनट मेडिटेशन में क्रिएट किए और सारा दिन फिर नेगेटिव सोचा। कॉन्शियसली कुछ दिन उनके लिए वैसी थॉट्स क्रिएट करके, उनको वो मैसेजेस भेज के, उस कॉन्वर्सेशन को ऑलरेडी अपनी तरफ से प्यारा बनाकर अब मिले हैं।
1: But let me speak a negative line. Forgiving is not easy.
0: Forgiving is not easy. Forgive karna matlab kya karna?
1: Kisi ne aapko bahut insult kar di aur aap usko forgive, theek hai, accept kar liya, phir dosti bhi kar li, lekin wo scar jo hai andar, dard jo lakeer hai, wo rehti hai. Yaad rehti hai, thought rehti hai, wo feeling rehti hai, bhale kam ho jaye.
0: कम होते होते खत्म हो जाएगी।
1: माँ की 2 थप्पड़ भूल जाते हैं,
0: उसकी एनर्जी अलग थी,
1: लेकिन रिश्तों में नहीं होता है।
0: क्या नहीं होता है? फॉरगिव नहीं हो सकते।
1: फॉरगिव नहीं कर सकते, फॉरगिव करना मुश्किल है।
0: इंसल्ट मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो मेरे लिए सही नहीं था, यही हुआ ना इंसल्ट।
1: मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे
0: दर्द हुई, हर्ट हुई, मैंने वो बात पकड़ के रखी। तो अभी भी दर्द किसको हो रही है, किसको दर्द हो रही है? वो दर्द अभी भी मुझे हो रही है, उनको नहीं हो रही।
1: मुझे इसलिए हो रही कि मुझे फॉरगिविंग मुश्किल हो रही है, दैट्स ऑल।
0: फॉरगिविंग मींस व्हाट?
1: फॉरगिविंग मींस कि छोड़ो उसको, माफ कर दो।
0: माफ उसको तो करना ही नहीं है। उसको क्या माफ करेंगे आप?
1: फिर किसको
0: कैसे माफ करेंगे आप उसको?
1: चलो उसे बोल दिया, उसका नेचर ऐसा है, उस

0: थोड़ा सा रिवाइंड करके पास्ट से किसी एक सीन को सामने लाते हैं, जब हमने कहा उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उस सीन को सामने लेकर आते हैं, उस आत्मा को सामने लेकर आते हैं, उनके व्यवहार को देखें, उस सीन को एग्जैक्टली वैसे का वैसे रिपीट होते हुए देखें, क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, क्या एनर्जी थी, क्या शब्द थे, देखें उस आत्मा को। वो आत्मा उस क्षण अपनी सीट से, अपने स्वराज्य से पूरी तरह से हिल चुके थे। उस आत्मा का उस क्षण अपने शब्दों पर और बोल पर संयम नहीं था। वो आत्मा उस क्षण दर्द में थी, दर्द वश व्यवहार कर रही थी। ऐसी आत्मा के प्रति कंपैशन। वो आत्मा इमोशनली बीमार थी उस क्षण। इस आत्मा के प्रति कंपैशन। वो आत्मा कमजोर है, उस आत्मा के प्रति दुआएं। I the pure being, I the loveful being। देखें अपने आप से प्योरिटी की वाइब्रेशन, लाइक अ लेजर बीम मुझ आत्मा से निकल उस आत्मा तक पहुंच रही है। मुझ आत्मा से पावर, ब्लेसिंग्स, मुझ आत्मा से निकल उस आत्मा तक पहुंच रही है। ये वाइब्रेशन उस आत्मा की हीलिंग करती है। ये वाइब्रेशन मुझे उस दर्द से मुक्त करती है। ये वाइब्रेशन उस पास्ट की बात को खत्म कर एक नई शुरुआत करती है। Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: We need to do this every day with that soul. Every day, not just once. Every day, every day, every day for a few minutes. Ye karte karte ek nayi recording ho jayegi. Ye energy hai jo unko bhejni hai hame. Thank you.
1: Zarur. Thank you so much. Om Shanti. Thank you.
2: Instead of withdrawing from people whose sanskars are uncomfortable for us, we should emerge our original sanskars, which will give us the power to accept their sanskars. We need to withdraw from our weaknesses, not from people. Sanskars are created only when we bring them into action repeatedly. Only when we interact with difficult sanskars of others, we get an opportunity to repeatedly bring our humility and compassion into action and make it our natural sanskar. Reacting to people and returning them the energy they have given us will only deepen our sanskar of ego. Keeping silent or expressing our opinion softly and assertively weakens our ego and strengthens our purity and soul power. If we keep pure vibrations for the other person, not being judgmental or critical about them inside, and then talk to them about resolving our conflicts, the dialogue will be towards harmony. If we are critical and then talk, it becomes an argument between egos and creates conflict.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बकवास है सब बकवास। सब बकवास है सब बकवास। बाजू मेहरा को जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस

0: से पूछा, क्या आप इस नोट के बारे में कुछ जानते हो?
1: जी, मुझे इस नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शुक्रवार रात को मैं घर पर ही था और वायलिन पर नई नई धुन बजा रहा था।
0: क्या तुम्हें वायलिन बजाना पसंद है?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: फिर गोपीचंद राहुल राव के घर पहुँचे।
2: मुझे वायलिन बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं हमेशा वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ।
0: बेटा, ये बताइए कि शुक्रवार की रात आप क्या कर रहे थे?
2: उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैं घर पर ही था और टीवी देखने में व्यस्त था, क्योंकि मम्मी पापा के रहते ये मुमकिन नहीं था।
0: आखिर गोपीचंद रोमा वाजपेयी के घर गए। क्या शुक्रवार की रात आप घर पर थी?
3: जी बिल्कुल, उस रात मैंने अपनी सहेली को घर बुलाया था और हम दोनों खूब देर तक बातें कर रहे थे।
0: मिस कामा, मुझे पता है कि यह नोट किसने लिखा है।
4: बताइए गोपीचंद जी।
0: यह नोट राहुल राव ने लिखा है, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा कि वह शुक्रवार की रात कहाँ था तो उसने कहा कि वह टीवी देख रहा था, जबकि उस वक्त तो पूरे मोहल्ले में ही लाइट नहीं थी।
4: धन्यवाद गोपीचंद जी।
5: झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है, और राहुल का झूठ पकड़ते हुए गोपीचंद ने केस तुरंत ही सॉल्व कर दिया।
6: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
7: अश्विनी
6: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
8: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
6: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

जय माता जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो फुलेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे संजय। स्वागत है हमारे विशेष आध्यात्मिक सफर दिव्यता का आह्वान में। जय माता जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात वर्षों बाद भी याद आते ही मन भारी हो जाता है? किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी रिश्ते की कड़वाहट या अपनों ने ही की हुई कोई गलती, समय तो आगे बढ़ जाता है लेकिन हम उन घटनाओं को भी अपने भीतर ढोने रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस मानसिक बोझ की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी खुशियों को धीरे धीरे कम करता रहता है, और साथ ही जानेंगे कि माँ दुर्गा हमें कैसे सिखाती है कि भीतर की शक्तियों को जगाकर हम इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो सुनते हैं माँ चंद्रघंटा देवी की आरती।

जय माता जी। दोस्तों कल्पना कीजिए कि अपने कंधे पर एक भारी बैग रखा हो। पहले दिन आपको उसका वजन महसूस होगा, लेकिन यदि आप उसे महीनों तक उठाए रखे तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। यही हमारी मानसिक स्थिति है। हम पुराने दुख, शिकायतें, पछतावे और असफलता अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। कई बार कोई घटना वर्षों पहले हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे आज भी दोहराता रहता है। हर बार याद करके हम खुद को वही दर्द फिर से दे देते हैं। सवाल यह है कि क्या अतीत को बदला जा सकता है? नहीं, लेकिन अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदला जा सकता है। जब हम किसी घटनाओं को केवल अपनी नजरों से देखते हैं, तो दुख पैदा होता है, लेकिन जब हम सामने वाले की परिस्थिति

की सीमाओं और उसकी सोच को समझने का प्रयास करते हैं तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। शायद जिसने हमें यह दुख दिया वह भी अपनी पीड़ा में था, शायद उसकी समझ उस समय उतनी ही थी। यह समझ माफ करने की शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों सुनते हैं एक नवरात्रि का सुंदर गीत।

जय माता जी। दोस्तों आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का महत्व और तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा देवी के बारे में आध्यात्मिक कथा सुनते हैं। रेडियो सुनेरी आवाज पर माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा कहलाता है। विवाह के बाद उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ जो घंटा के आकार का दिखाई देता था, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। एक समय असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को अत्यंत परेशान कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुँची। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश देखकर दैत्य भयभीत हो उठे। माँ ने अपने विभिन्न असुरों से दुष्ट असुरों का संहार किया और देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। माँ का यह रूप अत्यंत वीर और शक्तिशाली माना जाता है। उनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। वे अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान करती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों सुनते हैं माँ चंद्रघंटा देवी की चालीसा।

जय माता जी। दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे अधिकांश दुखों का कारण घटना ही नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती है। हम चाहते हैं कि परिवार के लोग हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करें, दोस्त हमें समझे, सहकर्मी हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में निराशा आ जाती है। धीरे धीरे ये निराशा शिकायत बन जाती है और शिकायत भीतर की शांति छीन लेती है। चलिए एक छोटा सा सवाल खुद से पूछते हैं, क्या हम हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं या फिर हम उसे अपनी कल्पना के अनुसार देखना चाहते हैं? जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें स्वीकारना शुरू करते हैं, तब भीतर आजादी का अनुभव होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत बातों का समर्थन करें, इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपनी मानसिक शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न रखें। सच्ची शांति तब में आती है जब हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर रहना सीखते हैं। यह तो जीवन की कला है दोस्तों, स्वीकार करना, समझना और आगे बढ़ना। एक और मधुर गीत का समय हो गया है, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जय माता जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूँ। आज रात सोने से पहले मात्र 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न है, कौन सी ऐसी पुरानी घटना है जिसे मैं अब तक पकड़े हुए हूँ? दूसरा, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में शिकायत है? और तीसरा, क्या मैं स्वयं को किसी गलती के लिए अपनी अभी भी दोषी मान रहा हूँ? अब गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं इस घटना को मुक्त करता हूँ, मैं इस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे तो एक दिन मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा, और जब मन हल्का होगा तभी भीतर की दिव्यता का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, आज हमने

सीखा कि जीवन को हल्का बनाने का रास्ता अतीत को पकड़ कर रखने में नहीं बल्कि उसे सम्मान पूर्वक विदा करने में है। अपेक्षाएं कम होगी तो शांति बढ़ेगी, शिकायतें कम होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और जब हम स्वयं को तथा दूसरों को क्षमा करना चाहेंगे तब भीतर की दिव्यता स्वतः प्रकट होने लगेगी। मैं हूँ आपका दोस्त आज संजय। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आंतरिक दिव्यता का आह्वान के एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराइए, स्वयं से प्रेम कीजिए और अपने मन को हल्का रखिए। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: यहाँ के हम सिकंदर, पात्र परिचय: आदित्य प्रकाश, यश, पंकज, वेदांत, सृष्टि, सैंडी, आदित्य। लेखिका सुधा पुरी।
2: ये कितना अच्छा हो गया ना कि हमारे स्कूल में ये नया तरणताल खुल गया है।
3: मजा ही आ गया, मैंने तो तैराकी सीख भी ली है।
4: मुझे तो पहले से ही आती थी, बस इस तरणताल का इंतजार था।
3: वो देखो, उधर दीदी भी आई हुई है।
5: वो तो क्लास लेती है ना, सिखा रही है तैरना बच्चों को, बहुत अच्छा सिखाती है।
6: ये तुम लोग यहाँ तैरने आए हो या बातें करने? चलो चलो, कोई पानी में यूं ही खड़ा ना दिखाई दे।
2: दीदी, मैं तो तैर रहा था, इन्होंने जबरदस्ती रोक लिया।
3: अच्छा, कितने भोले बनते हो।
4: भोले या चालाक।
6: ये आजकल गर्मियों की छुट्टियों के यही तो मजे हैं, नई नई चीजें सीख लो। कोई गिटार सीख रहा है तो कोई हारमोनियम।
4: मैं तो कैलीग्राफी सीख रहा हूँ।
3: मैं भी सुंदर लिखाई या कह लो सजावटी लिखाई की कला सीख रहा हूँ।
5: काश इस धरती पर भी हम अपने कारनामे सुंदरता से लिख पाते।
6: मतलब?
5: दीदी, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि किस प्रकार हम मानव अपनी गतिविधियों के कारण धरती पर विनाश की गाथा लिख रहे हैं।
6: ओहो, तुम तो बड़ी फिलोसोफर बन रही हो।
3: हाँ दीदी, लगता है ये बड़ी होकर कोई पर्यावरण अधिकारी बनेगी।
4: वो तो हम सबको बनना चाहिए, चाहे हम वो नौकरी करें ना करें, पर पर्यावरण का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा।
2: अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं अपने देश की सभी नदियों को एकदम स्वच्छ बना दूंगा।
3: मैं भी, मैं तो पूरे संसार की नदियों को।
4: और मैं सारे संसार के सागरों को।
5: और मैं सारे महासागरों को।
6: ये तो अच्छी सोच है। तुम्हें पता है, एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कई दिनों तक पानी पर फैले हुए तेल से हजारों समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं।
5: हाँ दीदी, विज्ञान में पढ़ा था हमने।
7: सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, उन पर आश्रित कई पक्षी आहत होते हैं।
8: पूरी की पूरी जल प्राणियों की श्रृंखला ही तीतर बीतर हो जाती है।
6: जानते हो, कई कई वर्ष लग जाते हैं सब ठीक होते होते।
3: पानी दूषित होता है वो अलग।
6: पता भी है, यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के अनुसार लगभग 4000 बच्चे हर रोज गंदा पानी पी के मर रहे हैं।
8: पर हम सब जानकर अनजान बनते हैं।
7: हम मानो कब देखेंगे सब।
6: चलो चलो, अभी तो तैराकी करते हैं, उसके बाद इस पर और भी बातें करेंगे। सब रात का खाना जल्दी से खा लेना और मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर पर कुछ दिखाऊंगी भी।
9: ओके दीदी।
4: चलो चलो, सब तैरने की रेस लगाते हैं।

0: दीदी भी ना जानकारी का भंडार है।
1: चलो जल्दी जल्दी चलो ना, फिर अंधेरे होने से पहले घर भी पहुंचना है।
2: चलो भाग के चलते हैं, रेस।
3: हाँ हाँ।
4: ओहो आ गए तुम, आओ आओ बैठो।
5: क्या कर रही हो दीदी?
4: अरे मुझे भी तो कई प्रोजेक्ट बनाने हैं अपने कोर्स के लिए, उसी पर लगी हुई हूँ।
6: आप आज सुबह क्या बात बता रहे थे हमें पर्यावरण के बारे में?
4: ये देखो यहाँ ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
2: किसके बारे में?
4: वही प्रदूषण के बारे में। तुम लोग एसिड रेन के बारे में जानते हो?
0: नाम तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है।
1: हाँ दीदी, जरा सा एसिड हाथ पर लग जाए तो शरीर में कितनी जलन होती है।
7: और क्या, और अगर पूरी बारिश ही एसिड की हो तो, हे भगवान।
4: हाँ मैं भी यही सोच रही थी, ये मैं बताती हूँ कैसे होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक हवा में जब मिक्स होते हैं तो उसके मॉइस्चर के साथ मिलकर वो बदल जाते हैं एसिड रेन में।
7: पर ये सब प्रदूषक आते कहाँ से हैं?
4: फैक्ट्रियों के, वाहनों के धुओं से और कहाँ से।
0: अच्छा और फिर?
4: फिर धरती पर फिर से गिरते हैं एसिड रेन की तरह,
1: बल्कि तेज हवाएं इस एसिड रेन

0: प्रदूषण के इलाकों से बहुत दूर भी ले जाती हैं।
1: मतलब कि जैसे प्रदूषण हुआ हो चीन में और असर पड़े अफ्रीका में।
2: हाँ, तो इससे तो और भुगतते हैं वन, जिसके साथ पेड़ इस एसिड रेन में मर जाते हैं बेचारे।
3: बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। और जब यह बारिश नदियों, तालों, झरनों पर गिरती है तो उनका पानी भी एसिडिक हो जाता है और सब मछलियाँ मर जाती हैं। ऐसे ताल को पता है फिर क्या कहते हैं?
4: क्या?
3: उसे फिर मृत ताल कहते हैं।
5: पर इसका तालों पर ही क्यों, धरती पर भी बुरा असर पड़ता होगा।
3: तो और क्या, धरती पर इसका कम बुरा असर होता है?
0: वो कैसे दीदी?
3: सब तरह के पत्थर, खास करके संगमरमर तो घिस ही जाते हैं।
6: पर दीदी, हमारे देश में तो इतनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं।
0: कितने ही सुंदर मकबरे,
2: सुंदर ऐतिहासिक इमारतें इस एसिड रेन से तो बहुत खराब हो जाती होंगी।
3: वो तो है ही, ताजमहल का ही हाल देख लो, कितना फीका पड़ता जा रहा है। शुक्र है भारत सरकार ने कुछ रिफाइनरीज पर रोक लगाई है, काफी फर्क पड़ा है उससे।
6: पर दीदी, जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी प्रकार से हर समस्या का हल भी तो होता है।
3: वो तो है ही,
0: और ढूंढने निकलोगे तो सब हर प्रकृति में ही मिल जाएंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
1: तो आपने तो कितना कुछ पढ़ा है, हमें भी तो कुछ बताओ ना।
3: देखो, सबसे पहले तो उतने ही पेड़ काटने चाहिए जितनी कम से कम जरूरत हो।
2: बल्कि दीदी, मैं एक बात कहूँ?
3: क्या?
2: लकड़ी के बजाय किसी और पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए मकान, फर्नीचर आदि बनाने में, जो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और आसानी से मिल भी जाता हो।
3: गुड आइडिया।
4: और दीदी, मैं तो कहती हूँ यही नहीं, अगर पेड़ काटे भी तो एक के बदले दस दस पेड़ लगाए।
5: और दीदी, सिर्फ लगाए ही नहीं, उनकी रक्षा भी तो करे, एक नवजात शिशु की तरह उसका लालन पालन, समय पर पानी, समय पर खाद।
6: एक और बात, हमें कूड़े को या सूखी हुई पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, इससे धुआं होगा और प्रदूषण।
3: बिल्कुल ठीक, बल्कि उन्हें जमीन में दबाकर कंपोस्ट बनाना चाहिए।
4: और पानी, हमारी नदियाँ?
6: मैं बताऊँ, फैक्ट्रियों का कूड़ा नदियों में नहीं डालना चाहिए।
0: तो फिर क्या करें उसका?
3: अगर डालना भी हो तो उपचार करके डालना चाहिए। देखा है क्या हाल कर रखा है अपनी पवित्र यमुना का, गंगा मैया का।
2: दीदी, मैंने पढ़ा था कि हमारे देश का राष्ट्रीय जल पशु जलीय डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार पर है।
4: पर दीदी, हमारे रीति रिवाज, हमारे कई त्योहार जैसे गणपति विसर्जन, बंगाल में नवरात्रि की पूजा,
3: हर बात का हल निकाला जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए।
5: जैसे दीदी, गणपति विसर्जन हो या माँ दुर्गा विसर्जन, मूर्तियाँ ऐसे पदार्थ से बनाई जा सकती है जो पानी में सही से घुल जाए।
4: यही नहीं, पूजा के तुरंत बाद पूजा सामग्री बटोर कर अगर उनकी खाट बना ली जाए
3: तो सही मानों में देवी देवताओं का विसर्जन भी होगा और मानव पर उनकी कृपा भी।
6: समय के साथ बदलना तो प्रकृति का पहला नियम है।
3: जो नहीं बदले उनका हश्र जानते हो ना।
4: हाँ दीदी, आपने बताया था, जो पौधे पानी के वेग के आगे झुकते नहीं टूट जाते हैं।
3: धरती माँ जो पूरी मानव जाति का बोझ उठाती है, उसे सब माँ कहकर बुलाते हैं। उसके संरक्षण के लिए ये सब कुछ करना तो जरूरी हो गया है अब।
6: आइडिया दीदी, आजकल हम सबको स्कूल से ही कई पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, क्यों ना हम अपनी सोसाइटी में एक प्रदर्शनी लगाएं और सबको बुलाकर धरती पर होने वाले प्रदूषण संबंधित अत्याचारों के बारे में बताएं।
0: हाँ, और अगर एक्स्ट्रा मॉडल या चार्ट बना लेते हैं तो स्कूल खुलने पर इसी तरह की प्रदर्शनी अपने स्कूल में भी लगा सकते हैं।
1: तब तो हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे।
2: कुछ के तो माता पिता भी इस काम में दिलचस्पी लेकर हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे।
4: सोचो हमारा पर्यावरण संरक्षा का संदेश कितने लोगों तक पहुँचेगा।
5: पर फिर भी होगा तो सागर में एक बूंद की तरह ही।
3: मदर टेरेसा कहती थी, मैं जो भी मानव जाति के लिए करती हूँ वह सागर में एक बूंद की तरह है। पर अगर उतना भी न हो तो सागर में एक बूंद की कमी तो आ ही जाएगी।
7: तो चलो, अब सोचना कैसा, आज से ही शुरू हो जाएंगे।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, वेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हां, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें

0: पैदा होता है, बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एन्जॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूंगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूं।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उनकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले जमाने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बाल मन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूं और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है, तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया, लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में, तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूं, तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूं, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप, तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है, लेकिन हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार

0: पर ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी तो वो हार की फीलिंग करेगा, तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो।
1: जी, तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की जरूरत है, मासूमियत की जरूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप तो उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे, हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं न कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर न जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीजें जो है बच्चों के साथ जोड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या है, ये कैसे संभव है और उन चीजों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है। क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में है तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे सर में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएं छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं किन्हीं प्रश्नों के माध्यम से, और यहां भी मैं देख रहा हूं कि आपने

0: बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो मैं बड़ों से ही कहता हूं कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है, तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहां जाएंगे। तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूं तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें ये समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है, और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेलकूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीजें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी,
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, और कई बार ये चीजें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या है और विकल्प क्या क्या है। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीजों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का, और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिलके और बड़े आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहां पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा, और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए, और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है।

0: भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा। और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा। और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और के बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं न कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।
1: अजय जी, काफी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार, पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीजें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है, मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: अरे अरे अरे, रुक जाओ ना जी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंदी रहा।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक खाब था और उस खाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे, बहुत लंबे खाब में सफर कर रही थी। एक ही खाब कई बार देखा है मैंने।

0: से और आगोश में नन्हे को लिए।
1: Will you shut up?

0: गुजरात भ्रमण समाप्त कर बम्बई और पुणे होकर महाबलेश्वर गए। लिमड़ी के राजा ठाकुर साहब से महाबलेश्वर में स्वामी जी की अचानक भेंट हुई थी। लिमड़ी में स्वामी जी ने राजभवन में निवास किया था। महाबलेश्वर में अचानक भेंट होने के कुछ ही दिनों बाद वे लिमड़ी के राजा के घर चले गए। ठाकुर साहब अति विद्वान सज्जन और स्वामी जी के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया था और दो बार अमेरिका भी गए थे। ठाकुर साहब ने स्वामी जी को अपने राज्य में ले जाकर वहीं बहुत दिनों तक रखना चाहा था, किंतु स्वामी जी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा,
1: नहीं ठाकुर साहब, अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक व्रत का पालन करना होगा। अभी मेरे लिए विश्राम करना असंभव है। फिर भी यदि कर्म से छुटकारा मिलने पर विश्राम पाने का अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊँगा।
2: स्वामी जी के जीवन में ये अवसर फिर कभी नहीं आया। वे थोड़े दिन ठाकुर साहब के साथ महाबलेश्वर में बिताकर उनके साथ ही पुणे लौट गए। वहाँ लगभग एक हफ्ता रहे। उनकी इच्छा थी कि पुणे से हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाएं, पर ये हो नहीं पाया और वे पुणे से बम्बई होते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में आ गए। शायद क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी और नर्मदा के तट पर तीर्थ स्थानों के आकर्षण से ही वे खंडवा गए थे। वहाँ वे लगभग तीन हफ्ता ठहरे।
0: खंडवा में किसी परिचित के नहीं रहने से इधर उधर घूमते घूमते वे जब श्री हरिदास चट्टोपाध्याय नामक एक वकील के घर के सामने आए, ठीक उसी समय वकील साहब ने भी कचहरी से अपने घर लौटने के समय देखा कि दरवाजे पर एक साधु आए हुए हैं। प्रथम दर्शन में अन्य लोगों की भांति ही चट्टोपाध्याय महाशय ने भी सोचा कि ये घुमक्कड़ साधुओं में से ही कोई एक है, किंतु दो चार बातें करने के बाद ही उन्हें समझते देर न लगी कि वे असाधारण प्रतिभावान पंडित हैं। अतएव उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में आतिथ्य ग्रहण करने को कहा और स्वामी जी के सहमत होने पर उन्हें वहां रखकर अपने आत्मीय जनों के साथ उनकी सेवा में लग गए।
2: खंडवा के बंगाली समाज के लोग स्वामी जी का शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य देखकर सहज ही उनकी ओर आकर्षित हुए। स्वामी जी के चरित्र की मधुरता ने भी उनको सर्वजन

0: प्रिय बना दिया। उनके गृह स्वामी हरिदास बाबू ने इस सर्वगुण संपन्न सन्यासी को नगरवासियों में परिचित करा देने के लिए स्वामी जी को खुली सभा में व्याख्यान देने को कहा। इस प्रस्ताव से स्वामी जी पहले तो सहमत नहीं हुए। वे गुरु शिष्य की भांति आपसी निकटता के सहारे व्यक्तिगत चर्चा के ही पक्षधर थे। विशेषकर उन्होंने बताया कि वक्ता सुलभ स्वरों को ऊपर नीचे करने आदि के कौशल में वे अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बावजूद हरिदास बाबू द्वारा आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा कि उपयुक्त संख्या में श्रोताओं के उपस्थित होने पर वे भाषण देने का प्रयास करने को तैयार हैं, किंतु हरिदास बाबू के लिए भी उस छोटे शहर में श्रोता एकत्र करना संभव नहीं हो पाया और भाषण नहीं हुआ।
1: उसी समय दीवानी अदालत के जज श्री माधव चंद्र बंदोपाध्याय ने एक दिन स्वामी जी के सम्मानार्थ स्थानीय बंगालियों को अपने घर में भोज दिया। भोजन के पहले और बाद का समय सब चर्चा में व्यतीत करने के उद्देश्य से स्वामी जी अपने साथ उपनिषद का एक खंड ले गए थे। निमंत्रित लोगों के एकत्र होने पर उन्होंने कई द्रुह श्लोकों को अत्यंत सरल भाषा में सबको समझा दिया। इन श्रोताओं में बाबू प्यारीलाल गांगुली नामक एक वकील संस्कृत के पंडित के रूप में ख्यात थे, इसलिए वे प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हुए। स्वामी जी ने उनके प्रत्येक प्रश्न का ऐसा सरल और सुस्पष्ट उत्तर दिया कि वकील साहब ने संतुष्ट होकर और ज्यादा प्रश्न नहीं किया तथा पाठ समाप्त हो जाने पर हरिदास बाबू के कानों में कहा, स्वामी जी को देखकर ही लगता है समय आने पर ये एक विश्वविख्यात व्यक्ति होंगे।
0: शिकागो धर्म सभा में योगदान करने की जो कामना स्वामी जी के मन में जूनागढ़ और पोरबंदर में अंकुर के रूप में प्रकट हुई थी, वो यहाँ और भी बड़े आकार में विकसित हुई। उन्होंने सुना था कि अगले वर्ष 1839 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन होगा और विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि उसमें भाग भी लेंगे। इसी से इस विषय की चर्चा में उन्होंने हरिदास बाबू को एक दिन कहा,
2: कोई यदि मेरे यातायात का खर्च दे तो सब ठीक हो जाएगा, मैं जाने को तैयार हूँ।
1: मध्य भारत में खंडवा छोड़कर कुछ उत्तर की ओर जाने के समय उन्हें कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ा। भिन्न भिन्न जाति की विभिन्न प्रकृति के लोगों के बीच वे गए, जो अत्यंत असभ्य और अतिथि सत्कार विमुख हैं, एक मुट्ठी भिक्षा चाहने पर देते नहीं, ठहरने की जगह मांगने पर डांट फटकार देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक निर्जल निराहार रहने के बाद थोड़ा कुछ सामान्य भोजन कर शरीर रक्षा करनी पड़ी। उन्हीं दिनों उन्होंने एक परिवार में कई दिनों तक वास किया था और इन उपेक्षित लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। संभवतः इस घटना और इस प्रकार की अन्य कई घटनाओं से उपेक्षित जातियों में भी अच्छाई का अंकुर देखकर उन लोगों की उन्नति के लिए वे इतनी तीव्रता से जुट गए थे। परिव्राजक जीवन में एक बार स्वामी जी के मन में विचार जगा कि सिद्धि लाभ के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया है। घर घर भिक्षा मांगने और जगह जगह घूमने मात्र से ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अपने एक गुरु भ्राता को लिखित उनके एक पत्र में ये भाव व्यक्त हुआ है,
2: मैं निर्लज भाव से घूम घूम कर दूसरों के घरों में भोजन करता हूँ और इससे विवेक को कष्ट भी नहीं होता, बिल्कुल एक कौवे की तरह है। अब और भिक्षाटन नहीं करूंगा, मुझे खिलाने से गरीबों को क्या लाभ, बल्कि एक मुट्ठी चावल बचने पर वे अपने बेटे बेटियों को तो खिला सकते हैं। यदि भगवान लाभ ही ना हुआ तो ये शरीर रखने से क्या लाभ।
0: इन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वामी जी एक दिन दूर तक फैले हुए एक घने जंगल में रास्ता पार करते समय सोचते रहे, निराहार एवं तपस्या में देह त्याग होने से क्या हानि है। ऐसा विचार करते हुए वे सारा दिन पैदल चलते रहे। रास्ते में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। संध्या होने पर वे थके शरीर से एक पेड़ के नीचे ही सो गए। उनका मन भगवत चिंतन में निमग्न था और आंखें लक्ष्यहीन रूप से सुदूर की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ उन्हीं की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आगे आकर वो समीप में ही बैठ गया, मानो छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। उस समय स्वामी जी सोचते रहे,
2: वाह ये तो खूब हुआ, हम दोनों ही जन तो भूखे हैं। इधर मुझे इस देह में तो ज्ञान लाभ हुआ नहीं और इसके द्वारा संसार के किसी का कल्याण होने की भी तो संभावना नहीं देखता हूँ। अतएव इस देह के द्वारा यदि इस भूखे पशु की भूख मिट जाए तो क्या बुरा।
1: रंच मात्र चंचलता व्यक्त किए बिना वे उसी प्रकार सोए रहे और प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो बाघ छलांग मारकर उन पर टूट पड़ता है। किंतु थोड़ी देर बाद किसी अज्ञात कारण से वो बाघ दूसरी ओर घूमकर तेजी से चला गया। स्वामी जी तब भी सोचते रहे कि संभवतः वह लौटेगा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वो नहीं लौटा। वो रात उन्होंने भगवत चिंतन में उस पेड़ के नीचे ही काटी। प्रातःकाल में ईश्वर के विधान से एक दूसरी ओर उनका मन आकृष्ट हुआ। वे ईश्वर की अशेष करुणा की बात को सोचते हुए कृतज्ञ हृदय से गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हुए। परवर्ती काल में बातों के क्रम में इस घटना का उल्लेख करते हुए समय भी उस समय की अनुभूति का पूर्ण रहस्य या गंभीरता उनके मुंह से कभी व्यक्त नहीं हुई।
0: और एक बार क्लांत और थके होने पर भी वे खाली पेट लंबी राह पर चले जा रहे थे। ग्रीष्मकाल का सूर्य आग बरसा रहा था और राह चलना क्रमशः असंभव था, तथापि आखिरी प्रयास कर वे दूरस्थ एक पेड़ के तले पहुंचे और वहीं लेट गए। शरीर उस समय चेतना रहित हो गया था, आगे चल नहीं पा रहा था। तभी अंधकार में अचानक प्रकाश छिटक जाने की भांति उनके मन में एक विचार उदित हुआ। ये तो सच बात है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, शरीर उस पर अधिकार जमा लेगा। ये कैसी बात है, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूँ। ये सोचते ही उनकी देह में नई शक्ति का संचार हो गया। उनके मन की अचेतनता दूर हो गई, इंद्रियों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई और वे पुनः इस संकल्प के साथ राह पर चलने लगे कि इस प्रकार दुर्बलता के हाथों आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं। उनके परिव्राजक जीवन में ऐसी घटनाएं और भी घटी थी और इनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में एक भाषण देने के क्रम में कहा था,
2: कितनी ही बार मैं निराहार रहकर शत विक्षत पांवों से क्लांत देह लेकर मृत्यु के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कितनी ही बार दिन पर दिन मुट्ठी भर अन्न नहीं पाने से राह चलना असंभव हो जाता था। उस समय क्लांत शरीर से किसी वृक्ष की छांव में लेट जाता और प्रतीत होता कि प्राण वायु निकलती जा रही है। बातें नहीं कर पाता था, विचार करना भी असंभव हो जाता, और ऐसे में मन में ये भाव उठता कि मुझे कोई भय नहीं, तृष्णा नहीं, सोहम सोहम, सारी प्रकृति में ये क्षमता नहीं कि मुझे मसल डाले। प्रकृति तो मेरी दासी है, हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट करो, स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो, विरत मत हो, तभी मैं पुनः शक्ति प्राप्त कर उठ खड़ा होता। इसी से मैं आज भी जीवित हूँ और यहाँ उपस्थित हूँ।
1: खंडवा छोड़ने के पूर्व हरिदास बाबू ने स्वामी जी से और भी कुछ दिनों तक रह जाने के लिए विशेष अनुरोध किया था, किंतु स्वामी जी ने कहा,
2: तुम सब मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हो कि तुम लोगों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु मुझे रहना तो नहीं है। मैं तीर्थ भ्रमण को निकला हूँ, रामेश्वर तक जाना ही होगा। मैं यदि इस प्रकार दीर्घकाल हर जगह बिताऊं तो फिर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा।
1: हरिदास बाबू ने जब समझ लिया कि स्वामी जी किसी तरह भी नहीं रुकेंगे, तब अपने बंबई निवासी एक भाई के नाम एक पत्र देकर कहा,
3: मेरा भाई श्री छविलदास जी से आपका परिचय करा देगा, लगता है कि वे आपकी सहायता कर सकेंगे। वस्तुतः स्वामी जी आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है।
1: स्वामी जी ट्रेन से बंबई के लिए रवाना हो गए।
0: जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बंबई पहुंचकर स्वामी जी बैरिस्टर श्री रामदास छविलदास के घर आए और अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी शीघ्र ही विद्वत समाज में सुविख्यात हो गए। एक दिन किसी नेता के घर पर उनके जाने पर उक्त सज्जन ने उन्हें अखबार का एक विशेष भाग उन्हें पढ़ने को दिया। उसमें छपा था कि लड़कियों की सहमति से शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक नया विधेयक एज ऑफ कंसेंट बिल प्रस्तावित हुआ है और बंगाल का शिक्षित वर्ग उसके विरोध में आंदोलन कर रहा है। इस समाचार से स्वामी जी ने लज्जा से सिर झुका लिया और तीव्र एवं स्पष्ट शब्दों में बाल विवाह के विरुद्ध अपना युक्तिपूर्ण मत प्रकट किया।
1: बंबई में रहते समय अचानक उनकी भेंट काली यानी अभेदा

0: से हो गई। अभेदानंद जी कहते हैं कि
1: उस समय स्वामी जी का हृदय जैसे अग्नि कुंड की भांति हो गया था, अन्य कोई विचार नहीं, केवल कैसे भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता की फिर प्रतिष्ठा होगी, दिन रात यही सोचते। उन दिनों स्वामी जी को देखने पर वे एक प्रचंड आंधी की तरह लगते।
0: उनके हृदय की उत्कंठा देखकर अभेदानंद भी विचलित हो गए थे और स्वामी जी ने स्वयं भी उनसे कहा था,
2: काली, मुझ में इतनी शक्ति और ऊर्जा एकत्र हो गई है कि लगता है मैं फट जाऊंगा।
0: जो लोग अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी के चिंतन के विकास की गति को लक्ष्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी के 22 अगस्त और 20 सितंबर के दोनों पत्र विशेष मूल्यवान हैं। प्रथम पत्र के एक अंश में लिखा है जो उन्होंने जूनागढ़ के दीवानजी को लिखा था,
2: देश के इन भागों में ये देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान खान पान संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। सामान्य लोग वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर उन्हें निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियां एवं मूर्खताएं सिखा रहे हैं। इन कलयुगी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करे।
0: दूसरा पत्र खेतड़ी निवासी पंडित शंकरलाल को लिखा गया है,
2: हम लोगों को विदेशों की यात्रा करनी चाहिए। यदि हम अपने को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है, और साथ ही हमें मुक्त हृदय से दूसरे राष्ट्रों से विचार विनिमय करते रहना चाहिए। किस हास्यास्पद दशा को हम पहुंच गए हैं? यदि कोई हमारे पास गरीब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आता है तो छोटी ही बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर विदेशी थोड़ा पानी डालकर उसका धर्म परिवर्तन कर देता है और उसे पहनने के लिए एक कोट मिल जाता है, फिर चाहे वो कितना ही फटा पुराना क्यों न हो, तब चाहे वो किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में ये विदेशी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग सर्वहारा लोगों को लाखों की संख्या में बदल रहे हैं। हे भगवान, मनुष्य कब दूसरे मनुष्यों से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे?
0: एक मजेदार घटना सुनाता हूँ। सन 1892 ईस्वी के सितंबर मास में बंबई से पुणे जाने वाली रेलगाड़ी के एक दूसरी श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी बैठे थे। डब्बे में और भी 3 महाराष्ट्रीय युवक यात्री थे। उनमें घोर तर्क युद्ध छिड़ा था। तर्क का विषय था संन्यास। 2 युवक रानडे आदि सुधारकों के स्वर में स्वर मिलाकर संन्यास की व्यर्थता तथा उनके दोषों का प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरे व्यक्ति उनके मतों का खंडन कर भारत के प्राचीन संन्यास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ये युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। पास बैठे हुए सन्यासी विवेकानंद इन तर्करत युवकों की युक्ति व उक्तियों को ध्यान से सुन रहे थे। अंत में लोकमान्य तिलक का पक्ष लेकर वे भी तर्क युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस अंग्रेजी जानने वाले सन्यासी की प्रखर प्रतिभा से वे युवकगण उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। स्वामी जी ने धीर भाव से समझा दिया कि सन्यासियों ने ही भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते हुए जातीय जीवन के उच्च आदर्शों का समस्त भारत में प्रचार किया है। भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ये सन्यासी ही है जो शिष्य परंपरा द्वारा भारतीय जीवन के आदर्श की रक्षा विघ्न बाधाओं के बीच में से इतने दिनों तक करता आया है। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि ढोंगी व स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों बीच बीच में संन्यास लांछित तथा विकृत हुआ है, परंतु किसी विशेष व्यक्ति के ढोंग के लिए भारत के समस्त सन्यासी संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं।
3: इस विद्वान सन्यासी की वाक्पटुता और गंभीर पांडित्य को देखकर लोकमान्य तिलक बड़े मुग्ध हुए और स्वामी जी को अपने घर लेवा ले गए। स्वामी जी भी तिलक जी की प्रखर प्रतिभा और उनका वेद और शास्त्रों पर अधिकार देखकर आनंदित हुए और हर्ष

0: साथ उनके ही घर रहने लगे। दोनों आपस में वेदों के गहन अर्थों की चर्चा कर बड़े तृप्त होते थे। इस प्रकार पूना के तिलक भवन में कुछ दिन व्यतीत कर स्वामी जी ने कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया।
1: अन्य स्थानों की भांति कोल्हापुर का शिक्षित समुदाय भी स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हुआ था। खासकर उनकी कठिन विषय को परिष्कृत और हृदयग्राही शब्दों में प्रकट करने की क्षमता ने सबको आकृष्ट किया था। इसी से उन लोगों ने स्थानीय राजा रामीय परिषद में उनके व्याख्यान का आयोजन किया था। स्वामी जी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था,
2: मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसका अकुशल अनुकरण मात्र। यूरोप के लोग भला धर्म कैसे समझेंगे, वे तो विलासिता के पीछे दौड़ते हैं।
1: श्रोताओं में से किसी एक ने कहा, मांसाहारी धर्म को क्या समझेंगे। स्वामी जी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,
2: नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषिगण मांसाहारी थे, क्या तुमने अपने उत्तर रामचरित में इसे नहीं पढ़ा।
1: तब उन्होंने उस ग्रंथ से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनमें मांसाहार का स्पष्ट उल्लेख है। ये सुनकर किसी किसी श्रोता के मन में स्वामी जी की जाति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु इस विषय में उनसे प्रश्न करने का साहस किसमें था।
0: कोल्हापुर से स्वामी जी बेलगांव गए। वहाँ वे श्री भाटे महोदय के घर ठहरे। पहले तो घर वाले या शहर के अन्य लोग उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, परंतु प्रथम दिन से ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोग उनकी बातचीत के ढंग से और सर्वोपरि उनके ज्ञान से आकर्षित हो गए। बेलगांव में भाटे परिवार के सुपुत्र प्रोफेसर जीएस भाटे ने अपने संस्मरण में लिखा है,
2: स्वामी जी की उपस्थिति बेलगांव शहर में भली भांति ज्ञात हो जाने के बाद प्रतिदिन उनके पास जब अनेक लोगों का आगमन होता, तब ये देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि घोर तर्क वितर्क के समय भी स्वामी जी की प्रसन्नता सदा स्थिर बनी रहती। वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। जवाब देने में अत्यंत निपुण होने पर भी वे दूसरों को कभी आहत नहीं करते। एक दिन वाद विवाद के समय मैंने स्वामी जी में जो धीरता देखी थी, उससे हम लोगों का खूब मनोरंजन हुआ था। उस समय बेलगांव में एक कार्यपालक अभियंता थे। सभी विषयों में सुपंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। उन दिनों के अनेक लोगों की भांति बाहर से ये खूब कट्टर होने पर भी भीतर से संदेहवादी और पश्चिम जगत के विज्ञान के भगत थे। दर्शन और विज्ञान के विषय में उनकी जो जानकारी थी, उसकी अपेक्षा स्वामी जी में कहीं अधिक थी। इसके फलस्वरूप तर्क करते समय स्वभावतः वे अपना मिजाज खराब कर अभद्रता दिखाने लगे, पर स्वामी जी मृदुल मुस्कान के साथ कहते, कहने दो उन्हें, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
1: पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दरिद्रता को देखा व समझा था। भारत का परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा था कि विराट जनसमूह का भाग्य यथार्थतः उनके समान ही है, और उन्होंने जाना था कि भारत का जनगण दरिद्र होने पर भी धर्म विमुख नहीं है। हाँ, वो धर्म कई क्षेत्रों में प्राणहीन आचार मात्र रह गया है, तथा धनी और दरिद्र, ऊंच और निम्न जाति के बीच जो विशाल भेद है, उसे दूर करने में धर्म प्रयत्नशील नहीं हुआ है, बल्कि धर्म के नाम पर प्रचारित रीति नीति पुरोहित वर्ग के हाथों में पड़कर इस अलगाव का कारक बन गया है और उसके स्थायित्व के लिए युक्ति लगा रहा है। इस लंबे भ्रमण काल में अधिकतर उन्होंने मात्र कमर में वस्त्र लपेटकर सन्यासी के वेश में ही व्यतीत किया था, और उनके साथ होता था श्री राम कृष्ण का चित्र, एक प्रतिगीता और एक लाठी। तथापि उनके मन में था अटूट ईश्वर विश्वास, अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम और जनगण के प्रति निश्चल अनुराग।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
1: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है।

का चांद छुपेगा तेरे

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हां, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और कभी हम भी इसी तरह थे, ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीजें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एन्जॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूंगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूं।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं, बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझे?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और ये बिल्कुल

0: यही है कि पहले जमाने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बालमन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मेच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है और वो मेच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूं कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूं और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में। तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूं। तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूं, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
1: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ जाएगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह की भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की जरूरत है, मासूमियत की जरूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी वो शायद मर न जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीजें जो है बच्चों के साथ जोड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या है, ये कैसे संभव है और उन चीजों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया।
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी झपकी आंख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा

0: ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है। और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारीपूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है, या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में है तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे सर में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएं छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
0: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं किन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। और यहां भी मैं देख रहा हूं कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो मैं बड़ों से ही कहता हूं कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है, तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहां जाएंगे? तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूं तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेलकूद से या हमारे उधम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीजें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाए, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट रह जाता है और कई बार ये चीजें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या है और विकल्प क्या क्या है। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है। क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीजों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिलके और बड़े आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहां पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं न कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।
1: अजय जी काफी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभाशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीजें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है, तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: पाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, जीवन में हर कोई जीवन को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई परिभाषा खुद बनाता है। किसी के लिए श्रम ही सफलता का साधन है, तो किसी के लिए दोस्ती, संबंध, मैत्री ये सफलता का माध्यम है। किसी के लिए जीवन सफल तब होता है जब वो किसी एक मुकाम तक पहुंचते हैं, और किसी के लिए जीवन तब सफल होता है जब उन्हें इत्मीनान और सुकून मिलता है। हर एक के लिए जीवन की परिभाषा अलग है, लेकिन आज हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, उनके लिए जीवन की परिभाषा ये है, निस्वार्थ परिश्रम। 107.8 रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के जो अतिथि हैं, उनके जीवन का ध्येय या कहे महामंत्र यही है कि परिश्रम, निस्वार्थ परिश्रम, यही परमात्मा के लिए श्रेष्ठ पूजा या साधना है। आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक और मेहमान को लेकर के आया हूँ। हमारे बीच में है श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी, राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव अजीतगढ़ से एक बहुत चमकता हुआ हीरा। जगदीश प्रसाद पारिक जी भारत सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। वो एक जैविक कृषि करने वाले जैविक किसान हैं, जिन्होंने जैविक कृषि को पूरे देश भर में फैलाया है। उन्होंने कईयों तक जैविक कृषि का ज्ञान मुफ्त पहुंचाया है। आइए स्वागत करते हैं जगदीश प्रसाद जी का। जगदीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, नमस्कार।
2: साथियों, इससे पहले कि हम जगदीश जी से हमारी बातचीत शुरू करें, मैं जगदीश जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जगदीश जी हमारे बहुत नजदीक के कहेंगे पड़ोसी हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन है आबू रोड में, माउंट आबू में, और जगदीश जी कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे राजस्थान के सीकर से हैं। जगदीश जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, और क्यों? एक विशेष प्रकार का फूल उगाने के लिए। आप सोचते होंगे कौन सा फूल ऐसा उगाया जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये एक ऐसा फूल है जो केवल दिखने में ही खूबसूरत नहीं, लेकिन खाने में भी बड़ा ही लजीज होता है। मैं बात कर रहा हूँ फूल गोभी की। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी, लगभग 12 से 13 किलो का एक फूल गोभी इन्होंने अपनी नवीनता से, अपने उन्नत प्रयासों से उगाकर के लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। और तब से लेकर के आज तक भी जगदीश जी का नाम जब भी कोई फूलगोभी खाता है, और भारत की विशेष फूलगोभियों को खाता है, तो उन्हें जगदीश जी का नाम जरूर याद आता है। जगदीश जी, फूलगोभी जिस प्रकार से हम सबके जीवन में, हम सबके थाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं समझता हूँ आपके प्रयासों की वजह से वो अब

अजीतगढ़ का रहने वाला हूँ, जाति से पारिक ब्राह्मण हूँ। मेरा बुजुर्गों का पुश्तैनी काम था खेती करते, तो मेरे मामा जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, दोनों मामा जी थे, दोनों के नहीं थी, तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। और पिताजी के भी मैं एक ही था, तो मैं मामा जी के साथ रहता था। बचपन में जब 8 साल का मैं था हुआ जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जब स्कूल में दाखिला लिया उस वक्त से ही मैं शुरू से तो जाता ही था बचपन में, तो उनके साथ खेती क्यारी में काम करने के लिए देखने के लिए। लेकिन स्कूल में दाखिला लिया जब से सुबह मैं सब्जी बेचता और शाम को सब्जी तैयार करता, और उस वक्त से बहुत सस्ती रेट थी, तो 50 पैसे 60 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मैं रोज सब्जी बेचता। जब रविवार होता तो मुझे 1 रुपए की सब्जी। तो ऐसे करते करते मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, और मैट्रिक के बाद में मैं ONGC में सर्विस करने के लिए आसाम शिव सागर चला गया। वहां पर मैंने करीब 8 महीने तक सर्विस की, और जब मैंने वहां लगाया तो यहां एक अध्यापक को 89 रुपए सैलरी मिलती थी और मुझे 296 रुपए 15 रुपए मकान किराया 283 के करीब सैलरी। तो मैंने लगाया कि मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ 10 रुपए रोज के नहीं कमा रहा हूँ, जबकि मैं घर में 20 रुपए की सब्जी बेचते था। तो मैं नौकरी छोड़ करके वापस आ गया और आकर के मैंने खेती करना शुरू कर। उसके बाद मैं खेती करता रहा। 2017 में कुएं में पंपिंग सेट लगा लिया और खेती कर रहा हूँ। तो खेती करते करते फिर क्या हुआ कि मेरी इच्छा ये हुई कि मेरे साथ वाले सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, सब अच्छे वो है, लेकिन मेरी शिक्षा अधूरी। तो मैंने हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये सब प्राइवेट पढ़ाई खेती के साथ करता था। अब वो करने के बाद क्या होता है कि जब लास्ट टाइम आया फाइनल में BA का मैं एग्जाम दे रहा था और एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर रह गया, उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, वो रही गया मेरा। उसके बाद मैं सब तरह की सब्जियां तैयार करता था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब भारत सरकार हर खिलाड़ी को हर चीज को विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले को इतना महत्व दे रही है, तो क्यों नहीं मैं भी सब्जियों में विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। तो जैविक तो मैं करता रहा था क्योंकि सन 1964 में रसायन युग आ गया, लेकिन मैंने किसी तरह के रसायन को मेरी जमीन में नहीं घुसने दिया और मैं विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। तो विश्व रिकॉर्ड में मैंने लौकी जो मैं रोज बोता था, हर साल बोता था सीजन में, तीन सीजन में, तुरई, लंबा बैंगन, पहले बैंगन जो थे गोल नहीं लंबे ज्यादा चल रहे थे, लंबे बैंगन, गोल बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चल रहा था। तो मैंने ऑर्गेनिक तरीके से इनका बीज बढ़ाना शुरू किया, समय पर खाद, समय पर पानी, निराई गुड़ाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जो अपन खाद तैयार करते हैं वो हम लोग बाहर डाला करते थे, तो उसका जो नाइट्रोजन है उसमें विशेष जो 16 में 13 महत्वपूर्ण तत्व थे वो तो सूरज की रोशनी से उठ जाते, वो मिट्टी बरोबर रहती। तो फिर मैंने क्या किया, गड्ढे बना करके कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि तरह के कंपोस्ट बनाए और आवश्यकता अनुसार जमीन में डाले। उससे मेरे यहाँ क्या हुआ, पैंचों की संख्या ज्यादा हो गई और आज भी मेरे हर 1 इंच में एक केंचुआ है। तो मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, अगर बरसात हो जाती है तो मैं मेरी फसल में जा नहीं सकता, इतने केंचुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से हो जाते हैं, जमीन में केंचुओं की संख्या भारी हो जाती है तो मैं जा नहीं सकता, ये स्थिति है। फिर उन केंचुओं की मदद से मैंने गोबर में उनको प्रवेश करवा करके गोबर की खाद को फर्टिलाइज करवाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया, वर्मी कंपोस्ट आवश्यकता अनुसार देता रहा। इस तरह क्या हुआ कि शुरू में जब मेरी गोभी का वजन मैं शुरू में लेके आया उस वक्त था केवल 1.25 किलो आधा किलो, धीरे धीरे वो 2 किलो 2.5 किलो होता गया, और जो जो वजन बढ़ता गया मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। और उसके साथ मैंने क्या किया, 1982 में पहला गोभी का फूल 9 किलो का भेज किया, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़, जो बाद में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनको भेज किया और उनको

ट करने के बाद जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाया तो मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सब चीजों को आगे ले गया। आगे ले जाने पर क्या होता है कि 12 किलो का गोभी का फूल मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भेंट किया और सब सब्जियां 7 चीजें थे, 6 फीट लंबी मैंने किया तैयार की लौकी, 7 फीट लंबी तुरई तैयार की, 1 मीटर का 2 इंची लंबा मोटा गोल बैंगन तैयार, बहुत लंबा बैंगन तैयार किया, 3.5 से 5 किलो तक का गोल बैंगन तैयार किया और 12 किलो तक की पत्ता गोभी तैयार की, 86 किलो का कद्दू कोड़ा जो एक आदमी से उठ के चल नहीं सकता है वो तैयार किया, सब ऑर्गेनिक तैयार, क्वालिटी और क्वांटिटी में श्रेष्ठ रखा उनको। इसके बाद क्या होता है मैं सबको साथ लेकर के और आगे इस रिकॉर्ड में पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने सबको इसी जगह पर छोड़ दिया, केवल फूल गोभी के पीछे रहे। जब फूल गोभी का मैंने रिकॉर्ड देखा तो वो था 26 किलो, तो मैं 26 किलो वजन से ऊपर लाने की कोशिश में लग गया और चलते चलते ऐसा समय आया कि मैं 25 किलो 150 ग्राम तक पहुंच गया और वो 25 किलो 150 ग्राम का विश्व रिकॉर्ड में मैंने बनाया जो मैं विश्व में दूसरे नंबर पर चल रहा हूँ। वैसे होना चाहिए मुझे होना चाहिए 1 नंबर पर, लेकिन 2 नंबर पर इसलिए चल रहा हूँ कि मेरी गोभी में और अमेरिका की गोभी में 850 ग्राम वजन मेरा कम है, इसलिए तो मैं हूँ 2 नंबर पर। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेरिका वाले रसायन करते हैं, मैं जीवित कर रहा हूँ, उनके यहाँ संसाधन है मेरे यहाँ संसाधन नहीं, उनके यहाँ पानी की बहुत आयात है मेरे यहाँ पीने के लिए पानी टैंकरों से आता है रिचार्ज करके पानी इकट्ठा करता है। तीसरी बात वहाँ सरकारी सहायता मिलती है, यहाँ सरकार कुछ नहीं देखता है, ये जितना तो है जो है ही, लेकिन फिर भी मैं ये लग रहा हूँ कि अगर मेरा विश्व रिकॉर्ड बनता है तो मैं मात्र मेरी एक इच्छा है, मुझे न किसी से कोई पैसा लेना न कुछ लेना न कोई मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना ये है कि विश्व रिकॉर्ड में मेरे देश का नाम पहले नंबर पर आए, भारत का नाम पहले नंबर पर, इसलिए मैं इस कोशिश में लग रहा हूँ, केवल 850 ग्राम से पिछड़ रहा हूँ और बाकी गोभी की खेती आज भी तैयार। फिर जब मुझे ये इसमें चैन नहीं पड़ा तो मैंने देखा कि हर किसान के साथ बीज वाले धोखाधड़ी कर रहे थे, तो उसको निजात दिलाने के लिए मैंने स्वयं गोभी का बीज तैयार किया और जो भी देश की वैरायटी होती है उसमें तीनों का ग्रास रूट टेक्नोलॉजी से बीज, तीन तरह के बीज, साठ का, श्रावण का और भादो, मतलब जून से लेकर के सितंबर तक का जो गोभी तैयार होती है देशी वैरायटी, सबके जीन इकट्ठे करके एक जीन तैयार किया और वो जीन जो तैयार किया उसमें ये होता है कि आपको बार बार बीज नहीं लेना पड़ेगा, एक बार आप बीज लेकर के जून से सितंबर अक्टूबर तक एक ही बीज को बो सकते हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में श्रेष्ठ गोभी आएगी। ये इसमें मुझे भारत सरकार की ओर से उसको मान्यता मिल गई, 4 कंपनियों के बीजों से टेस्ट करवाए, उनमें श्रेष्ठ बीज अपना निकला और उस बीज के आधार पर मुझे ICAR ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं मेरे बीज को GP49 के नाम से भारत में कहीं भी बेच सकता हूँ, भारत के अलावा अन्य स्टेट मतलब राज्यों देशों में भी मैं उसको बेच सकता हूँ। तो ये मैंने किया और जब मुझे पद्मश्री मिली तो मैं मोदी जी के साथ था, तो मोदी जी ने मुझे एक शब्द ये कहा था कि पहला काम आपका फर्ज है कि दुनिया की थाली में जो जहर है उसको बाहर निकालना है, दूसरा ये है कि जो भी आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को आपको लिखना है। तो लिखने में मेरा इतना अभ्यास तो था नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके एक छोटी सी किताब परंपरागत एवं जैविक खेती के नाम से पुस्तक लिखी और उनका उसका विमोचन करवा करके और किसानों तक पहुंचाई, जिसकी कोई कीमत नहीं रखी और मैं मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए मैंने 2000 कॉपियां ही केवल छपवाई और वो हर किसान को निशुल्क दी, जो जैविक खेती करने वाले थे उनको नहीं दी जो रासायनिक खेती करने वाले थे। मैंने देखा जैविक खेती करने वालों को अगर अपन बढ़ाएंगे इससे वो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैविक खेती नहीं कर रसायनिक खेती करते हैं, फिर भी जैविक खेती की तरफ वो अपना करते हैं।

0: क्या करता हूँ कि जैविक खेती का परीक्षण करता हूँ उनके खेत में जाकर, कैसों की संख्या कितनी है, मिट्टी में खुशबू कैसी आ रही है, ये सब देख करके जब देखता हूँ कि मेरे को संतुष्टि हो जाती है कि ये आदमी वास्तव में जैविक खेती कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको फ्री में बीज देना, पुस्तक देना पढ़ने के लिए, और हर संभव जहाँ भी उसको हो मेडिसिन वगैरह ये दे करके उसका सहायता करना, ये मेरा काम है।
1: जगदीश जी, आपने अपने बचपन से लेकर के अब तक की जो कथा है उसको इतने सार रूप में लेकिन इतने मजेदार तरीके से आपने सुनाया कि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने, थोड़ा और सुने। लेकिन इस कहानी को सुनते हुए मुझे और मेरे ख्याल में ऐसा लगता है मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं सबको एक प्रश्न जरूर आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं पूछ लेता हूं। जब आपके आसपास के साथी जो आपके साथ विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब आपने देखा कि भाई वो नौकरी आदि कर रहे हैं या थोड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे खेत में उतर के दिन दोपहर रात चौगुनी काम करना, मेहनत करना, क्योंकि आमतौर पे व्यक्ति क्या करता है जब पढ़ लिख लेता है तो थोड़ा आराम प्रिय जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई करते हुए खेती में वापस जाने का सोचा, लेकिन कभी आपको ऐसा संकल्प नहीं आया, सोच नहीं चला कि कितना करेंगे, थोड़ा आराम करते हैं, ऐसा कभी आपको संकल्प नहीं आया?
0: देखो वैसे इंसान के जीवन का भरोसा नहीं, वैसे मैं तो क्षणिक मानता हूँ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन क्षण भर बात क्या होगा उसका मालूम नहीं, ये ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, तो मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आराम है वो इंसान के लिए हराम है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो काम करने के लिए भेजा है उसको पूर्ण ईमानदारी से करें और हम उसके काम को उसके लिए करें, ये सोच कर करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, ये सोच करके मैं कर रहा हूँ। और जब तक आदमी पूजा पाठ करता रहेगा वो करता रहेगा, जब तक वो उसकी भगवान नहीं सुनेगा, उसकी भगवान जब सुनेगा जब वो श्रम करेगा, लक्ष्मी होती है वो श्रम से मिलती है, पसीना बहाने से मिलती है, कुएं के पानी से, नल के पानी से, नहाने से नहीं, पसीने से नहाने से वो मिलती है। इसलिए मैंने जो भी कुछ किया है वो हर इंसान के हित को देखते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए ये काम किया, बाकी भगवान पढ़ू कभी न, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा न मैंने कोई गीता रामायण का मुझे कोई ज्ञान है कुछ, मेरे पास केवल श्रम है, श्रम के अलावा।
1: क्या बात है, ये इतना खूबसूरत आपने कह दिया कि श्रम ही वास्तविक आराधना है। दोस्तों सुना आपने, जगदीश जी ने जगदीश को खुश करने का एक ही रास्ता चुना और वो था श्रम, सच्चा निस्वार्थ श्रम, एक ऐसा परिश्रम का माध्यम जिसके द्वारा वो न केवल अपने जीवन लेकिन अपने आसपास के समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुधारना चाहते थे, क्योंकि वो शुरुआत से ही नैसर्गिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती नहीं कर रहे हैं, और श्रम से कभी उन्होंने दिल नहीं चुराया, क्योंकि उनको पता है जहां पर सच्चा निस्वार्थ श्रम है वही उस श्रम का जो समाधान है या जो फल है वो ईश्वर की तरफ से सफलता के रूप में मिलता है। और जैसे जगदीश जी ने कहा कि पूजा पाठ इबादत जो भी हम करते हैं ये तो एक कार्य है एक थोड़े समय के लिए, लेकिन सारे दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, कितने निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, कितने उदारता से, खुले दिल से कर रहे हैं, वो हमको हमारे सफलता के और ईश्वर के नजदीक लेके जाता है। जगदीश जी, जब आपने ये कहा कि जब मैं गांव वापस आया और मैंने देखा कि जमीन मेरे पास है, मैं उस पर खेती कर सकता हूँ, जिस जमाने की आप बात कर रहे हो उस जमाने में रासायनिक खेती बस शुरू ही हुई थी, है ना, उसका कोई इतना बड़ा प्रचार नहीं हुआ था, और आज के जमाने में हर कोई, भले हम मजबूरी से वही भोजन करते हैं जो रासायनिक खेती से आता है, लेकिन सबको पता है कि रासायनिक खेती जहरीली है, उससे आने वाला अन्न भी जहरीला है। आज हमारे पास वो जागरूकता है, आपके जमाने में आपके पास वो जागरूकता कहाँ से है, क्योंकि उस जमाने में ना हमारे पास इतना गूगल था, ना इंटरनेट थी, ना लोग इतना जानते थे कि रासायनिक खेती का क्या क्या अभिप्राय होने वाला है। उस जमाने में आपने कैसे सोच लिया कि ये खेती राइट नहीं है, ये गलत है और मुझे इससे बचा के रखना अपने जमीन को?
0: देखिए सबसे बड़ा क्या होता था कि मेरे पास से

0: हमारी वनस्पति को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, जो ऐसे जीव हैं जो उसके लिए नुकसानदायक है उनसे फसल को बचाते हैं, उनको खाते रहते हैं और हमारी फसल को बचाते हैं। लेकिन वो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, हम सोते हैं लेकिन वो दिन रात केंचुआ हमारे लिए दिन रात काम करता है। लेकिन रासायनिक खेती में हम उनको मारते हैं, जो हमारे लिए करता है हम उनको मारते हैं, तो हम हिंसक हो गए
1: जी।
0: लेकिन वास्तव में जैविक खेती करने वाला किसान वही होगा जो अहिंसक होगा, जो कभी किसी जीव को नहीं मारेगा, केवल जीव को हटाकर अपनी खेती को आगे बढ़ाएगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं किसी जीव को नहीं मारूं, जीवों से हटाऊं। दूसरी बात, मेरे हाथ से एक बच्चे से लेकर के बूढ़े आदमी तक, पशु पक्षी और जानवर, किसी को भी मेरे हाथ से एकमात्र अंश भी जहर का नहीं खिलाया जाए, मैं शुद्ध उसको खिलाऊं, और ये मेरा उद्देश्य है।
1: वाह, सुना दोस्त आपने, जगदीश जी ने जैविक खेती की इतनी सरल और इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा आज हमारे सामने व्यक्त की है कि जैविक कृषि हम उसे कहेंगे जो जीव प्रधान कृषि है, जिस कृषि को करने के लिए जीव, चाहे वो बैल हो या केचुए हो या पक्षी हो या तितलियां हो, इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा, जैविक कृषि या जैविक कृषि करने वाला किसान वही है जो संपूर्ण अहिंसक है, मन में भी जिसके किसी को नुकसान पहुंचाने का जरा भी ख्याल ना आए वो किसान जैविक कृषि कर सकता है। इसका मतलब जो अहिंसक है, जिसके विचारों में शुद्धता है, प्रेम है, सद्भावना है और करुणा है, केवल वही किसान जो है जैविक कृषि में सफल हो सकता है। और वही किसान जो है जैविक कृषि के द्वारा न केवल खुद का लेकिन सबका सात्विक भरण पोषण कर सकता है। इसी दायरे में मेरे को एक और सवाल पूछना था कि आप किसानी कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं, आपके जैसा एक अनुभवी कृषक का अपने आसपास में होना कई लोग जो है सौभाग्य समझते होंगे, फिर कईयों को थोड़ा सा ईर्ष्या भी होता होगा, तो कभी आपने इस प्रकार का कुछ अनुभव किया है जहां पर लोग आपके खेती को खराब करना चाहते हो या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के प्रति आप क्या करते हैं? क्योंकि हमारे भी कई ऐसे किसान साथी सुन रहे होंगे जो कई बार इस प्रकार के परीक्षाओं का सामना करते हैं कि उनकी फसल अच्छी होती है तो कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और आप कह रहे कि मुझे अहिंसक का पुजारी होना है, मुझे अहिंसा का मार्ग पकड़ के रखना है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं?
0: देखिए, होते हैं ऐसे, लेकिन उनसे भी हमें सीखने को मिलता है वो हमारे बारे में किस तरह की आलोचनात्मक बातें करते हैं, तो उनके बातों से हमें सावधान होकर के अगर हम जीवन में कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हम सही मार्ग पर आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का पारस में होना बहुत जरूरी है, वो जो अगर होंगे तो उनसे हमें सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये उनसे नहीं सीखना है कि हमें किसी की चुगली करनी है, किसी को नुकसान, केवल ये करना है कि उनके मुंह से जो निकल रहा है हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं वास्तव में तो उसमें सुधार करें, बस इसी काम में लेते हैं उनको, बाकी उनकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें वही करना है जो हमारी जो अंदर से आत्मा के।
1: तो आपके सामने कभी ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई जहां पर लोग आपका विरोध कर रहे
0: हैं? नहीं आई, मैंने आज तक 100 से करीब रेडियो प्रोग्राम दे चुके, 100 से ज्यादा, सर 1983 से मैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम दे रहा हूँ किसानों के लिए जैविक खेती का, 1990 से आकाशवाणी पर प्रोग्राम दे रहा हूँ, और लोकल जो आकाशवाणी के कई वो बने हुए हैं उनके द्वारा भी मैं देता हूँ, मेलों में केवीके में भी मैं जाता हूँ, और एग्रीकल्चर कॉलेज में बच्चों को लेसन देने के लिए भी जाता हूँ। और मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भटक रहे हैं वो क्या बैक टू पवेलियन वापस अपनी जगह आ जाए, वो उसी जगह जहां हमारे पूर्वज थे, और आकर अच्छा, के इस तरह की खेती करें।
1: जब आपने ये बात कही कि बैक टू पवेलियन, आपने ये भी कहा कि आप कई कॉलेजों में जाते हैं, तो आप बहुत युवा वर्ग के साथ भी रूबरू होते हैं, आप उनके साथ मिलते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं, आपको नहीं लगता कि युवा वर्ग जो है आज बहुत ज्यादा पैसे के पीछे या लाभ के पीछे, नौकरी के पीछे भागता है, उनको ऐसा लगता है जल्दी सफलता जिसमें मिले हम वो कर लें, तो आप कभी ऐसे युवाओं के साथ भी मिल चुके होंगे, तो आपने उनको क्या मार्गदर्शन दी?
0: देखिए, मैं जब 1992

0: मैं कॉलेजों में जाता था तो गिनती के गिने चुने एग्रीकल्चर कॉलेज थे, लेकिन आज उनसे 50 गुना एग्रीकल्चर कॉलेज हो गए। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के बहुत कम थे, आजकल कॉलेजों एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है। मेरे भी दो पोते हैं, एक बीएससी एजी कर ली और एक के सेकेंड ईयर में है। अब जो बच्ची हायर सेकेंडरी में आई है उसको भी मैं अगले सेकेंडरी करके हायर सेकेंडरी में अगले साल उसको भी मैं एजी दिलाऊंगा। लेकिन हर आदमी की इच्छा है कि मेरा बच्चा जाकर के कृषि शिक्षा में जाए और हमारी जो जमीनें हैं उनको अच्छे तरीके से संभाले, अच्छी तरीके से खेती करे, ये सब की इच्छा है। और जो हमारे यहाँ जितने कॉलेजों में बच्चे हैं सब किसानों के बच्चे हैं, उनमें अध्यापक हैं वो भी ज्यादा किसानों में किसान परिवार से हैं, तो हम उनको समझाते हैं करते हैं और वो बहुत लग रहे हैं। मैं पिछले सालों से ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे को हर साल में कम से कम 10 पेड़ लगाने हैं। तो मैंने बहुत शौक याद देखा, बहुतों ने पेड़ अपने पेड़ लगाए हुए दिखाए मुझे जो 4-5 साल में बहुत बढ़िया पेड़ हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सब मिलकर उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, ऐसा उनको मंत्र देते हैं कि उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़े और इच्छा शक्ति बढ़ने से वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, काम करने वाले आदमी को निराशा कभी नहीं मिलती।
1: मतलब मैं तो आप दिल कर रहे हैं कि बस आपको सुनता ही रहो मैं कुछ पूछू ही नहीं ऐसा मन करता है, क्योंकि आपने इतने सरल भाषा में इतनी पावरफुल एक बात कह दी कि काम करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा होती ही नहीं है। वाह साथी, सुना आपने, मतलब आज का हमारा ये एपिसोड मुझे ऐसा लगता है जैसे सरल लेकिन सफल जीवन का एक बहुत सुंदर निचोड़ है, जहां पर एक सफल सिद्ध व्यक्ति सरल भाषा में हमें बता रहा है कि जीवन में सफलता कैसे पानी होती है। चाहे आप कृषि करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या घर संभाल रहे हैं, हर परिस्थिति में सफलता पाने के लिए परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। दूसरी जो बात कही जगदीश जी ने वो बहुत अच्छी बात कही कि जहां दृढ़ता है वहां पर सफलता होती ही है। जैसे उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से जो युवा साथियों से वो मिलते हैं, वो युवा साथी पेड़ भी लगाते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं और जमीन का ख्याल रखने के लिए भी उनके दिल में इच्छा जगती है। जब आपने पेड़ लगाने की बात कही जगदीश जी, मैं समझता हूँ आपने खुद भी बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे, कभी आपने काउंट किया है, गिना है कितने पौधे लगाए हैं आपने?
0: मैंने कई हजार पेड़ तो ऐसे लगा दिए फलदार पेड़, जैविक पद्धति से, जैविक खाद से, उस पर किसी तरह का रासायनिक प्रयोग नहीं किया। देखो बीमारियां सबके होती है, इंसान के भी होती है, बीमारियां फलों में भी होती है, फलदार पेड़ों में भी होती है। लेकिन एक कहावत है ना अपने यहाँ कि उगता सूरज की किरणा दोनों बक्ता की मस्त हवा और चोखो दूध दही में खावा फिर कुल्ले व्यर्थ दवा। जब ये चीजें मैं खाने को मिलती हूँ तो दवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पेड़ को दोनों टाइम शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाद मिले तो उसकी बीमारी नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो वो ही परंपरागत चीजें हैं, जैसे आक है, नीम है, चूना है, ऐसी चीजें जो हमारे प्रकृति में थी, हमारे बुजुर्ग जिनका प्रयोग करके उनको सही करते थे वही करते हैं। कहावत नहीं है कि जिस देश में आग और नीम है तो चंदन क्या करेगा और बुद्धि दिल्ली का मुकाबला लंदन क्या करेगा। परंपरागत
1: ये तो बहुत जबरदस्त कहा आपने, बहुत ही जबरदस्त कहा कि भाई जिस देश में आग और नीम है वहाँ चंदन क्या करेगा, और फिर लंदन की भी बात कह दी आपने, कमाल। लेकिन जगदीश जी मेरे को
0: आपसे मुकाबला लंदन कर ही नहीं सकता,
1: जो कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे को एक और उत्सुकता हो रही है, वो ये कि जब आप भारत का ऐसा भ्रमण करते हैं, चारों दिशाओं में आप जाते हैं, हर जगह से आपको निमंत्रण मिलता है, हर जगह के किसानों से आप मिलते हैं, हर जगह के विद्यार्थियों से भी आप मिलते हैं, तो भारत का ऐसे आप पूरा कोना कोना जा चुके होंगे। मुझे आपसे एक चीज जानना है कि विविधताओं भरे इस देश में जब आप भ्रमण करते हैं, कौन सी एक बात है जो आपको ऐसा लगता है कि सब जगह एक ही है, कौन सी एक चीज आपको ऐसी लगती है जो चारों तरफ सेम लगती है, आपको सिमिलर लगती है, एक जैसी लगती है?
0: मेरे को सेम ये लगती है कि सब किसान जितने भी हैं वो

0: वो देखा देखी करते हैं, भेंट चाल करते हैं, बस यही एक मेरे को हुआ ही। अगर एक किसान ने कर दिया, आगे पांच करेंगे, फिर पचास आएंगे, उसमें नुकसान फायदा नहीं देखेंगे, वो सब भेंट चाल करेंगे। बस यही देखा मैंने सब जगह, मैं केरल में गया, मद्रास में यहाँ गया, महाराष्ट्र में गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सब जगह गया। वो किसान में वही एक आदत है भेंट चाल। तो उस भेंट चाल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो चार किसानों का एक ग्रुप बना करके और उनको लगाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे सबको अपने आप आ जाते हैं। ये एक तरीका निकाल रखा है, हमें यही हुआ है भेंट चाल के अलावा किसान के पास सब जगह विविधता में एकता, यही समझता हूँ।
1: ये तो बहुत जबरदस्त आपने हंसी मजाक में कह दिया कि विविधता में एकता इस बात की कि लोग देखा देखी बड़ा करते हैं और देख देख करके दूसरे का देख करके वैसा अनुसरण करने में बड़े होशियार हैं, लेकिन कई बार ऐसे अनुसरण करते हुए गलत का भी अनुसरण कर लेते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में आप उनको कैसे बचाते हैं?
0: गलत करते हैं, ये करते हैं, जब हमारे देश का बासमती चावल जो बाहर जाकर बिकता था उसके अच्छे दाम मिलते थे और जो बाहर से पैसा आता वो खूब हमारे देश में आता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि हमारे किसानों ने हर बीघा में एक कट्टा यूरिया का डालना शुरू कर दिया, रिकमेंड होती है 7-8 किलो की और वो डाल रहे हैं 40 किलो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मृदा होगी वो सख्त होगी और उनका जो उत्पादन होगा उसमें एक तरह का पूरा ढेर होगा, और जब वो चावल बाहर जाएगा परीक्षण होगा तो लोगों ने वो बासमती चावल का रेट कम कर दिया। तो मुझे और मेरे एक साथी को और बासमती में चावल में जो जहर डाला जाता है उसको कम करने के लिए मुझे भेजा और मैं गया यहाँ चंडीगढ़ की तरफ और 2 महीने तक लगातार रहा, उनको खूब समझाया। लेकिन आज मैं हम लोग समझाते हैं, रात को मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन सुबह जब जाके देखते हैं तो वो गाड़ियों में 2 पट्टे डाल करके खेत में जाते हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम 2 महीने तक उनके पीछे ही पड़ गए तो वहाँ बहुत से किसान ऐसे निकल के आए जो आज कम से कम 50% किसान ऐसे हैं जो यूरिया का, DAP का, रासायनिक का, कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं करते और उनका वो चावल है क्वालिटी में, क्वांटिटी में तो क्या होगा ही, क्वालिटी में सबसे बेहतर है। इसलिए समझाया जाता है,
1: इसमें जिस समझ की कमी है मुझे ऐसा लगता है, शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि इसमें जिस चीज की कमी है वो ये कि हम जमीन को केवल जमीन समझते हैं या हम खेती को केवल एक कार्य समझते हैं। जिस दिन हम जमीन को केवल जमीन नहीं लेकिन धरती माँ माँ के रूप में जब हम देखेंगे तो उसके प्रति जो भी हम अन्यायपूर्वक कर्म कर रहे हैं उसको करने से हम बचेंगे। आपको ये बात सही लगती है?
0: देखिए ये है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम लोग मानते हैं, गंगा, जमीन, गाय, स्वयं की माँ, ये तो सब चारों पांचों माँ है ये, और उनको माँ के रूप में देखा जाता है। और जब जमीन को हम माँ समझते हैं, धरती माता समझते हैं और माँ समझ करके उसके पास जाते हैं, हम जैसी उसकी सेवा करेंगे, माँ की तरह जैसी सेवा करेंगे वैसा ही वो हमसे ज्यादा वो करेगी। तो हम माँ समझ करके उसकी सेवा करेंगे तो वो हमें अच्छा ही, लेकिन हम उसमें जय डालेंगे और उसकी अच्छी सेवा नहीं करेंगे, खरपतवार हो रही है, खाद समय पर नहीं डाला जाता है, पानी नहीं डाला जाता है, तो उत्पादन देना वो बंद कर सकते। तो उसको हम माँ समझते हैं, हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में गाय को भी माँ समझते हैं, माँ समझ करके ही उसके गोमूत्र को, गोबर को, उनको हमारी जमीन में डालते हैं, जब तक हमें गाय का गोबर मिलता है, जब तक भैंस का गोबर खाद मिले।
1: साथियों आप सुन रहे हैं 107.8 रेडियो मधुबन और कार्यक्रम चल रहा है यशस्वी भारत, और यशस्वी भारत के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं श्री जगदीश प्रसाद पारिक जी, जो राजस्थान के शिखर जिले से हैं और भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी हैं। आप एक सम्माननीय देश के जैविक किसान हैं जिन्होंने जैविक कृषि के द्वारा पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है, जहां पर जहरीले भोजन को उगाने में लोगों को वो समझाते हैं कि कितना ये नुकसानकारी है, न केवल खुद के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी। जगदीश जी आपसे बात करते हुए मुझे एक और सवाल

0: मन में आया है वो ये कि जैसे आपने बताया कि भाई आप फूलगोभी में दूसरे नंबर पे हैं और आप अभी भी लगे हुए हैं कि वो 850 का जो फर्क है उसको आप निकालें, ऐसे आपके मन में और किन किन चीजों का ख्याल आता है कि और कौन सी चीजें नहीं करनी है आपको?
1: नहीं करनी है,
0: नहीं
1: नया करना
0: नहीं, है नवीनता, नया नया नया।
1: देखो हर जो चीज की इच्छुकता होती है उस इच्छुकता से आगे बढ़ता है आदमी। हमारे पड़ोस में एक महिला थी और उस महिला को ऑपरेशन करवाना था लेकिन उसके यहाँ ब्लड की कमी थी, तो वो मेरे पास आई क्योंकि मेरा जो ब्लड था वो ओ नेगेटिव था और उस ओ नेगेटिव ग्रुप की उसको आवश्यकता थी। तो वो मेरे पास आई, बोले मेरे को खून चाहिए। और मैंने कहा ठीक है, मेरा ओ नेगेटिव है, दो बच्चे और हैं उनका ओ नेगेटिव है, आपको मिल जाएगा। जब 10 दिन बाद में तक वो नहीं आई, उसको फिर घूमते फिरते देखा मैंने, तो मैंने कहा आपको ऑपरेशन के लिए जा रही थी, आपको खून की आवश्यकता हुई थी, क्या हुआ? बोले मैंने चुकंदर और उसका जूस निकाल करके पिया, मेरे ब्लड की रिकवरी हो गई आदमी। तब से मैंने चुकंदर बोना शुरू कर दिया और आज करीब 2 लाख रुपए साल की चुकंदर बेच रहा हूँ। और तो बेच तो रहा हूँ लेकिन वो आदमी जो खरीद करके नहीं खा सकता, बीमार है और गरीब है, उसको फ्री में देता क्योंकि मैं खून तो नहीं दे सकता लेकिन खून के बदले में उनको फ्री वो देता। मैं पैसे उनसे लेता हूँ जो पैसा देने काबिल होते हैं, अगर वो पैसा देने के काबिल नहीं है तो उनसे पैसा दे। तो ये क्या होता है कि आदमी आवश्यकता जैसे जैसे होती है वो आगे नया नया सीखने की कोशिश करता है। फूलगोभी के साथ मैंने कई तरह की सब्जियां बोई, कई तरह के वो लगाए, कई तरह के ऑर्गेनिक बगीचे लगाए जो फल फूल रहे हैं और उनको लगा। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके मंदिर की जमीन पड़ी हुई है और उनमें कोई नहीं, सिर्फ बाबा जी हैं, तो उनको फलदार पौधों का बगीचा लगा दिया, उनसे उनके 4-5 लाख रुपए साल की मंदिर में आय होती है। तो वहाँ आने वाले साधु सब भोजन करते हैं, मंदिर में गायें होती हैं, वो उनके लिए चारे की व्यवस्था होती है, बंटे की व्यवस्था होती है, उनकी व्यवस्था हो रही है। ऐसे क्या है कि ये जो धर्मार्थ काम है वो भी मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है और उनसे मुंह मोड़ना भी एक तरह का भगवान से मुंह मोड़ना।
0: तो जैसे जगदीश जी ने कहा कि धर्मार्थ के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो जरूर करने चाहिए क्योंकि उनसे मुंह मोड़ना मतलब अपनी खुशियों से मुंह मोड़ने जैसा है। धर्मार्थ के कार्य से मुंह मोड़ना मतलब परमात्मा से मुंह मोड़ने जैसा है। इतने सुंदर विचारों के साथ जगदीश जी आज हमारे साथ है। जगदीश जी, भारत की खासियत क्या है, आपको क्या लगता है भारत को भारत कौन सी बात बनाती है?
1: मेरे को तो सर जितनी जो भी खासियत है केवल भारत में दिख रही है और कहीं दिख नहीं रहा, और कोई देश में कुछ नहीं दिख रहा है। न वो माँ को माँ समझते हैं, न बहन को बहन समझते हैं, न उनमें कुछ नहीं है, न उनको किसी तरह की मर्यादा है, केवल स्वार्थ और पैसा है सब कुछ। यहाँ मान सम्मान धर्म ईमान सब कुछ मेरे को तो भारत में दिखता है, भारत के बाहर कुछ नहीं दिखता है। और मैं ये सोचता हूँ अगर पुनर्जन्म भी मेरा हो तो भारत में ही हो। मैं तो ये चाहता हूँ के अलावा कुछ नहीं देखा, जो कुछ चीजें हैं भारत में इसके बाहर नहीं है कुछ भी।
0: भारत माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उसका एक ऐसा रतन पुत्र बार बार उसकी सरजमी पे जन्म लेना चाहता है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको भारत के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, यही कारण है कि भारत देश के लिए आप यशस्वी हैं और भारत को यशस्वी बनाने में आपका योगदान इस वजह से भी अभूतपूर्व है। जगदीश जी, जाते जाते मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब आपको एक शब्द में देना है ना, बहुत जल्दी जवाब देना है और एक एक शब्द में जवाब देना है। आप तैयार हैं?
1: जी तैयार हूँ, जवाब मैं बोलूंगा नहीं तो साइलेंट हूँ।
0: मुझे नहीं लगता कि आप हारेंगे, आप जरूर जीतेंगे क्योंकि आपकी खासियत है हंसते हंसते
1: लेने का। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहला सवाल आपसे, श्रम क्या है?
1: जो आत्मा से किसी काम को किया जाता है, दूसरे का इंतजार नहीं किया जाता है और जितना हम कर सकते उससे भी ज्यादा वो करें और निस्वार्थ करें, सता श्रम वो ही मान सकते, निस्वार्थ हो।
0: बहुत सुंदर। निस्वार्थ क्या है?
1: निस्वार्थ है ये कि जिससे मुझे देना ही है, मुझे भलाई करनी है, बदले में मुझे कुछ नहीं देना, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम किसी को दान
0: दे, हिसाब किताब नहीं लगाए, क्योंकि लोग आजकल कुछ अच्छा भी
1: करते तो हिसाब नहीं लगाना है, केवल अपने केवल करना है।
0: जी जी, कई लोग किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं तो भी सोचते अभी तक देखा नहीं, रिप्लाई नहीं किया, तो ये जो आशाएं बांध के रखते हैं उन आशाओं से फ्री होने।
1: ये लोग जो बोलते हैं ना, वो लोग होते हैं जो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड मोर अर्निंग, वो लोग होते हैं वो जो आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग वाले लोग, नमस्ते वाले हैं तो नमस्ते वाले, जय राम जी की करने वाले।
0: सुना दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं कहते ऐसे लोग, वो कहते हैं गुड मोर अर्निंग, मतलब थोड़ा और अच्छा कमाई हो जाए, तो इसीलिए नमस्ते मतलब
1: कमाई से।
0: जी जी बिल्कुल। आप जगदीश जी, जो चीज मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है, जैसे पत्ता गोभी का एक परत होता है ना, एक पत्ता खुलता जाता है, ऐसे आप भी बड़े हसमुख और हसमिजाज व्यक्ति हैं, ये चीज जरूर खुल के समझ में आ रहा है। तो तीसरा सवाल आपसे, प्यार क्या है?
1: दो आत्माओं का जो दिखावा नहीं हो, दो आत्माओं का जो मिलन होता है, वो असली प्यार होता है। निस्वार्थ,
0: निस्वार्थ बिल्कुल। शांति क्या है?
1: शांति वहाँ होती है जहाँ आदमी डट करके रुक करके ये फैसला कर ले, मुझे जो मिल गया वही ठीक है, वही शांति, मुझे जो मिल रहा है उसी में खुश, संतुष्टि यही है कि मेरी आत्मा हो गई, मुझे जो मिल गया है उसमें मैं पर्याप्त है, मुझे और आगे कुछ नहीं चाहिए।
0: प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति वो है जो कई तरह की चीजें हमें दे रही है और हमारे लिए एक ऐसा वो क्या कहते हैं वो बना हुआ है, जिसमें हमें हर तरह की जो जीवनोपयोगी चीजें हैं वो उससे मिलती है, जैसे प्राणवायु उससे मिलती है, खाने के लिए भोजन प्रकृति से मिलता है, पीने के लिए पानी प्रकृति से मिलता है, आग प्रकृति से मिलती है, हर चीज जो हमें मुहैया करवाई जाए वही प्रकृति, मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा ही।
0: अजीतगढ़ में खासियत क्या है आपके हिसाब से?
1: अजीतगढ़ एक मिनी हिंदुस्तान है, जो आप हिंदुस्तान कहते हैं, उत्तर में हिमालय है, हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय की जगह पहाड़ है, उस हिमालय में मानसरोवर है, तो उसमें हमारे यहाँ एक बांध बना हुआ है बहुत अच्छा जिसमें पानी है, और एक शिव मंदिर बना हुआ है। दक्षिण में जो लंका है उसकी जगह एक टापू बना हुआ छोटी ढाणी है, उसको कहते हैं गंगा सागर। बाकी ये आगे आसाम वाला हिस्सा है, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा वाला, ये तो ऐसे गांव लंबा साइड में बसा हुआ है। दूसरी पाकिस्तान जिस पश्चिम साइड में है, तो हमारे गांव के पश्चिम साइड में मोमडंस है, और बांग्लादेश जो जहां स्थित है वहां मिजोरम मणिपुर उनके बीच में करता साइड में, फिर वहां हताशगढ़ मुसलमानों के, और ये उसी तरह लंबाई से जाता है, और जहां हिंद महासागर प्रशांत महासागर वगैरह जो सागर है वहां हमारे यहाँ पानी के स्रोत है, जहां इकट्ठा होकर के हमारे गांव वालों को क्षेत्रीय वाटर रिचार्ज करने के लिए वहां पानी मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए अजीतगढ़ हिंदुस्तान है।
0: क्या बात है। और दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपको पूरा भारत घूमने का मौका नहीं मिलता तो जरूर कभी समय निकाल के अजीतगढ़ आपका भारत दर्शन हो
1: जाएगा।
0: बिल्कुल, अजीतगढ़ जरूर जाइएगा, और मैं समझता हूँ अजीतगढ़ जाएंगे तो कोई भी गांव का बच्चा बच्चा जो है आपको जगदीश जी के घर तक तो जरूर पहुंचा देगा, और क्या पता आपको जगदीश जी के हाथों से उगाई हुई फूल गोभी या टमाटर या बैगन का स्वाद चखने को मिल जाए। जगदीश जी, आपसे एक और सवाल, भारत क्या है?
1: जी, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के रहने वाले लोग हैं, और सब लोग सभी के धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, और एक दूसरे से भाईचारा की भावना से रहते हैं। यहाँ पर प्रकृति से बहने वाली नदियों को माँ के रूप में मानते हैं। यहाँ प्रसरण कर घूमने वाले जो पशु हैं, गाय जैसे, उनको माँ के रूप में मानते हैं, और सब आपस में एक दूसरे से भाईचारा रखता है। बस यही है, सब में भाईचारा।

0: आपके विचार बहुत सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली, सुनते हुए भी अंदर में शक्ति भरती है। आखिरी सवाल, जगदीश प्रसाद पारिक कौन है?
1: जगदीश शक्ति अलग है, मैं तो मात्र उसका केवल प्रसाद हूँ। जो आपके सामने मैं बैठा हूँ केवल जगदीश का प्रसाद हूँ, जगदीश तो ऊपर है। जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, शक्ति दे रहा है, बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है वो है, मैं तो उसके मात्र प्रसाद के रूप में हूँ।
0: क्या बात है, सुना दोस्तों आपने, सब कुछ करने वाला व्यक्ति जब इतना नम्र हो तो क्यों नहीं खुदा उस पे मेहरबान होगा। जगदीश जी ने अपने को जगदीश का प्रसाद समझा और इसलिए आज वो हर एक के प्लेट पर, हर एक की थाली पे प्रसाद पहुंचा रहे हैं, प्रकृति का भी। वो अपने प्रयास से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जिसपे, जिसके पास भी उनके द्वारा उगाया हुआ भोजन पहुंचे, वो स्वस्थ हो, वो निरोगी हो, उसकी कायाकल्प तरु हो जाए। जगदीश जी से आज हम बात कर रहे थे, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जैविक कृषि करने वाले अहिंसक किसान है। जगदीश जी ने आज हमारे बीच में कई ऐसी बातें कही जिनको सुनते हुए ऐसा लगा शायद जीवन का सार जो है इतना कठिन नहीं है, बड़ा सरल है और बड़ा ही आसान है, सिर्फ उसे याद करना और उसे जीवन में ढालने की जरूरत है। जाते जाते हम जगदीश जी से सुनना चाहेंगे कि जगदीश जी, आप अगर हमारे श्रोता साथियों को कोई एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो युवा है या घर पे सुन रही माताएं बहने हैं, अगर कोई भी एक संदेश आपको देने का मन करता हो तो क्या संदेश होगा?
1: मैं जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर करवद मेरा निवेदन है कि जितना हो सके हमें पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, नर सेवा करें। नर सेवा के अलावा पशु सेवा करें, जीव सेवा करें, क्योंकि जो नर सेवा है वो ही वास्तव में नारायण सेवा है। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे किसी भी है, पैसे की भी सहायता करें, अन्न की भी सहायता करें, हर तरह से जितनी हो सके जितनी सहायता करें, क्योंकि हम जब जाएंगे तो ये जो हमारे पास है वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लेकिन हम जब हम सहायता करते हैं तो हम भी कोई सहायता करने वाला देंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा। दूसरी बात, जो आज नदा में जहर घुल रहा है उसको आप लोग सब मिलकर के बाहर निकालें, ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किसी प्रकार की बीमारी युक्त नहीं हो। आज हर 8 साल 7 साल के बच्चे के चश्मा चल रहा है, हर आदमी के 50-40 साल की उम्र में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, 10-5% लोगों के तपेदिक तो खैर नहीं है लेकिन कैंसर जैसी महामारी बीमारी से ग्रसित है। तो उन सब की हमें सेवा भी करनी चाहिए, हो सकता है आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए और दूसरों उनको उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। बाकी आगे नहीं हो इसके लिए हमें थाली से जहर को निकालना है। जो गेहूं का हम प्रयोग कर रहे हैं ज्यादातर हमारे जीवन में सुबह और शाम रोज, उसको छोड़ करके मोटे अनाज का प्रयोग करें, मोटे अनाज को खाएं, ताकि आने वाली बीमारियों से हमें निजात।
0: जगदीश जी, आपने जाते जाते सबके लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं भरी बातें की, आपने जो ये संदेश दिया कि सुबह शाम जो हमारे थाली पे केवल गेहूं है या एक ही प्रकार का अन्न है, उसको बदल के श्री अन्न या मोटा अन्न जो मिलेट्स कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि सेहत बनी रहे। साथ ही आपने ये भी बताया कि हमें हर प्रकार से ये कोशिश करनी चाहिए कि जहरीला अन्न ना हम तक पहुंचे ना किसी और तक पहुंचे। इसके लिए जैविक पद्धति से उगाए गए भोजन को अगर हम अपनाते हैं तो जैविक कृषि करने वाले किसान को भी बहुत सहायता मिलती है। और जैसा कि आपने पहली अपील की हम सबसे कि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की सहायता, इसमें ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपने ये संकल्प जरूर लिया होगा कि अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनकी सहायता जरूर करें और जितना हो सके कोशिश करें जैविक अन्न को अपनाने की। इससे एक जैविक कृषि कर रहे किसान को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। 107.8 रेडियो मधुबन के आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं और आप जुड़े हुए थे जगदीश प्रसाद पारिक जी से, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से है, लेकिन ये अजीतगढ़ अपने आप में पूरा हिंदुस्तान

क्यों? क्योंकि इस छोटे से अजीतगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति बसता है जिस व्यक्ति ने पूरे भारत देश का नाम रोशन करने के लिए अपने पूरे जीवन को श्रम और परिश्रम के द्वारा न्योछावर किया हुआ है। जगदीश जी से आज हमने बहुत कुछ सीखा। आने वाले एपिसोड में हम आपके बीच में एक और एक ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को यशस्वी बनाया है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा, और जी हाँ, जैसा जगदीश जी ने कहा, परिश्रम से कभी दिल नहीं चुराइएगा, श्रम से ही साधना है।

जय माता जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो फुलेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे संजय। स्वागत है हमारे विशेष आध्यात्मिक सफर दिव्यता का आह्वान में। जय माता जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात वर्षों बाद भी याद आते ही मन भारी हो जाता है? किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी रिश्ते की कड़वाहट या अपनों ने ही की हुई कोई गलती। समय तो आगे बढ़ जाता है लेकिन हम उन घटनाओं को भी अपने भीतर ढोने रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस मानसिक बोझ की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी खुशियों को धीरे धीरे कम करता रहता है, और साथ ही जानेंगे कि माँ दुर्गा हमें कैसे सिखाती है कि भीतर की शक्तियों को जगाकर हम इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। तो सुनते हैं माँ चंद्रघंटा देवी की आरती।

जय माता जी। दोस्तों कल्पना कीजिए कि अपने कंधे पर एक भारी बैग रखा हो। पहले दिन आपको उसका वजन महसूस होगा, लेकिन यदि आप उसे महीनों तक उठाए रखे तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। यही हमारी मानसिक स्थिति है। हम पुराने दुख, शिकायतें, पछतावे और असफलता अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। कई बार कोई घटना वर्षों पहले हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे आज भी दोहराता रहता है। हर बार याद करके हम खुद को वही दर्द फिर से दे देते हैं। सवाल यह है कि क्या अतीत को बदला जा सकता है? नहीं, लेकिन अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदला जा सकता है। जब हम किसी घटनाओं को केवल अपनी नजरों से देखते हैं, तो दुख पैदा होता है, लेकिन जब हम सामने वाले की परिस्थिति, उसकी सीमाओं और उसकी सोच को समझने का प्रयास करते हैं, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। शायद जिसने हमें यह दुख दिया वह भी अपनी पीड़ा में था।

जय माता जी। दोस्तों आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का महत्व और तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा देवी के बारे में आध्यात्मिक कथा सुनते हैं। रेडियो सुनहरी आवाज पर माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा कहलाता है। विवाह के बाद उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ जो घंटा के आकार का दिखाई देता था, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। एक समय असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को अत्यंत परेशान कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुँची। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश देखकर दैत्य भयभीत हो उठे। माँ ने अपने विभिन्न असुरों से दुष्ट असुरों का संहार किया और देवताओं को भय से मुक्ति दिलाई। माँ का यह रूप अत्यंत वीर और शक्तिशाली माना जाता है। उनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। वे अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान करती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों सुनते हैं माँ चंद्रघंटा देवी की चालीसा।

जय माता जी। दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे अधिकांश दुखों का कारण घटना ही नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती है। हम चाहते हैं कि परिवार के लोग हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करें, दोस्त हमें समझे, सहकर्मी हमारे अपेक्षाओं पर खरे उतरे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में निराशा आ जाती है। धीरे धीरे ये निराशा शिकायत बन जाती है और शिकायत भीतर की शांति छीन लेती है। चलिए एक छोटा सा सवाल खुद से पूछते हैं, क्या हम हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं या फिर हम उसे अपनी कल्पना के अनुसार देखना चाहते हैं? जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें स्वीकारना शुरू करते हैं, तब भीतर आजादी का अनुभव होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत बातों का समर्थन करें, इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपनी मानसिक शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न रखें। सच्ची शांति तब में आती है जब हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर रहना सीखते हैं। यह तो जीवन की कला है दोस्तों, स्वीकार करना, समझना और आगे बढ़ना। एक और मधुर गीत का समय हो गया है, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जय माता जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूँ। आज रात सोने से पहले मात्र 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न है, कौन सी ऐसी पुरानी घटना है जिसे मैं अब तक पकड़े हुए हूँ? दूसरा, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में शिकायत है? और तीसरा, क्या मैं स्वयं को किसी गलती के लिए अपनी अभी भी दोषी मान रहा हूँ? अब गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं इस घटना को मुक्त करता हूँ, मैं इस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे तो एक दिन मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा, और जब मन हल्का होगा तभी भीतर की दिव्यता का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, आज हमने सीखा कि जीवन को हल्का बनाने का रास्ता अतीत को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि उसे सम्मान पूर्वक विदा करने में है। अपेक्षाएं कम होगी तो शांति बढ़ेगी, शिकायतें कम होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और जब हम स्वयं को तथा दूसरों को क्षमा करना चाहेंगे तब भीतर की दिव्यता स्वतः प्रकट होने लगेगी। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे संजय। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान के एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराइए, स्वयं से प्रेम कीजिए और अपने मन को हल्का रखिए। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण। बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी, कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी के रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: इतने भारी नहीं कन्हैया।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हैया।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

आप सुन रहे हो रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो। और मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम हर दिन एक नई देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा उस आंतरिक ध्वनि का जो मन की चंचलता को शांत कर देती है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और उसे परमात्मा से जोड़ते हैं तो हमारे भीतर से एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए वे चंद्रघंटा कहलाती है। ये चंद्रमा उनकी खूबसूरती और शांति का प्रतीक है। उनका ये स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों को शांत और स्थिर मन से कैसे सहन किया जाए। वे हमें सिखाती है कि क्रोध और अशांति के बजाय हम अपनी सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाएं, दूसरों की गलतियों और कमियों को माफ करने की शक्ति ही सच्ची शक्ति है। लेकिन उनकी शांति को उनकी शक्ति से कम मत आंकिएगा। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार एक योद्धा की तरह है, जो बुराई का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उनकी घंटी की ध्वनि इतनी भयानक है कि इसे सुनकर ही राक्षस और बुरी शक्तियां कांप उठती है। माँ चंद्रघंटा का तेजस्वी रूप हमें ये याद दिलाता है कि हमारे भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, घमंड और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए हमें एक योद्धा की तरह दृढ़ संकल्प लेना होगा। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करके अपनी आंतरिक शक्तियों, खासकर सहिष्णुता और मानसिक शांति को बढ़ाने का संकल्प करते हैं। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और साहस का संतुलन बहुत जरूरी है। हम शांत और सौम्य हो सकते हैं, लेकिन जब बुराई सामने आए तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर उसका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें निडरता, साहस और शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति में विनम्रता आती है और वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखता है। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर देवी चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में नैवेद्य यानी भोग का भी विशेष महत्व है। उन्हें दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर और शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन चीजों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज के दिन आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को दूध या उससे बनी किसी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के सबसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में, जिसका जाप करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। इसे सच्चे मन से जपने से भक्तों को साहस, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। कल हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कहानी और उनकी महिमा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय माता दी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बींग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे बैठाना नहीं।
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स

0: अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले differently.
1: But I can then take the play into a different direction.
0: Absolutely. And that is why we said you create your destiny. When we're saying aap apna bhagya, apni destiny khud create karte hain, that means you can take the play
1: into a different direction, into a different, oh completely.
0: Completely different. Based on हर My सीन own. में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा है तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस. माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
1: इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
0: इन द प्रेजेंट. यस, इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट प्रेजेंट में कैसे जीते, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I am not needed there. Because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया रोल एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले. फिर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने.
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे. हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारी सेंसेस जो हैं वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन वी इनोवेट.
0: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो द क्वेश्चन इज कि हरेक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, लेकिन हाउ टू डू इट? क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस, डिसीशन, एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहां और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस, हाउ टू चूज द रोल, जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन.
1: It will be exciting.
0: Yeah, it's going to be a lot.
1: जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं, because there's nothing else to do. There's nothing.
0: अगर आपको monotonous काम करना हो, तो उसके end of the day कैसे feel होगा?
1: Very tired. Yeah.
0: लेकिन अगर creative काम करना हो, you enjoy. आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन, and yet you'll say more.
1: आपकी ऊर्जा बची रहती है.
0: क्योंकि creativity is the nature of the soul. हर आत्मा का जो हमने देखा था purpose of life है, is to express and experience.

0: लेकिन वो कब होगा, व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है। तो अपने रोल्स को देखें, आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल, टुमारो पूरा दिन बिताएं आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल। प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले। अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड ओनली इन दैट वेरी फिक्स्ड रिजिड वे। एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी, बिकॉज स्टैग्नेंट हो जाएंगे हम, वही चीज यू नो सेम चीज रोज प्ले कर रहे हैं। तो आप लाइफ को जो इंजॉय करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, इंजॉयमेंट वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है। सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापिस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर। फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए, चलो हॉलीडे पे जाके।
1: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली अगर हम देखें।
0: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता, सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज। लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग है, हर रोज कुछ नया करना है। हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं, सी हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं, कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो। अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती, आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे, फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना, आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं। डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ,
1: मैं नहीं हो जाऊँ।
0: Creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही situation, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
1: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस।
0: व्हाटएवर यू कैन
1: और अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड,
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ
1: हैप्पीनेस,
0: सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है, वन इज एट वर्क, वन इज एट होम। ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं। दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है, और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं वो मजा खत्म हो जाता है, दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर। जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है, तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया। अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
1: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में।
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूं। तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
1: आई हैव टू क्रिएट दैट इमेज, यू नो आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस,
0: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस। सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूं, आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई, आई एम द बॉस। नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस ये मेरी पोजिशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है। रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजिशन बॉस की है, कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं, कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस

0: उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
1: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूँ, मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. यू नो मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो.
0: सो दैट इज द फियर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा हो जाए?
1: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
0: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
1: इनफैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं,
0: पेरेंट एक टीचर हो सकते
1: हैं. लॉट यू नो कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
0: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. वाई इज दैट नॉट माई रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है, तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के, दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
1: ऐसे ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है?
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजीशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग. आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो वॉट समवेयर, पेरेंट घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फोन पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी. इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहां अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसी भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर सिचुएशन में आई विल चूज हाउ टू प्ले द रोल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्राई, पोजिशन कॉन्शियसनेस नहीं, एक्टर कॉन्शियसनेस, कि मैं एक्टर

0: अवेकनिंग विद बेमा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
1: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भेड़ू पुनेरी आवाज 107.9 FM पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के 9 दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: 叫那桌子大的好高好
1: 高。आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफर जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि तनाव जो है, टेंशन है, वो बहुत नेचुरल है, एंगर बहुत नेचुरल है, एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है। लेकिन हमने ये जाना कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, असहज है और किसी तरह से भी कुछ भी करके हमें इसे नहीं अपनी जिंदगी में शामिल करना है। एक और मुद्दा जिस पर हम सोचते थे, जिसे मानते थे कि भाई हैप्पीनेस जो है वो कहीं हमें बाहर से मिलेगी, ये रियलाइज हुआ, ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नो, हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे ही अंदर है वो सुख, वो शांति, वो खुशी। जान तो लिया लेकिन ये सफर काफी मुश्किल है, कई पड़ाव और अभी तय करने हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तनाव है जिंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं न कहीं हमारी जिंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूं या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? क्यों होता है डिप्रेशन? क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी न किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है?
2: नहीं, बीमारी तो जरूर है जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें, या तो कहे वो शुरू कहां से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहां से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे, तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा।
0: बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है। वही हम चाहते थे, तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। सिस्टर शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस

0: सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी?
1: अनुभव हर वक्त करना चाहिए, दैट्स व्हाट वी हैव सीन, कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताएं वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा. बिकॉज जनरली अगर अपने जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी, और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजेंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर होलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जेनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी. और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन टेंशन फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट यू नो दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप. अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू यू नो अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे, लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को.
0: डेफिनेटली दिस इज आर इंटरनल जर्नी, यू नो, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं. डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे वो ट्रिगरिंग प्वाइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता. वो जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की, जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहां बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती है?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है. मेरे राजयोग के अनुभव से साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरापी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि स्टेजेस क्या है लोगों की. जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं. No, really, there is a sparkle in life. No, at every day, maybe, no, every hour, you feel happy in your life, which is rare. शायद नहीं, एक करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, but that's a real stage. Then second stage is you are happy. आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है. वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे
0: हैं.
2: थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सच सच सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट ना एवरी अवर यू मे नॉट बी हैप्पी. फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, कामकाज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है. यहां पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस. उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में. जो उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था. नहीं, भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है,
0: लेकिन हाँ,
2: फिर भी होता है कि चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है. कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो
1: मुक्ति मिल जाए मुझे,
2: तो अच्छा है. तो ये फिर स्टेज है. उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं,
0: एवरीथिंग फिनिश्ड.
2: हाँ, या तो आप ढूंढ रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, ना प्लान भी बनाने लगते हैं. और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड,
0: कर ही लेते हैं.
2: या तो भी कामकाज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को. ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है. दैट इज अ रियली यू आर डीप डाउन इन डिप्रेशन इफ दैट स्टेज कम्स.
0: गुड. सो लाइक ये एक पूरे स्टेजेस को हमारे सामने बहुत क्लैरिटी से आप लेकर आए हैं, तो वो स्टेज पर आते हैं जहां हम पकड़ सकते हैं.
2: या तो उससे भी पहले मैं कहूंगा, तो सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी स्टेज बने कि जिसमें स्पार्क इन लाइफ है, नो यू आर रियली फीलिंग हैप्पीनेस एट एवरी अवर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे. अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी, थोड़ी

0: गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने।
1: बिल्कुल, हम बहुत अच्छे आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली। क्या पा सकते हैं हम?
2: आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा। ऐसा तो जीवन, मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना, यहां तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहे और बहुत समय खुश रहे तो कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी एक्सपेक्ट एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी।
1: ज्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा,
2: सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है, अभी जैसे दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम। लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहां हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक टारगेट रख दें कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा। दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे
1: अगेन पॉजिटिव थॉट विल लीड टू माय
2: बिलीफ। लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम।
0: शिवानी बेन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया ना, इट्स अ डीपर पॉइंट कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, एक महीने तक सुख चला तो अभी दुख आना ही चाहिए। इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा और सोचता है तो होगा,
1: सोचता है पता नहीं कौन सा दुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ वो, फिर ये सारा कुछ, फिर इसे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन?
0: इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, लेकिन इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से उठ, तो ऐसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो अच्छे से, सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, भी टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो,
1: लेट इट सी, एक्चुअली अंदर जाने देने
0: से इट्स अ गुड डे टुडे। और ये सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना, वातावरण भी चेंज होने लगे, एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है तो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली होता है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब और सिस्टर शिवानी बात वहीं आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है ये अवेकनिंग विल हैपन इनफैक्ट, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इनफैक्ट सच अ इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना, तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, यू नो कि आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं वो मेडिटेशन हो जाती है। तो हम जहां तक आ चुके हैं डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है, उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूं तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूं?
0: कनुप्रिया जी आपके प्रश्न में उत्तर बहुत अच्छा है, आपने कहा अवेयरनेस है ना, जो अवेयरनेस से पावरफुल शब्द है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है, अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हुआ

0: है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहां पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया। बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूं लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है।
1: कैन वी गो बैक सिस्टर शिवानी, डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं,
2: आई एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग। थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुनाते हैं, जैसे कहते हैं आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते। दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट इन दैट सेम स्टेट ऑफ माइंड विच आई यूज्ड टू बी अ कपल ऑफ इयर्स बैक। एंड देन ही सेड व्हाई, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह से जो अवेयरनेस अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में
1: नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया। तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती
0: हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है, आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है।
2: मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताए थे, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करे, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं। You know what is it that triggers that? और उसकी frequency आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं। वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान
1: ये होने लग गया कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं वो भी, और वो भी डर लगता हो ही चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है, क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं?
0: नाउ इट डिपेंड, इसका पूरा आधार कि कौन से स्टेज पर आप है।
1: फर्स्ट हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे,
0: ऐसे हाथ में तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। बल मेहनत ज्यादा लगेगी, परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि भी आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, भी वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है,
1: नेगेटिव थॉट,
0: या तो भी आपके नेगेटिव ना भी हो लेकिन सही नहीं है, जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं। नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, अब बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपन्स, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं?
0: वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सचमुच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है, है ना, कि भी आप कमजोर व्यक्ति,
1: आप मेंटली बहुत,
0: क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर। नहीं, कहीं बार मेजर डिप्रेशन
1: ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रांग।
0: इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहां तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है। और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जीन्स भी पॉसिबल है।

0: पॉसिबल। जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। ऐसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल
1: चेंजेस
0: आर
1: इम्पोर्टेंट। पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ, फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो
2: कि मेरे
1: जेनेटिकली मेरे को सब्सक्रिप्टेबल है उस चीज के लिए।
2: शिवानी, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है, कहीं ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हमें, हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जाए जा रहे हैं। वी स्टार्ट टेकिंग इट दैट,
1: उस आदत में रहने, उस स्थिति में रहने की एक आदत सी पड़ जाती है।
0: या तो ये होता है, जिससे कईयों को, जिससे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस, अरे अरे अरे क्या हो गया, तुमको कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स। तो आज कल लोग अटेंशन,
1: वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत यू नो, जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीक करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहां थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। तो ये चीज भी
0: बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है, भले इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई। ऐसा करीब 4 बार हुआ, फिर माँ को ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है।
2: So इसका like मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है, क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है, क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं?
0: सबसे पहले तो अपने आप को,
2: फैमिली पे
0: देखो, हाँ फैमिली, ये भी ठीक है कि भाई मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकेंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसे सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है कि जिसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहां विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं, और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहां पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी।
2: एंड लाइक आने वाली कड़ियों में हम इन पे जरूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको अब चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या, किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है।
1: जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्थ में भी, जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसिलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग,
2: खुद से बात कर,
1: सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट येस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प, द मेडिकल हेल्थ, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे, तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है, दैट वी आर नॉट
2: कम है।
0: बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल है ना, सेल्फ काउंसिलिंग जो इम्पोर्टेंट है,

0: कि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसिलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप। जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं,
1: क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद।
2: नहीं, कई बार खुद पता होता है, पता है, दो मतलब शेयर। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते।
0: प्रोविडियन साइकोथेरेपी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते, साल भर लग जाता है
2: निकलवाने के लिए
0: जब तक व्यक्ति उसकी बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड।
1: एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ्स को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में, जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज को पकड़ के क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है, अटैचमेंट की जो बात है वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है।
0: ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, इसे उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वह एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं।
1: हाँ, वो हम क्लिंग कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना, क्योंकि हम फिर एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसको पर उससे क्लिंग कर जाते हैं, उस क्लिंगिंग।
2: लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है।
1: हाँ,
2: कुछ जो थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट जनरली
1: जॉब है, कुछ जॉब
2: समथिंग आउटसाइड, फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट होगा।
1: बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकोथेरेपिस्ट,
2: वी कैन यू नो क्लिंग ऑन टू द काउंसलर।
1: हाँ,
2: क्योंकि वो बहुत, वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला, तो फिर उनसे स्टिक हो गए।
1: काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए?
0: एक्चुअली पहले से ये ध्यान रखना, यहाँ तो देखेंगे काउंसिलर को ही अटेंशन देना है। वी नीड टू ट्रेन काउंसिलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वॉन्ट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इससे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं
1: हो। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के, उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर हर एपिसोड में हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है। हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की, जरूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले। कहा जाता है कि जहां आंख खुले वहीं सवेरा होता है, सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नजर आने लग सकती है, और अपनी ही माइंड पावर से हम काफी कुछ चीजें बदल सकते हैं। लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए। और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सबके लिए है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर जिंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हो रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो, और मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम हर दिन एक नई देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा उस आंतरिक ध्वनि का जो मन की चंचलता को शांत कर देती है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और उसे परमात्मा से जोड़ते हैं तो हमारे भीतर से एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए वे चंद्रघंटा कहलाती है। ये चंद्रमा उनकी खूबसूरती और शांति का प्रतीक है। उनका ये स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों को शांत और स्थिर मन से कैसे सहन किया जाए। वे हमें सिखाती है कि क्रोध और अशांति के बजाय हम अपनी सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाए, दूसरों की गलतियों और कमियों को माफ करने की शक्ति ही सच्ची शक्ति है। लेकिन उनकी शांति को उनकी शक्ति से कम मत आंकिएगा। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें से हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार एक योद्धा की तरह है, जो बुराई का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उनकी घंटी की ध्वनि इतनी भयानक है कि इसे सुनकर ही राक्षस और बुरी शक्तियां कांप उठती है। माँ चंद्रघंटा का तेजस्वी रूप हमें ये याद दिलाता है कि हमारे भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, घमंड और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए हमें एक योद्धा की तरह दृढ़ संकल्प लेना होगा। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करके अपनी आंतरिक शक्तियों, खासकर सहिष्णुता और मानसिक शांति को बढ़ाने का संकल्प करते हैं। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और साहस का संतुलन बहुत जरूरी है। हम शांत और सौम्य हो सकते हैं, लेकिन जब बुराई सामने आए तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर उसका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें निडरता, साहस और शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति में विनम्रता आती है और वो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखता है। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर देवी चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में नैवेद्य यानी भोग का भी विशेष महत्व है। उन्हें दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर और शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन चीजों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज के दिन आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को दूध या उससे बनी किसी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के सबसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में, जिसका जाप करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। इसे सच्चे मन से जपने से भक्तों को साहस, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। कल हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कहानी और उनकी महिमा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय माता दी।

0: ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू सो मच।
1: आपने कहा था कि सोल खुद को भी देखना है, दूसरे को भी देखना है और जानना है, लेकिन सोल की क्वालिटीज और सोल क्या है और सोल मैं हूं, इसको पक्का करने के लिए एज एन एक्टर, जैसे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूं, तब मैं लिखता हूं एक पेपर पे, पूरा एक किरदार बना के स्टार्ट लिविंग इट। तो डिटेल में थोड़ा जाना बहुत जरूरी है।
2: हर रोज सेंटर पर जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, हर रोज परमात्मा बच्चों को क्या कर रहे हैं, रोज याद दिला रहे हैं कि तुम आत्मा हो और कैसी आत्मा हो। तो हर रोज जो मुरली मिलती है, जो हम क्लास, स्पिरिचुअल क्लास सुबह सुबह सुनते हैं सेंटर पे, वो एक्चुअली ये कैरेक्टर स्केच है। जैसे आपने कहा ना, एक कैरेक्टर लिया, उसकी पूरी डिटेल में गए, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं सेंटर पे, वो हर रोज डिटेल में जाकर हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आत्मा कैसी है और सारा दिन कैसी होनी चाहिए, वो फिट हो जाता है। That's why it's such a beautiful thing. रोज वो reaffirmation चाहिए, रोज वो information चाहिए कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ऐसे हो, ऐसे बात करती है ऐसी आत्मा, ऐसे व्यवहार में आती है, कैसा हमें बनना है, वो रोज परमात्मा के महावाक्यों से हमें मिलता है। एंड अगर हम उसको रोज स्टडी करते हैं, तो जैसे आपने कैरेक्टर स्केच बनाया, तो अगर रोज उसको देखेंगे, तो देखते देखते धीरे धीरे उसको पता होगा ना कि हमें क्या करना है, कैसे।
1: परफॉर्मेंस ऑल्सो, जब कैरेक्टर्स बाहर निकल जाऊं, आउट ऑफ कैरेक्टर, तो पता चल जाता, अरे ये तो पुलिस ऑफिसर है।
2: तो सेम चीज सारा दिन हो जाएगी।
1: हाँ,
2: कि अगर हमारा कैरेक्टर क्या है, अब ये है, हम सोल कॉन्शियस हैं, अगर थोड़ा सा भी उससे बाहर चले जाएं, तो हमें पता चल जाएगा। ये कब होगा? अगर रोज हम वो परमात्मा महावाक्य सुनेंगे, रोज सुनेंगे, यहाँ फिट करेंगे, डायरी में नोट्स बनाएंगे, दिन में बीच बीच में उसको देखेंगे कि मुझ आत्मा को आज सारा दिन कैसे चलना है, औरों को किस नजरिए से देखना है, वो करते करते धीरे धीरे वो चीज, आत्मा की जो सोल कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है, वो इमर्ज होती जाएगी।
1: म्यूजिक भी जब सीखते हैं सिस्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता है, अगर वो छोटा सा सुर, सुर का डिफ कितना, इतना इतनी मात्र सुर है।
2: अब इसी तरह सिर्फ एक छोटी सी थॉट, हमें लगेगा ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन आपने कहा एक सुर, वो आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता है।
1: हमें लगता भी नहीं कि सुर डिफरेंट,
2: तो एक थॉट हमें आउट ऑफ कैरेक्टर ले जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: एक थॉट, हमारा कैरेक्टर क्या है, इस एक्टर की पर्सनालिटी क्या है, प्योर सोल। तो परमात्मा रोज याद दिलाते कि एक तुम आत्मा हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम कैसी आत्मा हो। जस्ट आत्मा हो याद रहने से नहीं होगा, कैसी आत्मा हो। जैसे हमने पिछली बार देखा, एवरी सोल ओरिजिनली

0: ओर। तो हर आत्मा पवित्र आत्मा है। नाउ वी नीड टू विजुअलाइज, आप इसका स्केच बनाए कि प्योर आत्मा कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे हरेक को देखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे व्यवहार में आएगी। सामने से कोई कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ का कैरेक्टर तो प्योर आत्मा है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। सामने से आपने पिछली बार कहा कोई इंसल्ट भी कर देगा, लेकिन आपका कैरेक्टर तो प्योर आत्मा है, आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते ना। अगर कैरेक्टर से बाहर चले गए तो फिर प्योर आत्मा की जगह,
1: प्योर आत्मा की जगह हमने फिर ईगो ले ली, बॉडी कॉन्शियसनेस ले ली, या जो अपने चढ़े हुए।
0: तो दैट्स नॉट आवर कैरेक्टर ना, ये हमारा कैरेक्टर नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारी नेचर नहीं, ये हमारी सत्यता नहीं। सो देन वी गोइंग आउट ऑफ कैरेक्टर, तो इमीडिएटली अपने आप को क्या याद दिलाना पड़ेगा?
1: Yeah, I'm a soul.
0: This is what kind of soul? I'm a pure soul. So, आज सारा दिन में ये अटेंशन कि जो हम देखें उसमें प्योरिटी, जो हम बोलें उसमें प्योरिटी, जो हम सुने उसमें प्योरिटी, जो हम सोचे उसमें प्योरिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने से क्या हो रहा है।
1: मेरे बड़े भाई की का छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ था, बच्चों से शुरू से प्यार था मुझे, उसका नाम राजा रखा था। तो जब भी कुछ रॉन्ग करता था तो मैं बोला राजा लोग ऐसा नहीं करते बेटा, राजा लोग ऐसा नहीं करते, ओके मैं नहीं करूँ, मैं राजा हूँ।
0: सी, जस्ट स्मृति दिलाई, स्मृति दिलाई और बच्चा चेंज हो जाता है। तो परमात्मा भी रोज स्मृति दिलाते हैं ना।
1: वैसे हमारा डायरेक्टर भी बोलता है जरा सा लाफ्टर ना आपके कैरेक्टर से बाहर निकल गया, इतना जोर से नहीं हंसेगा ये कैरेक्टर, थोड़ा सा कम हंसेगा या इन चीजों पे बुरा नहीं मानेगा। उसको ऊपर उल्टा वो कितना बोल रहा है उस पर आप स्माइल करके कॉन्फिडेंटली लुक हियर।
0: सी, अब सेम चीज करेंगे ना सारा दिन में।
1: डायरेक्टर जब बोलता है,
0: डायरेक्टर बोलता है कि वो वहां से इतना कुछ बोलेगा ना, तो ये जो कैरेक्टर है ये बुरा नहीं मानेगा, तो आप एक्सेप्ट करते हैं।
1: हाँ, तो बोले हल्के से स्माइल देना और चले जाना,
0: हल्के से स्माइल देना और चले जाना। इसको रोज के लिए पकड़ लें। रोज के लिए ये क्यों नहीं पकड़ लें?
1: कैमरा ऑन नहीं है ना,
0: यहाँ कैमरा ऑन है ना, इटर्नल रिकॉर्डिंग चल रही है। अब सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो मेरा कैरेक्टर है प्योर आत्मा का, कोई कुछ बोलेगा तो ये बुरा नहीं मानेगा, हल्की सी स्माइल देगा चला जाएगा। ये रोज की मुरली करती है कि हमें हमारा कैरेक्टर बताती है। कैरेक्टर मीन हमारा ट्रू नेचर, मुझ आत्मा का कैरेक्टर क्या है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, सेकंड हमने देखा लास्ट टाइम कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, आई एम अ लवफुल बीइंग। सो आई एम अ लवफुल बीइंग कैन नॉट बी आस्किंग फॉर लव, कैन बी रेडिएटिंग लव। अब सारा दिन आज वर्क करें अगर कि लवफुल बीइंग का कैरेक्टर कैसा होगा,
1: कैसे होगा
0: आप बताइए। आप कैरेक्टर स्केच बनाते हैं ना, लवफुल बीइंग, इसका कैरेक्टर
1: प्यार करेगा, जड़ से भी, चेतन से भी, इंसान से भी, आई मीन जानवर से भी।
0: अब इस लवफुल बीइंग के सामने कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो ठीक से नहीं व्यवहार कर रहे हैं, कुछ धोखा भी दे रहे हैं, कुछ रूडली भी बात कर रहे हैं, कोई इंसल्ट भी कर रहे हैं, कोई जोर जोर से गलत उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लवफुल बीइंग का कैरेक्टर क्या करेगा?
1: लव से बात करेगा।
0: नाउ कैन वी से कि आई कैन नॉट डू दिस, ये मेरा कैरेक्टर है।
1: मैंने आज तक कभी डायरेक्टर को कोई भी चीज के लिए आई नेवर सेड आई कैन नॉट डू दिस।
0: तो ये मेरा कैरेक्टर है, अब ये करना है मुझे। अब हम नहीं कह सकते नहीं आई कैन नॉट फॉरगिव, नहीं हाउ कैन आई, नहीं वो हावी हो जाएंगे। एक तो उनके कैरेक्टर को नहीं देखना है, सामने वाले के कैरेक्टर पर फोकस नहीं।
1: जैसे गोल्फ में हवा जोर से आ रही है तो थोड़ा सा घास तोड़ के ऊपर उड़ा के देखते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो बॉल थोड़ा इस तरफ मारते इधर जाना है, वहां इतना ध्यान देते हैं कि हवा तक देखते हैं,
0: क्योंकि वहां पर सब चीजों में हमें ये मालूम है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन लोगों के साथ हमें लगता है
1: ओके,
0: किस लिए बाहर की सारी चीजों में हमें पता।
1: लेकिन जो लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अच्छी बात करें तो अच्छा लगता है ना,
0: वो तो अच्छा है,
1: वो तो अच्छा लगता है।
0: लेकिन जब वो ऐसी बात करें जो हमें पसंद नहीं है तो हम सोचते हैं कि हम उनको चेंज कर दें या वो चेंज हो जाएं किसी तरह, हवा के लिए नहीं हम सोचेंगे। अब ये जो हमारा कैरेक्टर है,

0: रोज सुबह मुरली से भी सुनते हैं, क्लास में मेडिटेशन में भी रिवाइज करते हैं. आई एम अ लवफुल बींग. एक दिन सिर्फ इस पे मेडिटेशन करने हैं. दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर द डे, पूरे दिन की तैयारी. आई एम अ लवफुल बींग. कैसी होगी, कैसी होगी वो फीलिंग, कैसी होगी उस आत्मा की हर सोच जो एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, जिसके हर सोच में प्रेम के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता. अब हम जब मेडिटेशन में सुबह बैठे, मतलब सिर्फ हम मनन चिंतन कर रहे हैं, विथ चर्निंग कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन वन क्वालिटी ऑफ द सोल, प्रिपेयरिंग इट फॉर द डे. तो सपोज आज हमने क्वालिटी ली लव. वी क्रिएट अ थॉट, आई एम अ लवफुल बींग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं. जस्ट एक थॉट लेके पॉज, उसकी फीलिंग देखनी है कि प्रेम स्वरूप आत्मा कैसे फील करेगी. शुड बी एबल टू फील दैट, कि अ सोल हु लव्स एवरीवन कैसे फील करेगी. फिर नेक्स्ट, सारा दिन अगर मैं इस कॉन्शियसनेस में रहूं तो मैं हरेक के साथ कैसे रहूंगी, लवफुल बींग. इनके साथ भी लवफुल बींग, इनके साथ भी लवफुल सोल, कैसे रहेगी ये आत्मा सारा दिन. अगर मैं इस क्वालिटी को अपने जीवन में सारा दिन इमर्ज रखूं, तो मेरी आज सारा दिन क्या परिवर्तन आने वाला है, रिश्तों में मेरे मन की स्थिति में क्या परिवर्तन आने वाला है. पुरानी बातें जो मैंने पकड़ कर रखी है, आई एम अ लवफुल बींग, तो मैं उन पुरानी बातों को क्या करूंगा. दिस इज मेडिटेशन. एंड जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं, वो सारी थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंस उस क्षण सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है. अब ये सीडी सारा दिन जब कर्म में आएगी, मॉर्निंग में कर लिया ना वो तैयारी, तो जैसे आपने कहा कि वो जो कैरेक्टर है उसकी तैयारी सुबह कर ली.
1: हाँ, उसके बाद फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगती है सर पे. एक बार कैमरा ऑन है, कैरेक्टर ऑटोमेटिक जाता है.
0: अंडरलाइन, उसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं लगती है,
1: बिल्कुल कम लगती है. एक बार कैरेक्टर समझ गया, इट इज इन द बैक ऑफ योर माइंड.
0: इट इज एट द बैक ऑफ योर माइंड मीन्स इट हैज बीन फिटेड इनटू द सबकॉन्शियस.
1: हाँ, आगे अंदर.
0: अब अगर यही होमवर्क जो आप उस रोल के लिए कर रहे हैं कि कैरेक्टर प्रेपरेशन, अगर ये नहीं करें और सीधा सीन में इनैक्ट करने के लिए चले जाएं, तो विल देयर बी अ डिफरेंस.
1: बहुत फर्क पड़ता है.
0: क्या हो जाएगा?
1: एक रिहर्स किया हुआ होता है, एक नहीं रिहर्स किया होता है.
0: नहीं किया ही नहीं. कैरेक्टर प्रिपरेशन, सिर्फ आपको किसी ने कहा आपको इस मूवी में पुलिसमैन का रोल प्ले करना. आपने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा कल सुबह 10 बजे. तो आप कल सुबह 10 बजे पहुंच गए. आई एम अ पुलिसमैन. चलो, विल दैट मेक अ डिफरेंस?
1: या टाइम लगेगा, रिटेक्स होंगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे, फिर करूंगा, फिर रूम में जाके फिर से प्रिपेयर करूंगा, टाइम वेस्ट होगा.
0: अब इस केस में
1: काम खराब होगा.
0: गलतियां होंगी, रिटेक्स होंगे, लेकिन जीवन में रिटेक नहीं हो सकती.
1: नहीं होती.
0: राइट. तो अगर मूवी को इनैक्ट करने के लिए हमें बिना गलतियों के करना है, तो हमें सुबह कैरेक्टर प्रिपरेशन करके जाना होगा.
1: सही बात.
0: अगर जीवन में हमें सारा दिन बिना गलतियों के चलना है, विच मीन्स मेरे से भी कुछ गलती ना हो और दूसरे से हो जाए तो उसका मुझ पर असर ना हो, मतलब यहां कोई गलती ना हो, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, ना हर्ट करेंगे ना हर्ट होंगे, ये मेरे से कोई गलती ना हो.
1: दूसरा एक्टर अगर प्रिपेयर करके जब नहीं आता है तो 10 रिटेक करवाता है और हमको करना पड़ता है.
0: तो सारा दिन में हम अगर अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करके चले भी जाएं, दूसरे नहीं प्रिपेयर करके आएंगे.
1: करेक्ट.
0: तो दूसरे नहीं प्रिपेयर करके आएंगे, लेकिन हम अपने कैरेक्टर में रहेंगे, दूसरे नहीं करके आएंगे. बट इम्पोर्टेंट इज अगर प्रिपेयर करे बिना चले गए. आज हम कैसे कर रहे हैं? सुबह उठे, उठते ही लेट हैं क्योंकि लेट सोते हैं, तो उठते ही हम एक हरिड नोट पे हैं आजकल कि लेट हो गया, जल्दी उठो, फैमिली को उठाओ, तैयार करो, चलो गाड़ी में बैठो, ऑफिस पहुंचो. ऑफिस गए, अपनी सीट पर बैठ गए, काम करना शुरू कर दिया. जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन. पहले पेरेंट बने, फिर रोड पे ट्रैवलर बने, फिर ऑफिस में जाके जो पोजीशन है वो बने. लेकिन ये सारे रोल्स प्ले करने के लिए जो कैरेक्टर की सुबह

0: तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो फिर नहीं होगा, चांसेस नहीं है गलती होने के,
1: बहुत है.
0: ओनली बिकॉज वी आर गोइंग विदाउट प्रेपरेशन.
1: एक हमारा पीरियड आया था 80s 90s में, बिटवीन 80 एंड 2000 में, जबकि एक एक्टर 10-10, 15-15, 20-20 फिल्में साइन कर लेता था. तो फुल डे तो एक ही दिन में 4 प्रोड्यूसर को जरूरत होती थी, तो वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे देता था. तो इतना खराब काम करके जाते थे वो लोग. और जब फिल्में देखो तो लगता था कि सेम एक्टर सेम रोल सब पिक्चर में एक जैसा कर रहे हैं.
0: लेट्स टेक दिस लाइन, सेम एक्टर सेम रोल सब पिक्चर में एक जैसा कर रहा है, क्योंकि
1: कैरेक्टर में नहीं,
0: तो कैरेक्टर में नहीं है ना. ऐसे हम भी सुबह से उठे, अपने आप को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, भागे, गाड़ी ली, पहुंचे, एक के बाद एक काम किया, शाम को उसी तरह से भागते हुए वापस आए, एक एक सीन कैसा लगेगा.
1: आज 1000 गाने गाने के बाद भी कोई भी सिंगर कभी नहीं बोलता कि मैं मुझे आ गया है. वो रोज सुबह 4 बजे उठ के आज भी प्रैक्टिस करते, रियाज करते,
0: तो
1: रिहर्सल करते.
0: जब ये सब चीजों के लिए इतना रिहर्सल, तो जीवन आज सारा दिन कैसे जीना है उसके लिए सुबह बिना तैयारी किए कैसे जा सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल?
1: उसको ज्यादा तवज्जो ज्यादा वो देते हैं, उसमें इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में उन चीजों को.
0: रोल को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए. मूवी को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए. विल वी डू वेल?
1: नो.
0: देन और यही अगर कैरेक्टर प्रिपेयर करके चले गए तो आपने कहा फिर वहां जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल आएगा. तो कितना टाइम बचा? गलतियां नहीं हुई, रीटेक्स नहीं हुए. तो सुबह की 1 घंटे की तैयारी सारा दिन परफॉर्मेंस के दौरान टाइम को बचाएगी?
1: सिस्टर, जब मैं हॉलीवुड की फिल्म इंग्लिश फिल्म करता था उसमें तो एक दिन पहले याद भी करके जाना पड़ता था. ये नहीं कि सेट पे आए, हम डायलॉग अभी मिला, मैं भी आता हूँ मेकअप रूम में, 100 बार पढ़ रहे, सब लोग वेट कर रहे, नोबडी वेट.
0: तैयारी अगर की तो सारा दिन क्या होगा? कम टाइम में
1: अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा.
0: कम टाइम में अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा. अब यही अगर हमने सुबह उठकर सारा दिन की तैयारी की, मतलब मैं कौन हूँ, उस परमात्मा का मैं बच्चा कैसा हूँ, सबके साथ मुझे आज कैसे रहना है, ये सारा कुछ अंदर भरा, तो कैरेक्टर स्केच यहाँ मिला. फिर मेडिटेशन में बैठे, उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज कर दिया कि ये ऐसा होगा, ऐसा सारा दिन में ऐसे होगा, ऐसे ऐसे. अब अगर ये तैयारी करके सारा दिन में गए तो आपने कहा गलतियां नहीं होंगी, काम अच्छा होगा एंड ज्यादा काम होगा. यही 3 चीजें तो हमें चाहिए सारा दिन में. ये 3 चीजें चाहिए ना सारा दिन में, कि गलतियां ना हो, काम अच्छा हो और काम ज्यादा हो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए. सो वी कांट अफोर्ड टू लूज टाइम इन आर मिस्टेक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी कांट अफोर्ड टू लूज एनर्जी द होल डे. सो सुबह उठकर एक वैल्यू, जैसे हमने कहा लवफुल बींग. फिर आत्मा की तीसरी वैल्यू, पीस. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. इस कैरेक्टर को बनाया आज सुबह बैठकर कि शांत स्वरूप आत्मा आज सारा दिन कैसे रहेगी. पीसफुल बीइंग, काम नहीं हो रहा उसके आसपास, लोग टाइम पर नहीं पहुंच रहे, लोग पहुंचे लेकिन तैयार नहीं है, ये पीसफुल बीइंग कैसे फेस करेगी सबको? विजुअलाइज, इंटरनलाइज, प्रिपेयर. प्रिपेयर थॉट क्रिएट करके वहां रिकॉर्डिंग कर दी. अब जाएं सारा दिन में, आज तो क्या हो रहा है, एक कार भी आगे थोड़ा सा स्लो चल रही है,
1: हॉर्न बजा
0: रहा है. सो मच इम्पेशेंस बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर पीस इन द मॉर्निंग. वो दिखता है ना कितनी अधैर्यता है, अशांति है. यहां से घुसते हैं, यहां से घुसेंगे, इतनी सी जगह मिलेगी इधर, क्योंकि आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. ये जो हम इस तरह से सिर्फ ड्राइव भी कर रहे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. हम कहते टाइम नहीं था ना इसलिए. इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मन की स्थिति.
1: हैबिट भी हो गया.
0: मन की स्थिति अशांत है, वो तो फिर रोज ऐसे रहेंगे. अब अगर आज हम सुबह प्रिपेयर करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आज मुझे 1 घंटा ड्राइव करना है ऑफिस पहुंचने के लिए, उस ड्राइव पर बहुत कुछ होगा.

0: मैं शांत स्वरूप आत्मा कैसे जाती हूँ, तैयारी हो गई। अब वो ड्राइव क्या हो जाएगी, स्मूथ एक्सपीरियंस, नहीं तो वो ड्राइव हम कहते हैं आजकल ट्रैफिक में इतना स्ट्रेस है। सी हाउ एवरीथिंग विल चेंज।
1: आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस, मेरा एक ड्राइवर था जो रेड लाइट पे भी हॉर्न बजाता था। मैंने बोला रेड लाइट है नहीं सब, अभी टाइम हो गया, आने वाली है ग्रीन। बोले आने तो मैं उसको जगा रहा हूँ, सो रहा है क्या आगे आदमी। हैबिट,
0: इट्स नॉट अ हैबिट।
1: इम्पेशंस,
0: अधैर्यता। क्यों अधैर्यता? क्योंकि रोज शांति का कैरेक्टर प्रिपेयर करे बिना घर से निकले हैं।
1: आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल,
0: प्रिपेयर करे बिना निकले हैं।
1: अगर सातों, आपने क्या कहा, सात है ना,
0: राइट,
1: सातों रोल्स इंडिया के लोग, सब वर्ल्ड तो छोड़ दो, कुछ कुछ लोग एक एक कंट्री भी, एक स्टेट भी, एक एक रोल लेवे। सुबह आज मैं पीसफुल लेता हूँ, आज मैं लवफुल लेता हूँ, आज मैं तो कितनी शांति हो जाएगी।
0: हम सिर्फ अपने लिए एक घर में एक जना ये कर ले तो देखेंगे घर में वातावरण कैसा बदल जाएगा।
1: एक जने से,
0: एक जना भी इम्पेशेंट होता है ना अगर घर के अंदर, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। और वही आत्मा अगर शांत हो जाए आज, पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा।
1: मेरे साथ होता है ना, जैसे जरा सी रोटी देर से आई तो उनको मालूम है मैं इम्पेशेंट होता था। पहले की बात कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ उठ के भागती थी किचन में, रोटी दे रो साहब को, इतना लेट नहीं करो। फिर वो उसको बोला, फिर उसको, फिर बच्चे भी, फिर नहीं पहले आप ले लो, नहीं आप ये वाली ले लो, पूरा घर हिल जाता है।
0: हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है। कुछ दिन पहले एक भाई शेयर कर रहा था, कहते हमारे कंपनी का जो ओनर है, मालिक है, पहले उसके अंदर इतना गुस्सा था कि बात हुई नहीं कि वो रिएक्ट कर देगा। और हम सब थोड़ा सा डरते थे कि बात हुई नहीं अभी जोर से रिएक्ट करेगा, और अगर प्रॉब्लम आई तो गुस्सा आना ही है, वो उनकी नेचर थी। लेकिन जब से उन्होंने राजयोग मेडिटेशन सीखा, वो भाई हमें सुना था, जब से आपके सेंटर पे ये भाई आए और ये मेडिटेशन रोज सीख रहे हैं, अब कहते हैं मीटिंग में भी बैठते हैं, क्राइसिस है, डिस्कस हो रहा है, सब गुस्से में है, अशांत है, और ये आंख बंद करके वेट करते हैं अभी ठीक हो जाएंगे सारे। पहले अपने ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं, अब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल।
1: ब्यूटीफुल थिंग, कितनी
0: अब गुस्सा नहीं आता। और फिर कहते हैं दो मिनट के बाद हम सबको कहते हैं हो गया अभी बैठो, अब बात करते हैं, शांति में बैठो पहले। वन पर्सन
1: सारी टीम को लेके साथ चल सकता है। वो
0: लीडरशिप क्वालिटी है ये। आज लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में कितनी बात हो रही है दुनिया में कि लीडर कैसा होना चाहिए। तो कहेंगे लीडर वो जो एग्जाम्पल सेट करे, लीडर वो जो दूसरों को मोटिवेट करे, लीडर वो जो खुद पहले
1: स्टेबल रहे,
0: संयम में रहकर ही तो आगे नेक्स्ट कुछ हो सकता है। लीडर वो जो टेक्स इन चार्ज ऑफ हिमसेल्फ, नॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ अदर पीपल, दैट इज द सेकेंड स्टेज। तो ये अगर हमने तैयारी सुबह की तो सचमुच में वो लीडरशिप क्वालिटी है। चाहे वो हम घर के लीडर हैं, चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हैं। लीडर मतलब वो जो अपनी वाइब्रेशन से औरों को लीड कर ले, एक शांत रहे, सबको लीड कर ले। लीडर इज नॉट बाय पोजिशन, लीडर इज नॉट बाय एज, लीडर इज बाय माई क्वालिटी। तो पवित्र स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, कितनी तैयारी है करने की, शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल। अब अगर हम ये तैयार करें स्केच सुबह, आई एम अ पावरफुल सोल, तो पावरफुल मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई भी आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल, तो मैं हावी होऊंगा उन पर, वो मुझ पर नहीं हावी हो सकते, बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल। एंड पावर मतलब आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड देयरफॉर इन चार्ज ऑफ सिचुएशंस, इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। तैयारी कर ली, अब कोई भी बात आए, ऐसा लगे मुझसे नहीं हो रहा, ये काम मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये एडिक्शन मुझसे नहीं छूट रही, आई एम अ पावरफुल सोल। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये मुझसे नहीं छूटता, वी से आई एम अ पावरफुल सोल। अब मुझसे नहीं छूटता कहा तो यहाँ क्या रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो छूटने नहीं वाला है। लेकिन आई एम अ पावरफुल सोल,

0: शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये चीज क्या है, ये क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ। रिकॉर्डिंग हो गई, हमने की नहीं थी ना क्रिएट कभी भी ऐसी चीजें, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं बन रही थी। अब जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग होती गई, वो ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल निकलता गया। ज्ञान स्वरूप आत्मा, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। आज हम औरों से जाते हैं पूछने के लिए, 2 मिनट साइलेंस में बैठे, आत्मा के पास सारे आंसर्स हैं। विजडम, नॉलेज आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, इसीलिए हमें कई बार लगता है ये बात कहां से आ गई मेरे मुख से, ये तो मैंने नहीं कहीं पढ़ी, ये तो मैंने कहीं नहीं सुनी, कहां से
1: दूसरे आदमी प्रॉब्लम लेके आता है जब ऑटोमेटिकली निकलती है, खुद के लिए जो है
0: क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति लेकर आता है हम उस प्रॉब्लम से डिटैच्ड हैं,
1: अच्छे से डिटैच।
0: हाँ, हम अटैचमेंट नहीं है ना किसी भी चीज से। सपोज दूसरा व्यक्ति बोले मेरे बेटे ने ऐसा किया ऐसा किया, इट्स वेरी इजी टू टेल देम व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि उस बच्चे से हमारी अटैचमेंट नहीं है, तो ईगो नहीं है। ईगो नहीं, अटैचमेंट नहीं, आत्मा नॉलेजफुल है। एंड यही अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ है तो शायद हम राइट एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि अटैचमेंट है। तो इसीलिए डिटैच, डिटैच फ्रॉम रोल, डिटैच फ्रॉम पर्सन, डिटैच फ्रॉम सिचुएशन, नाउ सी द आंसर। हमारे पास सारे आंसर्स हैं। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है एंड आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्लिस। ब्लिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ एवरी सोल। आनंद, सारा दिन मुझे ये याद रखना है, खुशी आनंद चीजों में नहीं है, अचीवमेंट में नहीं है, कोई लेने में खाने में खरीदने में नहीं है, ये मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है। सारा दिन एक वर्ड भी ले, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, दिस इज माय नेचर, सारा दिन कैसे फील होगा? तो वो थॉट क्रिएट करने से वो संस्कार इमर्ज होकर सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वी हैव टू टच दैट सॉन्ग फॉर इट टू स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो हर रोज मॉर्निंग आत्मा की एक ओरिजिनल क्वालिटी लेकर कैरेक्टर को प्रिपेयर करके, उस कैरेक्टर को आज सारा दिन के रोल्स परफॉर्म करते हुए देखकर फिर सुबह निकलना है।
1: ऑलरेडी ये सारे के सारे 7 क्वालिटीज रेडीमेड है, सिर्फ हमारा चॉइस है।
0: लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किया है तो हम जब एक्शन में आते हैं तो वो हो नहीं पाता, लेकिन अगर हम अब मॉर्निंग में बैठकर उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको इमर्ज कर लेंगे, फिर वो सारा दिन कर्म में आ जाएगा। दैट इज वाई मेडिटेशन हेल्प्स टू ब्रिंग आवर ओरिजिनलिटी इनटू एक्शन।
1: हम लोग बाय डिफॉल्ट का बटन नहीं दबा सकते के?
0: थोड़े दिन तो करना पड़ेगा ना, थोड़े दिन करने के बाद वो लूप में चला जाएगा, लूप में जाने के बाद वो हमारा व्यवहार परमानेंट बन जाएगा।
1: देन आई डोंट हैव टू सीक ब्लिस एंड पीस एंड लव, बिकॉज अपने पास है वो,
0: अपने पास है।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति,
1: ओम शांति, ओम शांति।
2: द गॉडली वर्जन्स स्टडी डेली एट ऑल द ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स इज कॉल्ड Murli. Supreme Father and Teacher, through the Murli, daily reminds each of us that we are not the acquired body. We are souls, and how we should be the entire day in the soul conscious stage. Let us take one thought. I am a pure soul. Now, visualize and prepare this character. How would a pure soul think, speak, behave, sleep, eat and drink? If someone does not behave right, how would a pure soul respond? Churn and store this information in the subconscious. Pure soul means where there will be no adulteration, even in thoughts. A pure soul will see each person in their true, pure form, will not get influenced by the impurity in situations or people. Pure soul will always maintain its purity and right.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

मैं हूं अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर ईश्वर लाल भाई।

0: जोशी हमारे साथ उपस्थित हैं और पिछली बार पेरेंटिंग के बारे में काफी अच्छी बातें उन्होंने की थी और इस बार भी वो पेरेंटिंग से थोड़ा सा आगे हम लोग ले चल रहे हैं उनको और बहुत ही अच्छा विषय जो है आज जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है करियर सेकेंडरी हो जाता है, हमारा स्वभाव सबसे इम्पोर्टेंट है और बच्चों का अगर पहले से ही संस्कारीकरण हो जाए और बच्चे जो है एक माता पिता के कहने अनुसार या फिर समाज के हित में स्व कल्याण के अर्थ अगर वो बच्चे संस्कृत हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं, तो जीवन में करियर भी उनका अच्छा बनता है। तो करियर अच्छा बनाने का जो बेसिक जो बुनियादी काम है वो इसके माध्यम से हो सकता है। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर ईश्वर लाल भाई को कहा कि भाई आप जरूर इस पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा डिस्कशन कीजिए और अच्छी चर्चा होगी तो लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और बच्चे भी इससे काफी कुछ सीखेंगे। तो आइए इस विषय को लेकर जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें ये विषय आज का है और इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ईश्वरलाल भाई का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में।
1: नमस्कार दोस्तों, रमेश भाई आपको भी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझको यहां पर बुलाया।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, हमें खुशी हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें इसके ऊपर अपने विचार बताइए।
1: आज का विषय आपने बहुत बेहतरीन चुना हुआ है, पेरेंटिंग के अंतर्गत जिद्दी बच्चे और जिद्दी बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। काफी बार हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, अरे बच्चे जिद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही, इस प्रकार से। लेकिन यह जब समस्या बन जाती है तो वाकई में हमें इसके ऊपर सोचना पड़ता है। जिद दो प्रकार की होती है, पहला तुरंत होना चाहिए, समय के साथ में उनको तुरंत चीजें चाहिए, और दूसरी जिद होती है मन के मुताबिक होना चाहिए, मतलब काम तो होना चाहिए लेकिन उनके मन के मुताबिक। तो इसमें पहली जो आती है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। आज के जमाने में अगर हमने देखा तो नई प्रो पीढ़ी जिसको हम कहेंगे, यानी कि अति आधुनिक पीढ़ी, 1.5 साल के 2 साल के बच्चे, तो ये अभी इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट मतलब क्या, समय के साथ में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, समय से पहले चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके विश्लेषण में हम गहराई से जाएंगे। हमारे संस्कृति में, हमारे पीढ़ियों में कुछ बदलाव आ गए हैं, कुछ बुनियादी बदलाव आ गए हैं, इनको हमें पहले समझना पड़ेगा। जो लोग अभी दादा दादी नाना नानी बन गए हैं, 50+ 60+, उन्होंने अपने बचपन को अगर याद किया तो पता चलेगा जब भी उनको बचपन में कुछ चीजें चाहिए होती थी तो अपने माता पिता से वो दरख्वास्त लगाते थे, रिक्वेस्ट करते थे। पिता से डायरेक्टली तो नहीं होती थी लेकिन माता के द्वारा रिक्वेस्ट बताई जाती थी कि मुझको शर्ट चाहिए या बुक चाहिए या कोई कलम यानी पेन चाहिए। तो फिर उसके बाद में पिताजी जो है वो उसके ऊपर सोच विचार करते थे, शांत रहते थे या रिएक्ट करते थे और उनके मुताबिक उनको जैसे चाहिए उस प्रकार से वो चीज ला करके देते थे काफी इंतजार के बाद में, और तब उन्हें बच्चे को बहुत ज्यादा आनंद होता था। ठीक है, उस वक्त अगर हमने देखा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, 70 इंचेस स्क्रीन वाला वो टीवी, उसको देखने के लिए 200 लोग एक छोटे से रूम में इकट्ठा हो जाते थे और दूर बैठ करके हम वो दूरदर्शन के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम देखा करते थे। जिस वक्त टीवी के ऊपर चलने वाले एडवर्टीजमेंट ऐसे ही हमें देखने पड़ते थे, जो भी कुछ चल रहा है उसको दूर बैठ करके, क्योंकि टीवी तब तक रिमोट का नहीं था, पेशेंस हमारे पास बहुत ज्यादा थे। फिर जमाना बदलता गया, दूसरी पीढ़ी जो आई, जो अभी 35-40 साल के उम्र के लोग हैं, इनके जमाने में बचपन में, अब जमाना और थोड़ा फास्ट हो गया, कलर टीवी आ गए, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गए। अब रिमोट कंट्रोल आ गए और अगर फिल्म में बीच में एडवर्टीजमेंट का हिस्सा आ गया तो तुरंत चैनल सर्फिंग का काम होने लगा, पेशेंस खोने लगे और दूसरे तीसरे चैनल ढूंढने का काम शुरू हुआ। अब सोशल मीडिया के जमाने में नई पीढ़ी जो आई है उसका आप निरीक्षण कीजिए, अगर टीवी के ऊपर या कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रोग्राम ढीला हो गया, थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट ढीला हो गया कि बच्चा जो तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेगा और इंस्टाग्राम

0: सर्फिंग करना शुरू करेगा या उसके जैसे कोई भी तत्सम सोशल मीडिया को वो सर्फिंग करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब पेशेंस नहीं है। ये वीडियो मुश्किल से ज्यादा 3, 4, 5 या 10 सेकंड के लिए चलेगा, 10 सेकंड के बाद में तुरंत वो वीडियो को चेंज करेगा, तुरंत चेंज करेगा। ये आ गई है हमारी प्रो फास्ट ऐसी नई पीढ़ी कि उनको हर एक चीज तुरंत चाहिए। आज से 50 वर्ष पहले अगर किसी माँ को अपने घर में कुछ रेसिपी बनानी होती थी कि रेसिपी के बारे में सोचना, उसके लिए तैयारियां करना, रेसिपी बनाना, ये 3, 4, 5 दिनों की लगातार की प्रक्रिया होती थी। तब हमारे जीवन में मिक्सर नहीं था, तब गैस के चूल्हे नहीं थे, लकड़ी के ऊपर खाना बनता था और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऐसी वो प्रक्रिया होती थी। उसके बाद की जो पीढ़ी आई तो उन्होंने अगर मॉर्निंग में सोचा तो शायद दिन भर वो तैयारियां करे और दूसरे दिन वो रेसिपी बनाए, क्योंकि अभी तो मिक्सर आ गए हैं, सिलबट्टे चले गए, फिर गैस के चूल्हे आ गए, फिर बिजली के ऊपर चलने वाले चूल्हे आ गए और थोड़ा फास्ट हो गया जमाना। लेकिन अभी के पीढ़ी के अंदर वो भी अभी पेशेंस नहीं है। अब क्या करना है, तुरंत मोबाइल उठाना है, उसका एक एप्लीकेशन चुनना है, ऑर्डर देने हैं, विद इन 30 मिनट्स टाइम, आधे घंटे के अंदर अंदर जो चीज चाहते हैं आप वो मार्केट से आपके दरवाजे तक आपके हाथों में गर्मा गर्म परोसी जाती है, सर्व की जाती है।
1: डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा कि जिद का जो परिभाषा है वो इस बात से हमें पता चल रहा है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी चीजें जो है कितनी आसानी से जो है ये चीजें हमें कवर कर रही है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा जो है कन्वर्सेशन हो रहा है। आइए इस कन्वर्सेशन को यहां थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, एक ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी से बातें हो रही है, काफी अच्छी बातें हो रही हैं कि किस तरह से हम लोग जो है जिद्दी बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर आगे चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई, आगे बताइए।
1: धन्यवाद रमेश जी। अब हम चर्चा के ऐसे मोड़ के ऊपर आ गए हैं कि यहां से आगे हम सॉल्यूशंस को जानेंगे कि ये विश्लेषण तो हमने किया, बहुत खूब विश्लेषण किया, बेहतरीन ढंग से किया। अब ये 1.5-2 साल के बच्चे हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि दैट इज द पेरेंटिंग। 17-18 साल के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, या थोड़े से मैच्योर बच्चे 20-22 साल के बच्चे जो है उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे प्रथमतः ये जान लीजिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, हमारे 1.5-2 साल के बच्चे हैं, तो उनको जब भी उन्होंने कुछ चीज मांग ली तो उसको तुरंत कंप्लीट नहीं करना है। लेट देयर बी सम टाइम, थोड़ा सा उनको पेशेंस उनके अंदर डेवलप करना जरूरी है। अपने साथ में उनको बिठाना जरूरी है। हर एक चीज के लिए हमने उनको समय देना है, और ये समय देने के लिए माता पिता ने पहले सीख लेना है कि समय कैसे दिया जाता है, बच्चों के साथ में क्या बात की जाती है। अगर बच्चा बोलता है कि अमुक चीज चाहिए, तो घर में भले वो घर में अवेलेबल होगी, चाहे वो खाने की वस्तु होगी, चाहे कुछ यूज करने की वस्तु, तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए। बच्चा बोलता है कि माँ मुझको भूख लगी है, तो तुरंत जाके चॉकलेट उसके हाथ में थमाना नहीं है। अगर वो बोलता है भूख लगी है, तो उसको बताते हैं कि बेटा जरा 5-10 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, दे रही हूँ आपको, और बच्चे को थोड़ा इंतजार करने के लिए सिखा दीजिए। ये सिखाना किसके हाथ में है? माता पिता के हाथ में है। और माता पिता जानबूझ करके ये संस्कार बच्चों को देगी कि इसको टाइम के अंदर, यानी हम कहेंगे पेशेंस के साथ में, थोड़ा सा धैर्य रखने की जो आवश्यकता है, ये धीरज, ये धैर्य कैसे रखते हैं, ये हम बच्चे को सिखाएंगे। दूसरा, कभी भी जब बच्चे ने कुछ चीज अगर मांग दी तो उसके सामने पर्याय नहीं रखने हैं। अब माता पिता गड़बड़ी क्या करते हैं कि उसके सामने, मान लीजिए टी शर्ट उसने मांग लिया, लाल पीला हरा नीला 4-5-10 टी शर्ट रखेंगे और उसको बोलेंगे तू चूज कर ले, तू चूज कर ले। ऐसा नहीं, तो माता पिता ने क्या करनी, उसकी मदद करनी है कि बेटा आपको जो है ये लाल रंग अच्छा सूट करता है, या ब्लू कलर जो है वो आपको अच्छा सूट करता है। इस प्रकार से उसको मदद करेंगे डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम अधांतर में छोड़ देंगे कि तुम डिसीजन ले लो। अच्छा, बच्चे को क्या जानकारी कि कौन सा कलर उसको सूट करता है, नहीं करता है, XYZ उसने पहन लिया और विदूषक के जैसे वो क्लाउन बन करके वो समाज में घूमेगा बाहर, तो लोग तो हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या चीज है। हम बोले नहीं नहीं उसकी पसंद है ना, उसकी पसंद का पहन लिया। तो माता पिता को मालूम है कि समाज में किस प्रकार के रंग, किस प्रकार का पहनावा पसंद किया जाता है, उस प्रकार से हम उसको संस्कार देते हैं। हम उसका अपना मतमंतव्य उसके ऊपर ठोकते नहीं है, लेकिन उसको हम समझाते हैं कि ये कलर ज्यादा सूट करेगा, स्कूल में अगर पहनना है तो ये आपको सोबर कलर पहनना पड़ेगा, पार्टी में जाना है तो थोड़े चटकीले भड़कीले रंग ऐसे आएंगे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रकार से माता पिता ने हर एक बार उसको अपडेट करना, उसके नॉलेज को अपडेट करना है। इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने मन में निकलने वाले विचार जो होते हैं, इनको मैनेज कैसे करने हैं, ये मैनेज करने का तरीका माता पिता बहुत ठंडे दिमाग से, शांत तरीके से बताएंगे। कहीं पे भी गुस्सा नहीं, कहीं पे भी हम आवाज नहीं चढ़ाएंगे, कहीं पे भी हम तिरकस बात नहीं करेंगे, यानी टॉन्टिंग के मूड में उससे बात नहीं करेंगे। अदरवाइज बच्चा आपके शब्दों के मतलब को पकड़ लेता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उनको टॉन्टिंग करने की आदत होती है, उनका टोन ही ऐसा रहेगा कि बच्चे को इंसल्टिंग फील होता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे जिद्दी होने का एक और कारण होता है, और वो कारण होता है घर के बड़े बुजुर्ग, यानी कि दादाजी नानाजी या माता पिता, हम कहेंगे माता तो नहीं, उनकी एक आदत होती है कि अपने बेटे को, यानी कि बच्चे के बाप को वो डांटते हैं, बच्चे के सामने ही बुरी तरीके से डांटते हैं। और अगर अभी तो क्या हुआ ना कि दादाजी नानाजी बनने वाले जो लोग हैं परिवार में, वो उतने ज्यादा बूढ़े नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, और समाज की रचना के कारण भाई बच्चों की शादी तो 25वें साल में हो जाती है, तो बच्चा बच्चा जो है वो 30 की उम्र तक तो ये आ ही जाता है। तो अभी माता पिता जो है, पहले जमाने में ये हुआ करता था, 60+ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, लोग अमूमन 80-90 तक जिंदा रहते हैं, और 60+ भी हो जाते तो अभी जवान है, ऐसा लगे नहीं कि ये नानाजी दादाजी बन गए हैं।

0: या नानी या दादी बन गई है, ऐसे अगर जवान हैं तो अपने आप का कंट्रोल रखने के लिए जो छोटा बच्चा होता है 1.5-2 साल का, उसके माँ को या उसके पिता को बहुत जोर से डांटेंगे, या उसका बाप जो होगा बच्चे का बाप वो अपने उसके बच्चे के माँ को बहुत ज्यादा डांटेगा, उसकी इंसल्ट करेगा।
1: जी जी जी, ईश्वरलाल जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं, और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं। और घर में कई बार इस तरह के प्रसंग को हम देखते हैं, और ये प्रसंग हमें पता नहीं चलता कि हम लोग समझते कि सही है, लेकिन जाने अनजाने में इन चीजों को करते हैं तो वो फिर बहुत बड़ा जो है एक चेंज बच्चे के मानसिक पर आता है, और बच्चा सोचता है कि माँ को तो सभी लोग डांटते हैं, तो माँ की सुनना या नहीं सुनना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जो बात है डॉक्टर ईश्वरलाल भाई हमें बता रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार से बताइए जी।
0: कई बार फिर एक लड़की होने के बावजूद भी एक लड़की परिवार में रखने का चलन शुरू हुआ, तो ऐसे परिवार अब उनका गांव छूट गया, अब उनका खुद का मतलब माता पिता का गांव छूट गया, शहरों में आ गए, विदेशों में आ गए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज गांव में नहीं थी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज शहरों में थी, मेट्रोपोलिन जिसको हम कहें बड़े शहर उनमें हैं, फिर विदेशों में हैं। अब माता पिता काम पे जाने लगे और बच्चा जो है वो अकेला या तो नौकरों के साथ में है या तो फिर अपना काम वो खुद कर रहा है। अब उसके साथ में इमोशंस को बांटने के लिए, वस्तुओं को बांटने के लिए उसके साथ में भाई बहन नहीं है, जो पहले एक परिवार की रचना थी और उस परिवार में भाई बहनों के साथ में वस्तुओं को बांटता था, अभी वो चीज नहीं रही। अब जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चा जो है वो एकल में अकेलेपन में आ गया, और चीजों को पहले जब उसको बिस्कुट भी मिलता था तो 2 भाइयों के साथ 3 भाइयों के साथ बांटकर खाते थे, अब एक ही बच्चे को 10-10, 20-20 बिस्कुट्स मिलने लगे, अब बांटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, जिसके कारण धीरे धीरे यह पीढ़ी यानी प्रो यानी के आने वाले जो नई पीढ़ी है ये बहुत ज्यादा जिद्दी होने का काम शुरू हुआ। तीसरा कारण हमारे समाज में आने वाला या आ चुका है एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और यह परिवर्तन यह रहा कि हमने बहुत ज्यादा मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, हमने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की किताबें पढ़ी, उस प्रकार के हमने कई ज्यादा मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए, तो हमें यह शिक्षा दी गई, हमें यह बताया गया कि बच्चों के साथ में हमने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए। अब इसकी गड़बड़ी क्या हो गई ये मैं आपको जरा बता दूं कि जैसे कि कई सारे स्कूलों में मैं अगर जाता हूं तो वहां पे देखता हूं कि वहां पे अगर तैराकी की स्पर्धा हो रही है, भाषण की स्पर्धा हो रही है, या खेलकूद की स्पर्धाएं अगर हो रही है, तो उस वो एक समय था कि जब बच्चा फर्स्ट आने की कोशिश करता था, सेकंड आने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके लिए बख्शीश मिलता था 1-2 और ज्यादा से ज्यादा 3। लेकिन अब क्या हो गया कि अब 1-2-3 तो हो गए, उसके बाद में उत्तेजनार्थ 2-3 बख्शीश आएंगे, उसके बाद में इसका ये उसका ये, तो करते करते करते क्लास में या उस स्पर्धा के अंदर 50 बच्चे अगर हिस्सा लेते हैं तो 50 बच्चों को उसका बख्शीश दिया जा रहा है, दिस रीजन दैट रीजन और न जाने क्या क्या। तो फिर फर्स्ट आने का या अपना बेस्ट देने का बच्चा जो काम कर रहा था ये अब खत्म हो चुका, उसका मोटिवेशन निकल गया, वो बोलता है यार ऐसे भी अगर मैं फर्स्ट आता हूं तो भी बख्शीश मिलता है, नहीं आता हूं तो भी बख्शीश मिलता है। अच्छा टीचर्स की समझ ये क्या है, सोच क्या होती है, नहीं नहीं नहीं हर एक बच्चे को जो ना ट्रॉफी मिलनी चाहिए, हर एक किसी बच्चे को अगर नहीं मिलेगी तो बेचारा नाराज हो जाएगा। जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने परफॉर्म किया नहीं किया तो मुझको ट्रॉफी मिलती है, ये लोग मेरी सेवा के लिए लगे हुए हैं, आई एम समबडी, मैं अहंकारी हूं, मैं जो मांगूंगा ये लोग देंगे, इंक्लूडिंग द ट्रॉफी, आई डू नॉट हैव टू डू एनी एफर्ट्स इन माय लाइफ एंड आई विल गेट एवरीथिंग। अब ये एवरीथिंग वाला जो मामला है, यही मामला हमारे आगे बढ़ने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और बिना कुछ किए जब बच्चों को चीजें मिलने लगती है तब उनकी लालच, उनकी लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर बच्चे आए दिन छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक जिद करने लगते हैं। ये तो हुई छोटे बच्चों की बातें, बड़े बच्चे जो होते हैं 18 साल के 19 साल के बच्चे ये नहीं देख रहे कि अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम है।

0: ये 18-19 साल के बच्चे नहीं सोचेंगे, वो बोलते कि बस नहीं नहीं मुझको 4,000 के जूते चाहिए तो चाहिए ही, मुझको अगर 5,000 का टी शर्ट चाहिए तो चाहिए ही। वो मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ से ये करेंगे। बच्चा सामने से बोलेगा जाओ तुम बैंक लूटो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, पैसा कमा के लाओ, मुझको चीज चाहिए। और 99% बार माता पिता भी ऐसे हो गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे की जिद वो पूरी करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इन सभी चीजों को अगर हमने देखा तो ये पीढ़ियां जब इनकी शादियां हो जाती है, अब नई पीढ़ी को मैं देखता हूँ, बाप रे 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर इनके डिवोर्स हो रहे हैं या रिटर्न आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। क्यों ऐसा हो रहा है, एक दूसरे के साथ में क्यों कोऑपरेशन नहीं है? क्योंकि हर एक व्यक्ति, लड़की भी और लड़का भी, इतना ज्यादा जिद्दी बन गए हैं, इतने ज्यादा अहंकारी बन गए हैं कि शादी होने के बाद में हमने साथ में रहना होता है, चीजों को मिल बांट के खाना होता है, इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस डिफ्यूज हो गए हैं। अब हम एक दूसरे के साथ में मिल बांट करके नहीं खाना चाहते हैं, मिल बांट के नहीं रहना चाहते हैं। और यही जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके बच्चे भी अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड ऐसे पाए जाते हैं।
1: जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बड़ा इश्यू है कि आज इंडिया में डाइवोर्स रेट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, हम सोचते थे डाइवर्स की बात सिर्फ विदेशों में होती है, लेकिन हम लोग आज के समय में भारत में भी वही स्थिति है जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे हैं। तो अब लोग बात कर रहे थे जैसे कि जिद्दी बच्चों का स्वभाव को कैसे कम करें या उस बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। जी ईश्वरलाल भाई बताइए।
0: उसी के कारण मामला ये हो रहा है कि बच्चा जब जिद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने मेरी जिद या मेरी डिमांड जो है उसको तुरंत कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो तुरंत कंप्लीट नहीं करते तो हम हंगामा मचा देंगे, हम रोएंगे, हम चीजों को फोड़ेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी करके, लेकिन वो चीज हमें अपने मन के मुताबिक तुरंत हासिल करनी है। यह एक परिवर्तन है, न इसको हम भयावह कह सकते हैं, न इसको हम किसी और चीज से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यह एक सामाजिक परिवर्तन है, उसको हमने केवल जान लिया। दूसरा जो आया जिद के अंदर कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अब वापस उसी प्रकार से हम उसका विश्लेषण करते जाएंगे कि जो दादाजी नानाजी के उम्र के जो लोग हैं वो देखेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी काफी कम हुआ करते थे, यानी कि अगर उनको पेन चाहिए तो 500 ब्रांड नेम नहीं होते थे, अगर शर्ट चाहिए तो 500 ब्रांड नेम नहीं होते थे, जिसके कारण क्या होता था कि एक ही वस्तु, फॉर एग्जांपल एक कलम अगर उसको चाहिए तो बच्चे को 1 रुपये की या 1.5 रुपये की कलम ला करके पिताजी देते थे, फिर उस कलम को, क्योंकि अगर वो खो जाएगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, चीजें जो तुरंत अवेलेबल नहीं होती थी। तहसील के गांव में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जब किसी का जाना होगा तो उसी वक्त वो चीज को खरीद लिया जाएगा, ये मसला होता था। जिसके कारण क्या होता था कि हम सालों साल से चीजों को यूज करते थे बहुत अच्छी तरीके से, प्रेम पूर्वक, तो चीजों के साथ में हमारा रिश्ता नाता बनता था और हम इमोशनली चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ में भी जुड़ जाते थे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने साल दो साल के लिए कोई कलम यूज किया है और अगर वो खो जाती है तो उसको रात भर चैन नहीं आएगी, दिन भर उसको चैन नहीं आएगी और वो मतलब खोया खोया सा रहेगा, 500 बार मन में याद करेगा, अरे मेरी बड़ी प्यारी कलम थी, कितना अच्छा मैं लिखता था। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। उसके बाद में 30 साल पहले 40 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे प्रोडक्ट्स और थोड़े ज्यादा बढ़ गए, तो प्रोडक्ट्स की उतनी ज्यादा चिंता नहीं रही, यानी कि अगर कलम खो गई, अगर छाता खो गया तो पिताजी तुरंत दूसरे दिन नहीं तो भी तीसरे दिन लाके देते ही थे, जिसके कारण हमारा जुड़ाव वस्तुओं के साथ में कम होता गया। और अभी अभी की जो प्रो पीढ़ी है उसके तो क्या कहने, अभी तो यूज एंड थ्रो का मामला आ गया, यानी कि कलम आधी खत्म नहीं हुई कि फेंक देना और दूसरी लेने। क्यों? क्योंकि जब कलम चाहिए थी तो पिताजी ने कितने ला करके दे दिया, तो 10 ला के दिया या 20 का पैकेट ला करके रख दिया और पिताजी को इसकी परवाह नहीं है कि बेटे ने उसको पूरा यूज किया है नहीं यूज किया है। अगर बेटा बोलता है कि पापा मुझको टी शर्ट चाहिए, तो टी शर्ट चाहिए तो दर्जनों टी शर्ट उसके सामने हाजिर कर देते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ गई, जिसके कारण बच्चे को पता चला, या समझो मान लीजिए होटल में अगर जाएंगे तो वहां पे 500 मेनू हैं, तो अगर एक अगर चाय मंगाते हैं तो

0: तीन चार पांच प्रकार की चाय आ जाएगी, डोसा अगर मंगाएंगे तो पांच छह दस प्रकार के डोसा आ जाएंगे। तो ये अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये बहुत ज्यादा समृद्धि ज्यादा आ गई। अब जिसके कारण क्या हो गया कि इमोशनली बच्चा किसी के भी प्रोडक्ट के ऊपर उसको प्रेम नहीं आया, तो ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे इंसानों के ऊपर भी प्रेम नहीं आया और वो संकुचित वृत्ति का हो गया। वो केवल अपने आप से प्रेम करने लगा और उसका अहंकार यानी ईगो उसके अंदर बढ़ता चला गया। तब पैसा भी नहीं होता था, इसके लिए पिता को पैसे को मैनेज करना पड़ता था, माता को पैसे को मैनेज करना पड़ता था, तब जाकर के बच्चों की जिद पूरी होती थी। अभी पैसा हमारे पास आ गया और माता पिता को ऐसे लगता है हमें जो चीज नहीं मिली वो हमने बच्चों को देना चाहिए, और जैसे ही बच्चे ने एक मिनट पहले जिद की तो दूसरे मिनट चीजों को हाजिर करके सामने रख देते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर जिद बहुत ज्यादा पनपने लगी है, अहंकार बहुत ज्यादा पनपने लगा है और उनके अंदर का पेशेंस खत्म होता हुआ जा रहा है। ये हमें आज की पीढ़ी में दिखाई देने लगा है। ये बुरा नहीं है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, यानी कि समस्या का हम केवल विश्लेषण कर रहे हैं, आगे जाकर के हम उसका निराकरण भी करेंगे, उस समस्या का हम समाधान भी ढूंढ लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।
1: जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को और लिसनर्स को अच्छा लग रहा है। बहुत ही गहरी और अच्छी बातें आप बता रहे हैं, वर्तमान समय में जो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में हो रहा है उन सभी बातों को आप स्पर्श करते हुए किस तरह से हम अपने स्वभाव संस्कारों को, जिद्दी बच्चों को कैसे हम लोग फ्रेम आउट कर ले रहे हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं, और अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो भी क्या इन चीजों से प्रभावित होती हैं, उसके ऊपर थोड़ा सी बातें हमें शेयर कीजिए। जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई,
0: धन्यवाद रमेश भाई, थैंक यू। फिर से हम शुरू करेंगे। इंसानी रिश्तों के ऊपर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। वो एक समय था कि हमारे मित्रगण या हमारे रिश्तेदार बहुत ज्यादा हमें प्रिय होते थे और हर एक काम में हमारी मदद करते थे, इमोशनली हम बहुत ज्यादा अटैच होते थे। एक इंसान के तीन चार पांच दस बारह ऐसे फ्रेंड्स होते थे, बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे 40 साल की जो उम्र के लोग हैं वो देखेंगे कि दो तीन मित्र तो उनके रहते ही थे और जो उनके लिए रात के 2 बजे भी किसी भी समस्या के लिए हाजिर हो जाते थे। लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ी है तो धीरे धीरे रिश्ते जो है वो खत्म होते चले गए, मित्र जो है उसका भी हम विश्लेषण बाद में करेंगे, मित्रगण कम होते गए। हमारे संगी साथी, पहले जमाने में ये था कि हमारे संगी साथी, हमारे वेंचर्स जो थे, हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे, एक दूसरे के हम अच्छे मित्र हुआ करते थे, और अभी इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई, कि ये मित्रता ऊपर से दिखाने के लिए है, यानी कि हमारे क्लासमेट जो होते हैं, क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये हमारे पहचान के बच्चे हैं लेकिन हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे कंपटीटर्स बन गए हैं। अरे उसको इतने मार्क्स, मुझको इतने मार्क्स, तो मन ही मन में जेलसी आ गई, कंपटीशन आ गए, जिसके कारण रिश्ते नाते जो वो खत्म होने का काम शुरू हुआ। पहला जमाना यह था कि हमारे मित्र की अगर अच्छी परवरिश हो गई, अच्छे अगर उसको मार्क्स मिल गए, अच्छे अगर उसको कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो हर एक इंसान उसको चीयर अप करता था, हर किसी को अच्छा लगता था। और अभी यह होता है, अरे बाप रे मुझको 90% मार्क्स, लेकिन उसको 91% मार्क्स, ओहो क्या चीज हो गई, मेरे पापा ने मुझको ना 10 लाख की गाड़ी में हम घूमते हैं, और बाजू वाला लड़का, अरे बाप रे उसकी तो 35 लाख की गाड़ी आ गई, तो हमारे मन में जेलसी आ गई। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हमारे मन के अंदर की भावनाएं मरने का काम शुरू हुआ, और इन भावनाओं के साथ में माता पिता के प्रति हमें आदर सम्मान था, माता के पिता के प्रति हमें प्रेम भाव था, हमारे भाई बहनों के प्रति प्रेम भाव था, वो सब अब धीरे धीरे धीरे ड्राई यानी कि खत्म होने का शुरू हुआ, और जिसके कारण व्यक्ति आत्म केंद्रित हुआ। पहले जमाने में व्यक्ति समाज केंद्रित था, उसके बाद में व्यक्ति अपना परिवार केंद्रित था, अब व्यक्ति नई पीढ़ी जो है वो आत्म केंद्रित हो गई है बहुत ज्यादा। अब के बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि मेरे भाई को कैसे लगेगा, अब के बच्चे ये नहीं सोच रहे कि मेरे माता पिता को कैसे लगेगा, अब के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए, वो केवल इतना ही सोचते हैं कि ये मेरा स्वार्थ है और उसको पूरा करने के लिए सभी

0: ने मेरी मदद करनी चाहिए। बड़ी सुंदर ऐसी अपनी चर्चा हो रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू, समाज के अंदर कैसे कैसे बदलाव आते गए और जिसके कारण व्यक्ति लक्षी ऐसा संपूर्ण मार्केट बनता गया, ऐसी संपूर्ण बाजार यंत्रणा बनती गई, हमारी शिक्षण व्यवस्था बनती गई, इसका भी अब हम विश्लेषण करेंगे। बहुत मजेदार है। ये था कि 1950s में अगर आपने देखा तो उस समय पे एक परिवार में बहुत सारे लोग साथ में रहा करते थे। पूरा परिवार संयुक्त परिवार होता था। 16-17 लोग अमूमन साथ में रहा करते थे। चाचा, मामा, दादा, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग साथ में हुआ करते थे। और एक ही परिवार में बहुत सारे लोग होने के कारण हम क्या किया करते थे, हम वस्तुओं को बांटते थे। वस्तुओं को हम एक दूसरे के साथ में चीजों को बांट करके खाते थे, मिल बांट करके खाते थे। साथ में हम खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए बैठते थे। तो जिसके कारण क्या होता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव निर्माण होता था। एक परिवार में एक पिता की 5 संतानें 6 संतानें होना एक आम बात हुआ करती थी और जिसके कारण हम भाइयों के साथ में वस्तुओं को बांटकर खाते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगर हमने 80s का जमाना अगर देखा तो एक माता पिता के 3 संतानें तो जरूर हुआ करती थी, जिसके कारण फिर भी भाई बहन हुआ करते थे। और तब तक ये चलन था कि दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का भाई या बहन अगर है तो उनको नए कपड़े नहीं मिलते थे। बड़ा भाई जो है उसके यूज्ड कपड़े मिलते थे, बड़ा भाई जो है उसके यूज्ड किताबें मिलती थी। अगर वो एक ही साल का या 2 साल के अंतर के बच्चे अगर होते थे, जिसके कारण भाई भाई में, बहन बहन में बहुत अच्छा प्रेम रहा करता था। अब समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया 90s के बाद में। अगर हम देखेंगे तो एक कपल यानी एक माता पिता के एक ही बच्चा रखने का प्रघात शुरू हो गया, उसमें भी खासकर अगर वह लड़का है तो।
1: जी, डॉक्टर ईश्वरलाल भाई, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और 80s-90s की बात मुझे भी याद है कि जब हम 10th क्लास पूरा कर चुके थे तो हमारे पास जो किताबें होती थी तो वो बहुत ही अच्छा मैंने कवर करके रखते थे और न्यू की न्यू टेक्स्ट बुक्स होती थी, तो हम किसी और को देते थे और मैं उनसे ये कहता था कि भाई पैसे मत दिया कर, वो किसी और को आप दे देना, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा एक क्रम। तो बड़ा अच्छा लगता था हमें भी और सामने वाला भी खुश हो जाता था और ये चीजें चलती रहें। लेकिन आपने सही कहा कि जब भाई बहन थे तो आपस में प्यार भी था, वो बुक्स एक्सचेंज कर सकते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जैसे ही 90s के बाद एक बच्चे का चलन शुरू हुआ तो फिर वो चीजें भी कम हो गई। और अभी तो शायद टेक्स्ट बुक्स का भी इतना जो है बहुत ज्यादा एक्सचेंज वाली बात या पुरानी किताब लेने की बात सामने नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर ईश्वरलाल जी से बातें हो रही हैं और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी हैं, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। बड़ी गंभीर चर्चा को बहुत ही सरलता से वो बता रहे हैं एग्जांपल देकर। आइए अब आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जिद्दी बच्चों को कैसे हम लोग संस्कृत करें और उन्हें कैसे कंट्रोल करें, इस विषय पर हम लोग चाहेंगे कि आप आखिरी में कुछ खास बातें हमें जरूर शेयर कीजिए। जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई,
1: बच्चा कई बार फिर अपने ही माँ का या अपने ही पिता का सम्मान नहीं करता है। कई बार तो हम ये देखते हैं कि पिता के बारे में खास करके एक जो श्रद्धा भाव निर्माण होना चाहिए, तो बच्चे का जो बाप होता है उसका बाप उसको तू करके पुकारता है, बच्चों के सामने तू तड़ाक करके बात करता है, जिसके कारण उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। तो बच्चा भी जो है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ, मेरी माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ, इस प्रकार से आ जाता है। और हम अपने ही शब्दों के द्वारा अपने ही बच्चों को बता रहे हैं कि इन लोगों की इज्जत नहीं करनी है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। तो इसी के लिए बच्चे के सामने एटलीस्ट उसके माता पिता जो है, बच्चे के माता पिता, उनकी हमने इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने इज्जत से पेश आना चाहिए, तो बच्चे जो है वो उतना ज्यादा खराब तरीके से बिहेवियर नहीं करेंगे। कई बार हम ये भी देखते हैं कि माता पिता जब अपने फोन पे बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, या बिजनेस में कोई कलीग्स होंगे तो बहुत रफ लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कई बार गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, कई बार चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो ये सब कुछ बच्चे में रिफ्लेक्ट हो जाता है और बच्चे जो है उनका माइंड इन ऐसी चीजों को पकड़ लेता है। तो इसके लिए खास करके अगल बगल में, आजू बाजू में हमारे बच्चे अगर होते हैं तो उनके सामने ऐसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ऐसे होता है कि बच्चे को जब हम कुछ चीज समझा रहे हैं, कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर चिल्लाइए मत। अगर आप चिल्लाएंगे तो बच्चा तेज दुगुना आपके ऊपर चिल्लाएगा। बच्चे को अगर आप तेज आवाज में बात करना सिखा देते हैं तो उसका परिणाम यह हो जाएगा कि बच्चा आपसे हमेशा तेज आवाज में बात करेगा। अब दूसरा कारण यह हो जाता है इसके बीच में कि जब हमारे बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल में तो 50 बच्चे हैं, अब क्या हो जाता है, अब ये बच्चा चिल्ला करके स्कूल में बात करेगा तो उसको तो डांट मिलेगी, अब बच्चा बड़ा नाराज हो जाता है, टीचर के प्रति नाराज हो जाता है। कई बार जैसे कि ये हमने फैमिलीज के बारे में बताया, उसी प्रकार से कई बार माता पिता बच्चों के सामने उसके टीचर्स को डांटेंगे, उसके प्रिंसिपल को डांटेंगे, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम इतना फीस देते हैं, लाख रुपए

0: रहने का फीस देते हैं या 50,000 रुपया फीस देते हैं, तो मैं आपका सेठ हूं और आप मेरे क्लाइंट है, उस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं टीचर्स को या प्रिंसिपल को। तो बच्चे के सामने जब ऐसी चीजें हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, बोलते यार ये टीचर मेरा बाप तो सुपरमैन है, ये टीचर को भी पढ़ा ये जलील करके रख देता है। तो श्रद्धा स्थान जो होते हैं बच्चों के, वो उसी प्रकार से पारंपरिक तरीके से जतन करना ये माता पिता का कर्तव्य है। और ये श्रद्धा स्थान ही अगर नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए मेरी बात का, बाप के प्रति और माँ के प्रति भी उसको श्रद्धा नहीं रहेगी, और उसकी श्रद्धा केवल एक ही रहेगी, उसका अपना खुद का स्वार्थ। और ऐसा अगर खुद का स्वार्थ रहेगा तो परिणाम इसका यह हो जाता है कि बच्चा आपका वैसे भी अकेला है और भी ज्यादा समाज से वो कटाकट और अकेला रहने का शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी। 17-18 साल के या 15-16 वर्ष के जो बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं उनको भी हैंडल करते वक्त हमें शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। उनसे डरना नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए मैं तो ये भी देखता हूं 1.5 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा, अरे बाप रे, पूरे घर को सर के ऊपर ले लेता है, पूरे घर का बादशाह बनता है और सब लोग उसके गुलाम हो गए, सब लोग उसकी जी हुजूरी करने में लग गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहां पे जरूरत है वहां पर हम थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे, बच्चा जो बोलता है उसी के प्रकार से सब कुछ करना ये भी जरूरी नहीं, तभी हम सही ढंग से संस्कार दे पाएंगे। अदरवाइज हमने ऐसे परिवारों को देखा है कि सब लोग जो है वो बच्चे के सामने हाथ बांध करके खड़े हो जाता है हुकुम मेरे आका ऐसा बोलने के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई मेहमान अगर आ जाता है तो बच्चा अपना रिमोट कंट्रोल देगा नहीं और वो टीवी देख रहा है और सब लोग को बताया जाएगा नहीं नहीं नहीं ये नहीं, तो बहुत चिल्लाता है, बहुत हंगामा करता है, हमने ही चढ़ा दिया बच्चे को चने के झाड़ पे, तो बस बच्चा क्या करेगा और भी ज्यादा तूफानी मचा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता बनना ये एक आर्ट है, ये एक जिम्मेदारी पूर्वक आर्ट है, इस आर्ट को हमें निभाना पड़ेगा, ये आर्ट सीखना बेहद जरूरी है। हमारे 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी सावधानता पूर्वक हम व्यवहार करेंगे, उनके साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार जरूर करेंगे, लेकिन हद से ज्यादा हम उनके मित्र नहीं बनेंगे कि अपना ही हमने इंसल्ट करके रख दिया। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे माता पिता होते हैं, अरे बाप रे, मैं देखता हूं क्योंकि उनको मित्र बनना है लड़की का या लड़के का, तो लड़के को 50 बार पूछा जाएगा, ए अभी 10वीं में है कोई गर्लफ्रेंड तेरी है कि नहीं, ए तू अभी 9वीं में है तेरे कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। ये फालतूगिरी है, ऐसा नहीं करना है। फालतू के वीडियो दिखाने का काम माता पिता ही करेंगे, ये देखो पोर्नोग्राफिक वीडियो, अरे ये क्या बकवास है। कहने का तात्पर्य यह हो जाता है दिस इज नॉट पेरेंटिंग, ये आप अपने बच्चों को बिगाड़ के रख देंगे। कई बार ये होता है कि बच्चों के सामने पिता खास करके जो होते हैं सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, दारू पीने के लिए बैठ जाएंगे, तो ये अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे जो है वो भी समझ जाते हैं कि ये लोग स्वार्थी है और खुद भी स्वार्थी बनने का प्रयास शुरू कर देते हैं, और उनकी जिद जो है ये आसमान छूने लगती है जिसको पूरा करना करीब करीब असंभव हो जाता है। और ऐसे ही परिवार में जब आगे चल करके हम देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये समस्याओं का अगर हमें सामना नहीं करना है तो आज ही सावधान हो जाना है। बहुत सुंदर विषय ये आज हमने चर्चा के लिए लिया हुआ था। आप लोग भी अपना अपना मतमंतव्य जरूर दे दीजिए, आप भी जरूर बता दीजिए। मधुबन की टीम को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर सब्जेक्ट उन्होंने लिया। रमेश भाई जी के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनके टीम के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सुंदर विषय यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए मुझको मौका दिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।
1: डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने बातें जो है इस अपने चर्चा में आपने किया, और पेरेंटिंग का सही अर्थ क्या है और बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बच्चों को क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, दोस्ती रखना है कितना रखना है कितना नहीं रखना, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, पाश्चात्य का थोड़ा प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी भारतीय निजी संस्कृति को भूल जाएं और संस्कारों को पूरी तरह से भूल जाए, ऐसा ना करें। और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है, माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ भले मैत्री दोस्ती का रिश्ता बनाए, लेकिन इतना भी ना हो कि फिर वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाए। और जब डांट की बात आती है तो बड़ों को भी अपने बहुओं को बच्चों के बीच में ना डांटे, ताकि वो बच्चे उसके ऊपर फिर उनका असर अलग होता है, वो अपने माता पिता की सुनेंगे नहीं है। तो यहां पर हमें हर चीज को जो है एक कंट्रोल वे में करना चाहिए, और सबको सम्मानित रूप से अगर हम लोग देखें और सबको प्यार से बात करें।

सबके साथ, तो शायद ये चीजें धीरे धीरे संवर जाएंगी और हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा, तब चीजें आसान होंगी। और बच्चों के सामने खास करके कोई भी ऐसी ऊंची आवाज या डांट डपटी वाली होनी नहीं चाहिए जिससे बच्चों का संस्कार बिगड़ ना जाए। और जहां तक जिद्दी की बात है, वो चीजें हम लोग जो है फटाफट जो बच्चों को दे देते हैं तो वो भी बड़ी मुश्किल कर देती हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे से बताया है। तो हमें थोड़ा सोच समझ कर इन चीजों को डील करना चाहिए शुरुआत से ही। बच्चों को अगर बचपन में ही हमने सब कुछ देना शुरू कर दिया, हम सोचते ये बच्चा है इसको क्या मालूम और बाद में सुधर जाएगा, ऐसे समझते बड़े होने के बाद अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो चीजें आपने प्रैक्टिकल सुना भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए और आशा करूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने संस्कारों को कैसे बना के रखेंगे, आज के इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा होगा। तो जरूर हमें कमेंट करके, मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर 9944545 इस नंबर पर बताइएगा। तो चलिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर ईश्वरलाल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा पद्धति है और इस विज्ञान शाखा का जनक भारत के महर्षि चरक को माना जाता है। उन्होंने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद की खोज कर ली थी।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हम घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। हम घर

सितारे को भंवर में उतार दे। आगे जी के क्या लेना है, मेरे दिल ने जो भी मांगा था वो पाया तुमको।

जाऊं बन के क्षमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको उनसे।

0: आंखों में तू बढ़ता जल
1: बढ़ता जल
0: तू बढ़ता जल
1: बढ़ता जल
0: झुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता जल
1: बढ़ता जल
0: तुझे झुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं तेरी

जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

0: भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
1: अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर।
2: पियावर रामचंद्र की।

छत के टायर फटे पड़े हैं, छत के टायर फटे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं इस दुनिया में अकल के अंधे।

पागल खान है, जेल और थाने, जेल और थाने, पागल खाने, पागल खाने, जेल और थाने भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं इस दुनिया में अकल के अंधे, नकल के धंधे, नकल के धंधे, झूठ के बंदे, चढ़ा चढ़ा छापा बापा बापा, गिरे गिरे अकल के अंधे, नकल के धंधे।

संग किया तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आँखों।

0: बात नहीं है।
1: नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
0: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, आएगी अब मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
1: अच्छा बापू।